आकार जोत जग मंडल करियो जह कह तह भरपूर शब्द दीपक दीपायो जेहे सिख है संग्रहयो तत हर चरण मलायो नानक कुल निम्मल अवतरयो अंगद लहणे संग हो गुरु अमरदास तारण तरन जन्म जन्म पासरन तो जप तप सत संतोख भिख दर्शन गुर सिख है सरन पर है ते उबर है छोड़ जमपुर की लिख है भगत भाए भरपूर हृदय उचरै करतार है गुर गौहर दरियाऊ पलक डबंत्य है तार नानक कुल निम्मल अवत

पास साध संगत हो तको तेरा हुक्म पवे निशान तो करो साहिब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो परमाव है सो कहूं गुरु अमरदास कारण करन जिव तू रख है तिव रहूं पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत स्यों तत मिलावे सच सच जानिए एक चित्त है लिव लावे काम क्रोध वस करे पवन उडंत ना तावे निरंकार कै वसै देश हुक्म।

सनाह ज्ञान है आसन चढ़यो ध्रम तनक कर गहयो भगत सील है सर लड़यो तय निरभउ हर अटल मन शब्द गुर नीजा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच दूत बिखर।

इव जुद कार कनहर बूंद बसो रोमावल कुसुम बसंत गनंत ना आवे राव सास किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सत

कब कल ठकुर हरदास तनी गुरु रामदास सार अपार परी सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल भया जागिया मन कवल सहज प्रकाशिया अपै निरंजन करह लहा सतगुर दयाल हर नाम दिरडाया तिस प्रसाद वस पंच करे कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सर अपार परी अनभव उन्मान अकल लिव लागी पारस भेटिया सहज करी सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परी मेटिया जन्मांत मरण भव भागा चित लागा संतोख सरे कब कल ठकुर हरदास तनी गुरु रामदास सार अपार परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत बिचारियो सदा चाहे हर पाई प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज सेती रंग माने नानक प्रसाद अंगद समत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कल उचरे तैं अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसे अमै रस रसन प्रकाशे मिलत शांत उपजे दुरत दूर अंतर नासे सुख सागर पायो दिंत हर मगना हुटे संयम सत संतोख सील सनाहुम फुटे सतगुर प्रमाण बिदने सिरियो जग जस तूर बजायो गुर रामदास कल उचरे तैं अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दिरडायो नवनिध नाम निदान रिद सिद्ध ता की दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अबनासी आदले भगत जित लागत।

भवियो जगत गुर बचन तरायु अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उच्चरे तै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निदान भगत है भव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस की बिखै निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागी गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागी ते मुक्त भये सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुरु राम।

पायो तिन सकियथो जन्म जग श्री गुरु सरन भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग सतगुर खेमा तानिया जुग जूत समाणी अनपहु नेजा नाम टेक जित भगत आगाणी गुरु नानक।

दस जानी जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावे एहो जनक राज।

खिन मात्र जा कौ दृष्ट तारै शब्द हृद विचारै काम क्रोध खोऐ जियो जियन सभन दाता अगम ज्ञान।

ज्ञान पावे गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल तो वै जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत हो वै जियो धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचे हैं।

कार अकथ कथनहार तुझ बुझाई है परम भूले संसार छुट हो जूनी संगार जम को ना दंड काल गुरमत त्याई है मन प्राणी मुग्ध बीचार अहनस जप धर्म कर्म पूरे सत गुर पाई है हों बल बल जाऊं।

पांच भूत बस कीने जमत ना त्रास। गुर अमर गुरु श्री सत कल जोग राखी पत अघन देखत गत चरण कमल जास। सब बिद मान्यो मन तब ही पयो प्रसन्न राज जोग तखत दीयन गुर रामदास। राड़

सुर नर सप्त समुन्दर के धारे उतरे भवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास कच्चो हो कंचन भयो शब्द गुर सरवण है सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पण्यो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद धारे पाहन माणिक करे ज्ञान गुर कहो बीचारे काठो श्री खंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जिन परसिया से पास परेत सुर नर भए

क्या कीजै जान गुरु होए वल ज्ञान अर ध्यान अनन पर जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सच्चह कार जो गुरु गुरु

ते अकियत संसार में गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरन समरथ कल युग सुनत समाध शब्द जिस केरे हुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान।

पूस पिवन की बंचत सिद कहो बिद मलायो पूरन पो मन ठौर बसो रस बासन स्यो जो दहंग दिस तायो गोविंद वाल गोविंद पुरी सम जलन तीर बेपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरन अगन हरयो निस बासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरयो पन दास सो आस जगतर गुरु की पारस भेट परस करयो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखश फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी सीनत बस्तर दीन बहु साज सोदामा अपदा ते राखिया गनका पड़त पूरे ते काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए

शब्द हर हर जपै नाम नाव निध अपै रसन एहन सरसै सत कर जानी ओह हुन प्रेम रंग पाईऐ गुरमुख है त्याईऐ अन मार्ग तजहो भजहो हर ज्ञानी ओह बचन गुर रिद धरहो पंच भू बस करहो जन्म कुल उधरहो द्वार हर मानी ओह ज्यो तां सब सुख इत उत तुम बंचवहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणी ओह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार अगम गुण जान निदान हर मन धरहो ध्यान अहनस करहो बचन गुर हृदय धार हुन गुरु जल बिमल अथाह मज्जन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सार सदा निर्वैर निरंकार निर्भउ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हार मुग्ध मन भ्रम तजहो नाम गुरमुख भजहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाईऐ उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिव लाईऐ हुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याईऐ अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाईऐ नाम निर्बाण निदान हर उर धरहो गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाईऐ।

अखै निद अपियो, अपियो हर नाम अखै निद चहु जुग, गुर सेवा कर फल लहियन, बंद है जो चरण सरण सुख पाव है, परमानंद गुरमुख कहियन, प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी, आद रूप पोखण भरन, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री राम दास तारन तरन, जेह अमृत बचन बाणी साधु जन जप है, कर बेचित चाओ आनंद नित मंगल, गुरदर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुरदर्शन, परसन परम पवित्र गति, जीता है जम लोक पतत जे प्राणी, हर जन शिव गुर ज्ञान रते, रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कार, मुन बंश है जाकी सरनं, सतगुर गुर सेव अलख

जग जन्म मरण भगा ए आई ही है प्रतीत प्रतीत ही है आई जिन जन कै तिन कौ पदवी उच भई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई अवलोकया ब्रह्म परम सब छुटकिया दिव दृष्ट कारण करन सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन तरन प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास भया जस जन कै एक पढ़ है सुन है गाव है प्रभाते है कर है स्नान स्नान कर है प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए परस पारस कहो ज्योत स्वरूपी ध्यान धरं जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रहया पूर बहु विद वर्णं सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन तरन जिन्हो बात निश्चल ध्रुव जानी ते जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन एक मह जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहिब सब ऊपर मन

देख रूप अत अनूप मोह महामग पई किंकनी शब्द चनतकार खेल पाहे जियो काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै ईस बम्यो ज्ञान ध्यान धरत ही है चाहे जियो सत साच श्री निवास आद

परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशुमार सरबर कौ काहे जियो सुथर चित भगत हित भेख धरियो हरनाख शहरियो नाख बेदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखै कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरुष।

ठमाल मुकट सीस मोर पंख चाहे दियो देव जीर बड़े तीर धर्म अंग अलाके अगम खेल किया अपने उशाहे दियो अकथ कथा कथी ना जाए तीन लोक रहे आसमाए सुतह सिद्ध रूप धरयो साहन कै साहे जियो सत साच श्री निवास आदि।

गुरु समरथ गह करिया ध्रुव बुद्ध समत समारन कौ हुन धर्म तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन कौ मथरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारन कौ हर नाम बोहित।

मतरापन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है। रब के सुत को तिन त्रास कहां, जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुदा परपूरन, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर

कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर जां को मन ध्यान धरै फिरत सगल जुग कबहू का को पावै आत्म परगास को वेद बाणी सहत बिरंच जस गावै जाको सिव मन गह नात जात कबलास को।

इस तरियो गुर हाथ तीन पवन परपूर रहे ओ सोई आपन सरस कियो ना जगत कोई आपने आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुरे असुर है नर गण गंधर्व खोजंत फिरे अविनाशी अचल अजूनी संभो।

लोभ अपमान स्यों चाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्ने भाव सागर बंधियो सिख तारे सो प्रसन्न सिर आत पत सचो तखत जोग भोग संयुत बल गुरु रामदास सच सल पण तू अटल राज अभग दल तू सतगुर चहो जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुरह तुर आद जुगाद अनाद कला धारी त्रिहो लोह अगमन।

मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो काल जोड़ कर सुजस वखाणियो भगत जोग कौ जैतवार हर जन के उपायो शब्द गुरु प्रकाश्यो हर रसन बसायो गुर नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो गुर अर्जन घर गुर रामदास भगत उतर आयो बड़भागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन मानक संतोखियो गुर नाम दृढ़ायो अगम अगोचर पार ब्रह्म सतगुर दरसायो गुर अर्जन घर गुर रामदास अनभव ठहरायो जनक राज बरताया सत युग आली।

दास गुर जिन पारस परस मलायु जय जय कार जास जागे अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता गुरपुरा पायो बड भागी लिव लागी मेदन भर सहता पै भंजन पर पीर निवारन कल सहार तोहे जस बखता कुल सोडी गुर राम दास तन धर्म तुजा अर्जन हर भगता त्रम धीर गुरमत गंभीर पर दुख बसारन शब्द सार हर सम उधार अहमेव निवारन महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुट सतवंत हर नाम मंत्र नव निद नान खुट गुर राम दास तन सर्ब मैं सहज चंदुआ ताने हो गुर अर्जन कल उचर तै राज जोग रस जानियो पै निरपहु मानियो लाख मह अलख लखायो अगम अगोचर गत गंभीर।

देखियत ताम सियो अपार परंपर पुरख सियो प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही और है काम सियो मथुरा को प्रभ सर्व मैं अर्जन गुर भगत कै हित पाई रहो मिन राम सियो अंत न पावत देव सबै मुन इंद्र महाशिव जोग करी हुन वेद बिरंच विचार रहो हर जाप ना छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुर ज्योत अर्जुन माही तरी जग और न जाहे महा तम मैं अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटिक दूर गए।

हर पूरन ब्रह्म निवास लियो, जब लो नहीं भाग ललार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो, कल घोर समुंदर

अवतार बनायो जप्यो जिने अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो कल समुंदर भय रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसह संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारण निर्मल भेख अपार तास बिन अवर ना कोई मन बच जिन जानियो भयो ते समसर सोई तरन गगन नव खंड में

गुरु अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर वंश जगत जस संच रहयो सो कवन कह श्री गुरमुयो देवपुरी मह गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंघासन दियो श्री गुरु तह बैठायो रहस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंपह असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपह काटे सो पाप तिन नरों के गुर राम दास जिन पायो छत्र सिंघासन पिरथमी गुरे।

या किव करी निवण ना जाए थनी गच जे लगा गिड़बड़ी सखिए धौल हरी से पी तहंदे डिठ मैं मुंड ना गर्भ थनी सुन मुंदे हर लाखिए गूड़ा वैण अपार पहला

पुछ तड़न कल ताहू खरे सुजान वन्या एनी कपरी झाड़ झखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखेसरी सतगुर स्यों अलाए बेड़े डुबण नाही पौ नानक दुनिया कैसी होई सालक मित ना रहयो कोई।

निर्मल नावन नानका गुर तीरथ दरियाउ जन्मे का फल क्या गणी जहां हर भगत ना पाऊ पैंदा खादा बाद है जहां मन दूजा पाऊ वेखण सुनना झूठ है मुख झूठा।

जो देवे सो देवे नाही, खट्टे दम सहमी पब्बर तू हरियावला, कवला कंचन वन कै दुखड़ै सड़ियो हे, काली होइया देहुरी नानक मैं तन भंग जाना पानी ना लहां, जैसेती मेरा संग।

वह सदा सदा सुरती ही पत होए। सर्फ है सर्फ है सदा सदा एव गई विहाय। नानक किसनो आखी है बिन पुछिया ही ले जाए। दोष ना दे ओ राए नो मत चले जा बुढ़ा होवै। गल्ला करे कनेरिया ता अन्ने पवना खाती तोवै। पूरे का किया सब कुछ पूरा घट।

ठग मनमुख बन चलाई है ना मिल ही वग सग आप भुलाए भुलिया आपे मेल मलाए नानक गुरमुख।

गुर शब्दी हर मन वसै, माया की भुख जाय। से जन निर्मल उजले, जे गुरमुख नाम समाए। नानक होर पातशाहियां कूड़ियां, नाम रते पातशाह। ज्यों पुरख है कर भगती नार है, अत लोचै भगती पाए। बहु रस सालने सवार दी, खट रस मीठे पाए। त्यों बाणी भगत सलाह दे, हर नामै चित लाए। मन तन धन आगै राखिया, सिर वेचिया गुर आगै जाए। तै भगती भगत बहु लोच दे, प्रभ लोचा पूर मिलाए। हर प्रभ भी परवाह है, कित खादै तिपताए। सतगुर कै पाणै जो चलै, तिपतासै हर गुण गाए। तन तन कल युग नानका, जे चले सतगुर पाए। सतगुरु ना सेवियो, शब्द ना रखियो उर तार। तिग तिन्ना का जीविया, कित आए संसार। गुरमती भउ मन पवै, ता हर रस लगै प्यार। नाउ मिलै तुर लिखिया, जन नानक पार उतार। माया मोहे जग भरमिया।

हुए ज्ञान खड़ग पंच दूत संघारे गुरमत जागे सोए नाम रतन परगासिया मन तन निर्मल हो।

जिव है मन चढ़िया दसवें आकास किथे ऊंग ना भुख है हर अमृत नाम सुख वास नानक दुख सुख व्यापत नहीं जिथे आत्म राम परगास काम क्रोध का चोलड़ा सब गल आए पाए एक उपज है एक बिनस जा।

भई मर जीवया सहज सुभाए नानक भगती रतिया हर हर नाम समाए मन मुख चंचल मत है अंतर बहुत चतुराई कीता करत्या बिरथा गया एक तिल थाए ना पाई पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई बिन सतगुरु जमकाल ना छोड़ई दूजे भाए खुआई जो बन जांदा नदर ना आवई जर पहुंचे मर जाई पुत कलात मोह।

अरे शुद्ध नहीं गुर बचन ना करह विसास, ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है नित हर लिव सदा विगास। हर ज्ञानिया की राखदा हौं सद बनेहारी तास, गुरमुख जो हर सेम दे जन नानक ता का दास। माया पोयंगम सर्प है जग घेरिया बिख माए, बिख का मारन हर नाम है गुर गरुड़ शब्द मुख पाए। जिन कौ पूर्व लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए, मिल सतगुर निर्म

आवई किसे आगे करी पुकार, वडभागी सतगुर पाया बुझिया ब्रह्म विचार। तिसना अग्न सब बुझ गई, जन नानक हर पुर तार। असी खते बहुत कमान दे, अंत न पारा वार। हर कृपा कर कै बख्श ले हो, हौ पापी बड गुनहगार। हर जियो लेखै वार ना आवई, तू बख्श मलावन हार।

अपना हौ सद बलिहारी तास नानक तिन मुख उजले जिन अंतर नाम परगास शब्द मरे सोई जन सिज्जे बिन शब्द है मुक्त ना होई भेख करह बहु कर्म बगुत्ते पाए दूजे परज विगोई नानक बिन सतगुर नाउ ना पाईए जे सौ लोचे कोई हर का नाउ अत वड ऊंचा ऊंची हूं ऊंचा होई अपड़ कोई ना सकई जे सौ लोचे कोई मुख संयम हच्छा ना होवे कर भेख भवे सब कोई गुर की पौड़ी जाए चढ़े कर्म प्राप्त होई अंतर आए वसे गुर शब्द विचारे कोई नानक शब्द मरे मन मानिए साचे साची सोई माया मोह दुख सागर है बिख दुतर

परे शब्द रहे लिवलाए। नानक करता सब किस जानदा जिन रखी बणत बनाए। होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित थके पुराण। दिख माया मोह ना मिटई विच हूं मैं आवन जान। सतगुर मिले मल उत्तरी हर जपया पुरख सो जान। जिन्ना हर हर प्रभ सेविया जन नानक सद कुरबान। माया मोह बहु चितवदी बहु आसा लोभ विकार। मन मुख अस्तर ना थी है मर बिन सजाई खिनवार।

अंत काल तिथै तो है जिथै हाथ ना पाए मन मुख सेती संग करे मुहे कालख दाग लगाए मुह काले तिन लोभियां जासन जन्म गवाए सत संगत हर मेल प्रभ हर नाम वसै मन आए जन्म मरण

जियो पिंड सब ते सदा प्रतपाल करे हर राय। चुगल निंदक भुखे रुल मोए इना हाथ ना कथाऊ पाए। बाहर पखंड सब कर्म करह मन हिरदय कपट

जई ना सुजै दरबार माया मोहि पलीटिया अंतर अज्ञान गुबार तब नर सुता जागिया सिर डंड लगा बहु भार गुरमुखा करा उपर हर चीतिया से पाइन मोख द्वार नानक आप उहे उदरे सब कुटंब तरे परवार शब्द मरै सो मुआ जापै गुर प्रसादी हर रस त्रापै हर दरगह गुर शब्द सिंघापै बिन शब्द मुआ है सब कोई मन मुख मुआ अपना जन्म खोए हर नाम ना चेत है अंत दुख रोए।

सदा सदा हर गुण रवह, अंतर सहज ध्यान ओए सदा आनंद विवेक रह, दुख सुख एक समान तिन्ना नदरी इको आया, सब आत्म राम पछान, मनमुख बालक बिरद समान है, जिन्ना अंतर हर सुरत नाही, विच हम मैं कर्म कमाव दे, सब धर्म राय कै जाही, गुरमुख हच्छे निर्मले, गुर कै शब्द सुपाई, ओना मैल पतंग न लगई, जे चलन सतगुर पाई, मनमुख झूठ न उतरै, जे सौ धोवन पाई, नानक गुरमुख मेलियन, गुर कै अंक समाई, बुरा करे सो केहा सिजै, अपने रोहे आपे ही दज्जै, मनमुख कमला रगड़ै लुजै, गुरमुख होए इस सब किस सुजै।

हर जग जीवन उर धार नानक गुरमुख सोहणे तित सच्चै दरबार हर मंदर हर साजिया

सुख पाया हत तिसना तज विकार जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द बीचार हर हर नाम त्याए मन हर दरगाह पावह मान किल विख पाप सब कटी है हम मैं चुकै गुमान गुरमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पछान हर हर कृपा धार प्रभ जन नानक जप हर नाम तनासरी तनवंती जानी है भाई।

बूंद पवै सहज सुभाए, जल ही ते सब उपजै, बिन जल प्यास ना जाय। नानक हर जल जिन पिया, तिस भूख ना लागै आय। बाबी हा तू सहज बोल, सच्चै शब्द सुभाए, सब किस तेरे नाल है, सतगुर दिया दिखाए। आप पछाण है प्रीतम मिले, बुठा शहबर लाई, चिम चिम

तन मन सुख होए जा तत बूंद मोहे पाए। अन धन बहुता उपजै धरती शोभा पाए। अन दिन लोक भगत करे गुर कै शब्द समाए। आपे सच्चा बख्श लए कर कृपा करै रजाए। हर गुण गावो कामणी सच्चै शब्द समाए। कै का सहज श्रृंगार करहु सच।

पास सतगुर मिले जल पाई है चूकै भूख प्यास। जियो पिंड सब तिसका सब किश तिसकै पास, बिन बोलिया सब किश जानदा किस आग्या कीचै अरदास। नानक घट घट एको वरतदा शब्द करे परगास, नानक तिसै बसंत है जे सतगुर सेव समाए। हर गुठा मन तन सब परफड़ै सब जग हरियावल होए, शब्दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होए। नानक नाम ना विसरै जिन सिरिया सब कोए, नानक तिना बसंत है जिन्ना गुरमुख वसिया मन सोए। हर उठै मन तन परफड़ै सब जग हरिया होए, वडड़ै चाल चाल चलंबलै

पाई सतगुर कै उपदेश चार कुंडा जे भवह वेद पढ़ह जुग चार नानक साचा भेट हर मन वसै पावह मोख द्वार नानक हुक्म वरतै खसम का मत पवी फिरह चल चित मनमुख सहु कर दोस्ती सुख

प्रसाद वडभागियां सुहागणी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत परगासिया नानक नाम समाए वाह वाह सतगुर पुरख है जिन सच जाता सोए जित मिले तिख उतरे तन मन शीतल होए वाह वाह सतगुर सत पुरख है जिसनो समत सब कोए वाह वाह सतगुर निर्वैर है जिस निंदा उस्तत तुल होए वाह वाह सतगुर सुजान है जिस अंतर ब्रह्म विचार वाह वाह सतगुर

नानक सतगुर वाह वाह जिसके नाम प्राप्त होए हर प्रभ सच्चा सोहिला गुरमुख नाम गोविंद अन दिन नाम सलाहना हर जपिया मन आनंद वड भागी हर पाया पूरन पर

कर्म कार नानक ले हो मलाए मैं जाचक दीजै नाम हर गुरमुख हसै गुरमुख रोवै जे गुरमुख करे साई भगत होवै।

सद उजले इत सच्चै दरबार तिन बहंदियां उठदियां कदे ना विसरै जे आप बख्शे करतार नानक गुरमुख।

पाए, मानमुख हुकुम ना बुझे बपड़ी, नित हों मैं कर्म कमाए, वर्त नियम सोच संयम पूजा, पाखंड भरम ना जाए, अंतरोह कसुद माया मोहे बेदे, ज्यों हस्ती शार उड़ाए, जिन उपाए तिसे ना चेत है, बिन चेते क्यों सुख पाए, नानक परपंच किया तुर करतै, पूर्व लिखिया कमाए, गुरमुख प्रतीत

पार लंघाए, गुरसिखा की हर धूड़ देह, हम पापी पी गत पाहे, तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया, गुर नानक मिलिया आए, जम कंकर मार बधारियन।

चोली हर जैसा पुरख ना लभई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सतगुर नाम दड़ाया मन अनंत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गुल गोले।

जिस पास बहते आंसू ही है सब ना दावे सा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नौवां, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन, कहो नानक हर भज मना।

निस दिन जो नानक भजे सफल होहे ते काम। जिह बागुन गोबिंद भजहो करन सुनो।

मना दुर्लभ मानुख दे माया कारण तावही मूरख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान जो प्राणी निस दिन भजे रूप राम ते जान हर जन हरे

कहो नानक हर भज माना अंत सहाई होए जन्म जन्म परमत फिरयो मिटयो ना जम को त्रास कहो नानक।

मुद्दा अष्टपुत्र में कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कशेली पतमंजरी टोडी कही अलाप काम

असंख भाव, असंख पूजा, असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख योग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती, असंख दातार, असंख सूर।

ले तब तस मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर्ष नाम न पाया ते पाहीन जंपास जो सदगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सदगुर संगत पाई तेन तुर मस्तक लिखया लिखास तन तन सत संगत जित हर्ष पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रेमन चित्त वह उद्यम जा आहार हर जीव परया।

तुद आपे सिरठ सब पाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सत्यार मैंडा साई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू दे सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया।

नित नित जीड़े समालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे ते दाते कम सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सज्जन असीसड़िया जो होवे सह सो मेल कर कर एहो पहुंच।

आओ सहस्ताव नयन नान नयन है तो कौ सहस मूर्त नना एक तो ही सहस पद बेमल नान एक पद गंध बिन सहस्ताव गंध एव चलत मोही सामय जोत जोत है सोए हिद चानन सामय चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जोत भावे सु आरती होए हर चरण कामन मकरंद लोभत मनो आनंद नमय आई प्यासा।

मद देख पूला विसर तेरा चेतन आवे नाओ। श्री राग महला पहला कोट कोटी मेरी आरजा पावन पीन अपे आओ। चंद सूरज दो गुफे ना देखा सुपने सौन ना थाओ। ती तेरी कीमत ना पवे

रस सोयना रस रूपा कामण रस परमल की वास रस घोड़े रस जा मंदर रस मीठा रस मास एते रस शरीर के कै कड़ नाम निवास जित बोलिया पद पाई है तो बोलिया प्रवान फिक्का बोल विगुचना

सुख होए। जग सुपना बाजी बनी फिर मैं खेल खिलाए, संजोगी मिल एक से वियोगी उठ जाए। जो भाणा सोती है अवरना करना जाए, गुरमुख वस्त विसाई है सच वखर सच रास। जिन्नी सच वणजिया गुर पूरे साबास, नानक वस्त पछाण सी सज सौ।

बिन शब्दे परमाई है, दुबदा डोबे पूर मान रे शब्द तरो चित लाए, जिन गुरमुख नाम ना बूझया मर जन्म आवे जाए। रहाओ तन सूचा सो आखिए, जिसमें साचा नाव पय सच राती देहोरी, जेवा सच सुवाओ सची नजर निहालिए, बौड़ ना पावे ताओ साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए जलते ते पवन साजया, घड़ घड़ जोत समोए निर्मल मैला नाथिए, सब दरते पद होए यो मन साज संतोखिया, नजर करे तसमाहे पंच भूत सज पैरते, जोत सची मन माहे, नानक अवगुण विसरे गुर राखे पद तागे, श्री राग महला पहला, नानक बेड़ी सच की तरिये गुर विचार, एक आवे एक जावही पूर परे अहंकार, मन हट मत्ती बूढ़ीए गुरमुख सच सो तार, गुरबिन क्यों तरिये सुख होए, ज्यो भावे त्यों राख तू मैं अवरना दूजा कोए। रहाओ आगे देखो डाओ जले, पाछे हरे अंगूर, जिसते उपजे तिसते बिनसे, घड़ घड़ सच भरपूर, आपे मेल मिलावही ताचे महल हदूर, साहे साहे तुस्तमला कदे राम सारे, ज्यो ज्यो साहब मन से गुरमुख अमृत पेयो, मन तन ते रातू तनी गर्भ निवार समेयो, जित्यो जगत त्यो पाया तिर पवन कर आकार, गुरमुख चानन जानिए मनमुख मुग्ध गुबार, घड़ घड़ जोत निरंतरी बूझे गुरमत सार।

जीवन की नहीं आस, तू सर्व जिया प्रतपालगी, लेखै साध विरास, अंतर गुरमुख तू वसै, क्यों भावे त्यों निरजास, जीअरे राम जपत मनमान, अंतर लागी जल बुझी, पाया गुरमुख ज्ञान रखाओ, अंतर की गत जानिए, गुर मिल गए संग उतार, मोया जित कर जाइए, तिद जीम दिया मर मार, अनखा सब सुहावने।

ना सुने ही गोरिये आपन कन्नी सोए लगी आवे सौरे नितन पेया होए नानक सुती पेई है जान वरती सन गुणा गवाई गंठड़ी अवगुण चली बन तिरी राग मखला पहला कर दूजा आपे रसिया आप रस आपे रामनहार आपे होवे चोलड़ा आपे सेज पतार रंगता मेरा साहेब रव रहा भरपूर रहाव आपे माछी मछली आपे पानी जाल आपे जाल मणकड़ा आपे अंदर लाल आपे बहु बदरंगला सखिये मेरा लाल नेत्र वे सुहागणी देख हमारा हाल प्रणवे नारक बेनती तू सर्वर तू हंस कौर तू है कविया तू है आपे वेख विरस श्री राग मोहल्ला पहला कर तीजा एओ तन धरती बीज कर्मा करो सलल आपाओ सारंग पानी मन किसान हर दे जमाए लै त्यों पावस पद निर्बाणी काहे गर्भ समूड़े माया पेत सुतो सगल काल तर माता तेरे होए न अंत सखाया रहाओ बिखे बिकार दुष्ट किरखा करे इन तज आत्म होए ते आई जब तब संजम होए जब राखे कमल बिकसे मद आसरो माई बीस सवतारो बासरो संग्रह तीन खोड़ा नित काल सार है दस अठार में

कर परमाइये मन हृदय कपट कमाए हर का महल न पावई मर विष्टा माए समाए मन रे ग्रह ही माए उदास सर संजम करनी सो करे गुरम खोए प्रगास हराव गुर के शब्द मन जीत।

नित जोहे जम जाले, सुपने सुखना देखनी, बहु चिंता पिर जाले, सबना का दाता एक है, आपे बख्श करे, कहना किशु ना जावई, जे पावे थे दे, नानक गुरमुख पाई है, आपे जाने सोए, श्री राग महला तीजा, सच्चा साहिब सेवी है।

माया मोह है, गुरमुख चौथा पद पाए, कर कृपा मेलायन, हर नाम स्या मन आए, पोते जिनके पुन्न है तेन

संतां संगत मिल रहे, जप राम नाम सुख पाए, हरहाव गुरमुख सदा सुहागणी, तिर रख्या उर तार, मिठा बोले निव चले, सेजै रवे पतार, होबावंती सुहागणी, जिन गुर का खेत अपार, पूरे भाग सदगुर मिले, जा भागे का उदय होए, अंतरों दुख प्रम कटिए, सुख प्राप्त होए, गुर के पाणे जो चले, दुख न पावे कोए, गुर के पाणे विच अमृत है।

नामह तैना कशु न जाए पीवत हु परवान पया पूरे शब्द समाए आपे दे ता पाईए होर करना किशु न जाए देवन वाले कह हाथ दात है गुरु द्वारे पाए जिहा की तोन तेहा होआ जेहे कर्म कमाए जात सत संजम नाम है विण नावे निर्मल ना होए पूरे भाग नाम मन वसे शब्द मिलावा होए नानक सहजे ही रंग वर्तदा हर गुण पावे सोए श्री राग महला तीजा काया साधे उर्द तप करे विचो होमे ना जाए अध्यात्म कर्म जे करे नाम ना कब ही पाए गुर कह शब्द जीवत मरे हर नाम से मन आए सुन मन मेरे भाजे सदगुर सरना गुर प्रसादी छुट्टी है विघ भवजर शब्द गुर तरना हरहाओ त्रैगुण सभा तात है।

करी या जप करी सतगुर पूछो जाए, सतगुर का पाणा मन लई विचों आप गवाए। एहा सेवा चाकरी नाम से मन आए, नामे ही ते सुख पाई है सच्चे शब्द सुहाए। मन मेरे

चौजुगी सच्चो सच सुनाए, होमे मेरा रह गया सच्चे लया मिलाए। इनको मैल हदूर है जो सच रखे लिवलाए, नदरी नाम ते आईये विण कर्मा पाया ना जाए। पूरे भाग सतसंगत लह सगुर भेटे च से आए, अनदिन नामे रत्या दुख बिख्या विचो जाए। नानक शब्द मिलावड़ा नामे नाम समाए, श्री राग महला तीजा अपना पाओ तिन पायोन। जिन गुर का शब्द विचार सतसंगति सदा मिल रहे, सच्चे के गुणसार दुबदा मैल चुकाइन। हर राख्या उर तार सच्ची बाणी सच मान, सच्चे नाल प्यार मन मेरे होमे मैल पर नाल। हर निर्मल सदा सोना शब्द सवारन हार, हरहाओ सच्चे शब्द मन मोहया प्रभ आपे लहे मिलाए। अनदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाए, ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सदगुर बूझ न पाए। जिनको पूर्व लिखया सदगुर भेटिया तिन आए, विण नावे सब डूमणी दूजे पाए खुवाए। तिस बिन कड़ी ना जीवदी दुखी रहन विखाए, परम पुलाना अंधला फिर आवे जाए। नदर करे प्रवे अपनी आपे लए मिलाए, सबके सुनदा वेखदा क्यों मुकर पे आ जाए। पापो पाप कमाउं दे पापे पजे पचाए, तो प्रण नदर न आवई मन मुख बूझ न पाए। जिस वे खाले सो ही वेख नानक गुरमुख पाए। श्री राग महला तीजा बिन गुर रोग न टुटई, होमे पीड़ न जाए। गुर प्रसादी

सच खटना सच रास है, सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से ना विछड़े, नानक गुरमुख होए। श्री राग महला तीजा, आपे कारण करता करे, सिरट देखे आपे उपाय, तब एको एक वर्तदा, अलख न लिखया जाए, आपे प्रभु दयाल है, आपे दे बुझाए, गुरमति सद मनवसया, सच रखे लिवलाए, मन मेरे गुर की मन ले जाए, मन तन शीतल सब थीए, नाम से मन आए, हरहाओ जिन कर कारण तारिया, सोई सार करे, गुर कै शब्द पछाणिए, जां आपे नदर करे, छे जन सब दे सोने, तिस सच्चे दरबार, गुरमुख सच्चे शब्द रते, आव मेले करतार, गुरमति सच सलाना, जेदा अंत न पार आवार, धड़कड़े आपे हुकम से, हुकमे करे विचार, गुर शब्दी सलाही है, होमे विचों कोय, सातन नावे बारी, अवगुणवंती रोय, सच सलागी सच लगा, सच्चे नाय तृप्त होय, गुण विचारी गुण संग्रह, अवगुण कड्डा धोय, आपे मेल मिलाएंदा, फिर वे छोड़ा ना होय, नानक गुरसाला ही अपना, जिद्दू पाई प्रसोय, श्री राग महला तीजा, सुन सुन काम घेलिए, क्या चले बां लुड़ाए, अपना फिर ना पछाण ही, क्या वो देसे जाए, जिन्नी सखी कंत पछाणिया, हों तिनके लागो पाए, तिन ही जैसी थी रहा, सत संगत मेल मलाए, मुंदे कूड़ मुठी कूड़ियार, फिर प्रस्ताचा सोना, पाइये गुर विचार, अरहाओ मानमुख कंत ना पछाणई, तिनको रहन विखाए, गर्भ अटिया तृष्णा जले, दुख पावे दूजे पाए, सबदरतिया सुहागणी, तिन विचो हो में जाए, सदा पिर रावे अपना, तिना सुखे सुख विखाए, ज्ञान विहूणी पिर मुतिया, पिर मन पाया जाए, अज्ञान मत्ती अंधेर है, बिर पिर देखे भुख न जाए, आप हो मिलो सहेलियो, मैं पिर देव मिलाए, पूरे भाग सतगुर मिले, पिर पाया सच समाए, से सहियां सुहागणी।

संग सुमाओ हर जपिए आराधी है आड़ पैर गोविंद जी प्राण तान तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दोह उतारेन प्रापार ब्रह्म बगसिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तेज सच सिंह मरे न आवे जाए ना विछोड़िया विछड़े सब में रहा सुमाए दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत

विचार क्या छोड़ी बात गुमान रहाओ जैसे रैन प्रौण उड़चल से प्रभात क्या तू वृत्ता ग्रस्त स्यों

पौ संत सरणी लाग चरणी, मिटे दुख अंधार, सत संतोख दया कमावे ये करनी सार। आव छोड़ सब होए रेणा, जे दे प्रभ निरंकार, जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर परम काटया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवा, दुकृत सुकृत मंद संसार सगलाना, तू ते रहत भगत है कोई विरला जाना। ठाकुर सर्वे समाना, क्या को सुनो स्वामी तू वड़ पुरख सो जाना। रखाओ मान अवमान मंद सो सेवक नाही, तत्समदर्शी संतो कोई कोड़ मंदाही।

सबसे दे आधार, सतगुर भजन कमावणे सच्चा इहो विचार, बिन साधु संगत रत्या माया मोह सब शार, मेरे सजन हर हर नाम समाल, साधु संगत मन वस पूर्ण होवे काल, अरहाओ गुर समरथ अपार गुर वड़भागी दर्शन होए, गुर अगोचर निर्मला गुर जेवड़ अवर ना कोए, गुर करता गुर करणहार गुरमुख सच्ची सोए, गुर ते बाहर किश नहीं गुर कीता लोड़े सो होए, गुर तीर्थ गुर पार जात गुर मनसा पूर्ण हार, गुर दाता हर नाम दे उदरे सब संसार, गुर समरथ गुण रंकार गुर ऊंचा अगम्य पार, गुर की महिमा अगम है क्या कथ कथन हार, जितड़े फल मन बाचिए तितड़े सब गुर पास, पूर्व लिखे पावणे साच नाम दे रास, सतगुर सरणी आया बाहुड़ नहीं विनाश, हर नानक कदे ना विसरो यो जियो पिंड तेरा सास, श्री राग महला पंजवा संत जनो सुन पाई हो चूटन सा ते नाए, गुर के चरण सरेवणे

आओ। सजग बाधो काल को बिन गुर काल अफार, सच रते से उबरे दुबदा छोड़ विकार। हों तिन के बलहारण दर सच्चे सतियार, सीता ने जो पंखिया जाली बदक हाथ। गुर राखे से उबरे होर पाथे चोगे साथ, बिन नावे चुन सुटिए कोई न संगी साथ। सचो सच्चा आखिए सच्चे सच्चा थान, जिन्नी सच्चा मन्या तेन मन सच ध्यान। मान मुख सूचे जानिए गुरमुख जिन्ना ज्ञान, सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मिलाए। साजन मिले सुख पाया।

मैल नाही निर्मल जल नहाए, निर्मल साचा एक तू और मैल परी सब जाए। अरहाओ हरका मंदिर सोना किया करने हार, रसा दीप अनूप जोत तेरे पवन जोत पार, हाड पटनगढ़ कोचड़ी स सौदा व्यापार, ज्ञान अंजन पै पंजना देख नरंजन पाए, गोबत प्रट सब जानिए ये मन रखे ठाए, ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे लय मिलाए, कसक सवट्टी लाई है परखे हित चित लाए, खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए, आस अंदेसा दूर कर यूं मल जाए सुमाए, सुख को मांगे सब को दुख न मांगे कोए, सुखे को दुख अगला मनमुख बूझ न होए, सुख दुख सम कर जानिए शब्द ते सुख होए, वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास, सब दरते से जिन गए हाउ सब बलिहारे जास, चौदुग मैले मल भरे जिन मुख नाम न होए, भगती पाए विगुणिया मोकाला पद खोए, जिन्नी नाम सारिया अवगुण मुठी रोए, खोजत खोजत पाया

तेर रहे सुहाग। भाई रे अबर नही मैं ताओ, मैं तन नाम निधान है गुरदिया बल जाओ। अरहाओ गुरमत पात साबा तिस, तिसके संग मिलाओ। रिबन कड़ी ना जीवो बिन ना वे मर जाओ, मैं अंदले नाम ना विसर एक टिकी कर जाओ। गुरु जिना का अंदला किले ना गीटाओ, बिन सतगुर नाओ ना पाईए बिन नावे कैसाओ। आए गया पछतावन जो सुन्ये कर काओ, बिन नावे दुख दिहोरी जो कलर की पीत। तब लग मैल ना पाईए जाब लग साच ना चीत, शब्द रपे कर बाईए निर्वाणी पद नीत। हाँ गुर पूछो अपने गुर पुछ कार कमाओ, शब्द सलाही मन वसे हौ में दुख जल जाओ। सहजे होए मिलावड़ा साचे सच मिलाओ, सब दरते से निर्मल तक काम क्रोध अहंकार। नाम सलाहन सत सदा हर रखे और तार, सो क्यों मनो मसारी है सब जिया का आधार। सब मरे सो मर गए

मैं तुद बिन अवर ना पावई, तू पावे सुख होए हरहाओ। नाम सलाही रंग स्यों गुर के शब्द संतोख, जो दिसे सो चलसी पूड़ा मोह ना वेख। वाट बटाऊ आया नित चलदा सा देख, आखने आखे केतड़े गुरबिन बूझ न होए। नाम डाई जे मिले सच रपे पद होए, जुत पावे से पले खोटा खरा न कोए। कुरसरनाई छुट्टिए मनमुख खोटी रास, अच ताज पासा की कड़ी गए शब्द विगा।

गुआ कणी पी अंतर गर्भ गुमान राम नाम मन विद्या गुर दिया सदान मन बुद्धि केतिया केते वेद विचार केते बंधन जी के गुरमुख मोख द्वार सचो ओरे सबको ऊपर सच आचार सबको ऊंचा आखिए नीच न दिसे कोए एक ने फांडे साजे एक चानन क्यों लोए कर मिले सच पाइए दुर्बख्श न मेटे कोए साध मिले साधु जने संतोख से गुर पाए अकथ कथा विचारिये ये सदगुरु महे सुमाए ई अमृत संतोखया दर गए पैदा जाए काड़ कड़वा जे किंगुरी अन दिन शब्द सुखाए विरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए।

तन निर्मलो गुरदात करे प्रसोय अरहाओ राम नाम तन निर्मलो जे देवे दे मनहार आगे पूछना हो वही जे बेली कुर करतार आप चिड़ाए छुट्टिए आपे बख्शन हार मन गुजाने अपने धिया पूत संयोग नारी देख विगासीए नाले हरख सो सोग गुरमुख शब्द रंगावले तहे निस हर रस भोग चित ले वित जामुनु सागत डोल डोलाए बार टूंड गुचिए कर्म वस्त सुधाए मन भखौ में कर्म सी गुरमुख पल्ले पाए साकत निर्गुण आरिया अपना मूल पछाण रगत बिंद का इव तनो अग्नि पास पिराण पावने के वस देवरी मस्तक सच निशान बहुता जीवन मंगिए मुआरा लोड़े कोए सुख जीवन तिसिया किए जिस गुरमुख वसिया सोए नाम हूने क्या गणी जिस हर गुर दर्शन होए जो सुपने निस पुलिए जब लग निंद्रा होए तू सरपन केवल जीड़ा अंतर होमे दोए गुरमत होए विचारिये सुबना एव जग लोए अग्न मरे जल पाईए जो बारक दूते माए बिन जल कमसो नाथिए बिन जल

सिद्ध बह देश दान सोर सिद्ध गण गंधर्व मुंजन शेख पीर सलार दार कूज कूचा कर गए अवरे पे चलन हार सुल्तान खान मलूक उमरे गए कर कर कूच कड़ी मोत के चलना दिल समझ तू पे पहुच सबदा माए वखाणी है विरला ता बूझे कोए नानक वखाणे बेनती जलथल मही अल सोए अलाओ अलाखे गम कादर करण गार करीम सब दुनी आवन जावनी मुकाम एक रहीम मुकाम तिसनू आखिए जिस

है, क्या माया कर्म कमाए, तो सुख ए जो बद है, हम में कर्म कमाए, बिन शब्दे परम न चूकई, ना विचों हम में जाए, बिन प्रीति भगत न होवई, बिन शब्दे थाए न पाए, शब्दे हम में मारिए, माया का प्रम जाए, नाम पदार्थ पाइए, गुरमुख सहज सुपाए, बिन गुर गुण ना जापनी, बिन गुण भगत ना होए, भगत वछल हर मन मसया, सहज मिलया प्रसोए, नानक शब्दे हरसा लाइए, कर्म प्राप्त होए, श्री राग महला तीजा, माया मोह मेरे प्रभु कीना, अपे परम पुलाए, मानव कर्म करे नहीं बूझे, बिरथा जन्म गवाए, गुरबाणी इसी जग में चानन, कर्म वसे मन आए।

परम भुलाए, पढ़िए कुणिए क्या कथिए, क्या मुंडो पुथा जाए। चौथे पद में सहज है, पुरमुख पल्ले पाए, निर्गुण नाम निधान है, फैजे सोजी होए। गुणवंती सालाया, सच्चे सच्ची सोए, उलिया सहज मिलाए सी, शब्द मिलावा होए। फिर सहजे सब अंध है, माया मोह गुबार, सहजे की सोजी पई, सच्चे शब्द पार। आपे बख्स मलायन, पूरे गुर करतार, सहजे अदिष्ट पछाणिए, निर्भव ज्योत निरंकार। हवना जिया का एक दाता, ज्योति ज्योत मिलावन हार, पूरे शब्द सराई है।

तेरे अंतर शब्द बसाया सैया से सोहागनी जिन सै नाल प्यार जियो जिन्ना भाणे का रस आया तिन विचो परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे लए मिलाए जियो सतगुर मिले फल पाया तिन विचो ऐ करण चुकाया दुरमत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय सुमाणिया सुख सेवा अंदर रखे अपनी नदर तरे निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिए जित मिले नाम खाणिए सतगुर बाज ना पायो तब तक की कर्म कमाए जियो हों सतगुर विटों कुमाया जिन प्रफुल्ला मार्ग पाया नदर करे जय अपनी आपे लय रलाए जियो तू सबना माए सुमाया तिन करते आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जा को जोत तरी करतार जियो आपे खसम निवाजया जियो पिंड दे साजया अपने सेवक की पैज रखिया तुए कर्म मस्तक तार जियो सब संजम रहे सियाणपा मेरा प्र सब कुछ जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोग करे जयकार जियो मेरे गुण अवगुण ना विचारिया प्रभ अपना बिरद सुमारिया कंठ लाए कह रखियोन लगे न तत्ती वाओ जियो मैं मंतन प्रभु ते आया जिये इछेड़ा फल पाया सा पासा सिर खसम तू जप नानक जीवे नाओ जियो तुद आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सचो सच वरतदा जिस भावे तिसे बुझाए जियो गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चुकाया।

पैर विसर गया ध्यान, तीजे पैरे रैण कै बन जा रहा मित्रा, धन जोबन स्यो चित हर का नाम न चेत ही बन जा रहा मित्रा, बदा छुट है जित हर का नाम न चेते प्राणी, बिकल पया संग माया तन स्यो रत्ता जोबन मत्ता, अहला जन्म गवाया धर्म से तीवा पार न कीतो, कर्म न कीतो मित, कहो नानक तीजे पैरे प्राणी, तन जोबन स्यो चित चौथे पैरे रैण कै बन जा रहा मित्रा, लावी आया खेत जा जम पड़ चलाया बन जा रहा मित्रा, किसे ना मिलिया पेत पेत चेत हर किसे ना मिलियो, जा जम पगड़ चलाया झूठा रुदन हुआ दो वाले, खिन में पया पराया साई वस्त प्राप्त होई, जिस स्यो लाया हेत कहो नानक प्राणी चौथे पैरे, लावी लुणिया खेत श्री राग महला पहला, पहले पैरे रहण के बन जा रहा मित्रा, बालक बुद्ध अचेत खीर पीए खेलाई गए बन जा रहा मित्रा, मात पिता सुत हेत मात पिता सुन हो कनेरा, माया मोह सुबाई संजोगी आया किरत कमाया, करणी कार कराई आराम नाम मुक्त न होई, बुढ़ी दूजे हेत कहो नानक प्राणी पहले पैरे, छूटेगा हर चेत दूजे पैरे रहण के बन जा रहा मित्रा, पर जो बन मैं मत आहे निष्काम आप्या बन जा रहा मित्रा, अंदले नाम ना चित राम नाम कड़े अंतर नाही, होर जाने रस कस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही, जन्म मरोगे झूठे तीर्थ वर्त सुज संजम नाही, कर्म धर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा, दुबदा व्यापे दूजा तीजे पैरे रैण कै बन जा रहा मित्रा, सरहंस उलथड़े आए जोबन कटे जरुआ जने बन जा रहा मित्रा, आम कटे दिन जाए अंतकाल पछतासी अंदले, जा जा पगड़ चलाया सब कुछ अपना कर कर राखया, खिन में पया पराया बुद्ध बसरजी गई सियाणप, कर अवगुण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पैर, प्रभु चित हो लेवलाए चौथे पैरे रहण के बन जा रहा मित्रा, बिरद पया तनखीण अखी अंध ना दिसई बन जा रहा मित्रा, कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जी बरस नाही, रहे पराको ताना गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे, मनमुख आमण जाना खड़ पक्की कुड़ भजे बिनसे, आए चले क्या मान कहो नानक प्राणी चौथे पैरे, गुरमुख शब्द पछाण ओढ़ आया तिन साया बन जा रहा मित्रा, जर जरवाना कन ए करती गुण ना समाणिया बन जा रहा मित्रा, अवगण खड़सन बन गुण संजम जावे चोट न खावे, ना तिस जमन मरना काल जाल जम जोए न साके, पाए भगत पै तरना पात सेती जावे सह समावे, सगले दुख मिटावे कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटे, साचे ते पद पावे श्री राग महला चौथा, पहले पैरे रहण के बन जा रहा मित्रा, हर पाया उदर मंझार हर त्यावे हर उतरे बन जा रहा मित्रा, हर घर नाम सुमार हर घर नाम जपे आराधे, विज अग्नि हर जप जीविया पार जन्म पया मुख लागा।

तान चितवै तान संचय बन जा रहा मित्र। हर नामा हर ना सुमाल, हर नामा हर घर कदे ना सुमाले, जे होवे अंत सुखाई। क्यों तन संपे माया झूठी, अंत छोड़ चलिया पछताई। जिसनू कृपा करे गुरु मिले, सो हर हर नाम सुमाल। कहो नानक तीजे पैरे प्राणी, से जाय मिले हर नाल। चौथे पैरे रहन के वन जा रहा मित्रा, हर चलन वेला आंदी। कर सेव पूरा सतगुरु बन जा रहा मित्र, सब चली रहन वेखन दी। हर सेव खिन खिन टिल मूल न करे हो, चित अस्थिर जुग जुग हो वो। हर सेती सदमान हो रलिया, जन्म मरण दुख खोवो। गुर सतगुरु स्वामी भेद न जान हो, जित मिल हर भगत सुखन दी। तो नानक प्राणी चौथे पैर, सफल हो रहन भगतां दी। श्री राग महला पंजवां, पहले पैरे रहन केवन जा रहा मित्र। तार पाए ता उधरे माहे, दसी मासी मानस किया बन जा रहा मित्र। तर मोलत कर्म कमाहे, मोलत कर दीनी कर्म कमाने। जैसा लिखत तुर पाया, माद पिता पाई सुध बनता। तिन पीतर प्रभु संजोया, कर्म सुकर्म कराए आपे। इस जनते वस किश नाहे, कहो नानक प्राणी पहले पैरे। तर पाए ता उधरे माहे, दूजे पैरे रहन के बन जा रहा मित्र। पर जवानी लहरी दे, बुरा भला ना पछाणी बन जा रहा मित्र। मन मत्ता अंग में, बुरा भला ना पछाणे प्राणी। आगे पंथ करारा पूरा सतगुर कभू ना सेवया, सिर ठांडे जम जंदारा। धर्म राय जब पकस बवरे, तब क्या जवाब करे। कहो नानक दूजे पैरे प्राणी, पर जोबन लहरी दे। तीजे पैरे रहन के बन जा रहा मित्र, बिग संचे अंध अज्ञान। पुत्र कलत्तर मोह लपटिया बन जा रहा मित्र। अंतर लहर लोभान, अंतर लहर लोभान परानी। को प्रचित न आवे, साध संत सो संग न किया। बोजोनी दुख पावे, सिरजनहार वसारिया स्वामी। एक निमख न लगो ध्यान, कहो नानक प्राणी तीजे पैर। बिग संचे अंध अज्ञान, चौथे पैरे रहन के बन जा रहा मित्र। तिन नेड़े आया सोए, गुरमुख ना सुमाल तू बन जा।

को जो जुगे जुगो सद पीढ़ी गुरु चलन दी, जो जुग पीढ़ी चले सदगुर की, जिनी गुरमुख नाम ते आया, हर पुरख ना कभी बिनसते जावे, नित देवे चढ़े सुवाया, नानक संत संत हर एको, जप हर हर नाम सुगंधी, हर राम राम मेरे बाबला, फिर मिलतन वेल बधंदी, श्री राग महला पंजवा, शांत एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मन प्यारिया जीव मित्रा, गोविंद नाम सुमाले, मन प्यारे जी मित्रा, हर निभगे तेरे नाले, संग सगाई हर नाम त्याई, बिरथा कोई न जाए, मन चिंदे से ही फल पावे, चरण कमल चितलाए, जल तल पूर है आपन वारी, घट घट नदर निहाले, नानक सिख दे मन प्रीतम, साध संग प्रम जाले, मन प्यारे जी मित्रा, हर बिन चूड़ पसारे, मन प्यारे जीओ मित्रा, बिगसागर संसारे, चरण कमन कर भोयत करते, सहसा दुख न व्यापे, और पूरा पेटे वडभागी, आठ पैर प्रभ जापे, आद जुगाती सेवक स्वामी, भगता नाम आधारे, नानक सिख दे मन प्रीतम, पिन हर चूड़ पसारे, मन प्यारे जीव मित्रा, हर लब्दे खेप सवली, मन प्यारे जीव मित्रा, हर दर नेचल मल्ली, हर दर सेवे अलख अपेवे, नेचल या सुन पाया, ते जन्म ना मरण ना आवन जाना, संसार दुख मिटाया, चित्र गुप्त का कागद फारिया, जमदूता कशु न चली, नानक सिख दे मन प्रीतम, हर लदे खेप सवली, मन प्यारे जीव मित्रा, कर संता संग निवासो, मन प्यारे जीव मित्रा, हर नाम जत पर गासो, सिमर स्वामी सुखे गामी, ये सगली कुनिया, पुरबे कुमाए श्री रंग पाए, हर मिले चिरीम शून्या, अंतर बार सर्वत रव्या, मन उपजिया विश्वासो, नानक सिख दे मन प्रीतम, कर संता संग निवासो, मन प्यारे जीव मित्रा, हर प्रेम भगत मन लीना, मन प्यारे जीव मित्रा, हर जल मिल जीवे मीना, हर पिया घाने अमृत बाने, सर्व सुखा मन उठे, श्री तर पाए मंगल गाए, यश पुन्नी सदगुर तुठे, लली ने लाए नौंद पाए, नाओ सर्वस ठाकुर दीना, नानक सिख संत समझाई, हर प्रेम भगत मन लीना, श्री राग के शांत महला पंजवा, एक ओंकार, सदगुर प्रसाद डखना, हठ मजाहू मापिरी, पसे क्यों दीदार, संत सरणाई लभणे, नानक प्राण आधार, शंत चरण कमल स्यो प्रीत, रीत संत मन आवे जियो, दुतिया पाओ विपरीत, अनीत दासा ने पावे जियो, दासा ने पावे बिंदर सावे, एक खेन तीर्ज क्यों करे, ना बिहूना तन मन हीना, जल बिल मछली ज्यो मरे, मिल मेरे प्यारे प्राण आधारे, कुण साध संग मिल गावे, नानके स्वामी तार अनुग्रह, मन तन अंक सुमावे, डखना सोहंदड़ो हवठाए, ओए ना दिसे जूझड़ो, खुलड़े कपाट, नानक सतगुर पेड़ते, शंत तेरे बचन अनूप अपार, संतन आधार, पानी बिचारिये जियो, सिमरता साध गिरास, पूर्ण विस आस, क्यों मनो बिसारिये जियो, क्यों मनो बिसारिये, निभख नहीं टारिये, गुणवंत प्राण हमारे, मन बांछित फल देत गए स्वामी, जी की बिरथा सारे,
अनाथ के नाथ सब के साथ जप जुए जमन हारिए नारक की बेनती प्रप कृपा कर पवज तारिए टखना तूड़ी मजन साध के साई सिए कृपाल लदे हबे थोकड़े नानक हर तन।

सत्य नाम गुर प्रसाद हर घर उत्तम नाम गए जिन सिरिया सब कोए जियो हर जी सवे प्रतपालदा कर कर मैया सोए तो घर सदा त्याई है तिस बिन अवर ना कोए जो मोए माया चित लाए दे छे छोड़ चले दुख रोए जन नानक नाम त्याया हर अंत सकाई होए मैं हर बिन अवर न कोए हर गुर सुननाई पाइए बन जा रहा मित्रा वड़पाग प्राप्त हो।

हर आपे परम भुलाएगा, हर आपे ही मत दे, गुरमुखा मन प्रकाश है, छे विरले के ही के, हों बलेगारी तिन कौ, जिन घर पाया गुरमते, जन नानक कमल प्रकाशया, मन हर घर मुठड़ा है, मन हर घर जपन करे, हर गुर सुनाई पज पो जिंदु, साब केल विख दुख पर हरे हरहाओ, धड़कड़ रमैया मन मसे, क्यों पाईए कित पत, गुर पूरा सदगुर पेटीए, हर आए वसे मन चित, मैं तर नाम आधार गए, हर नामे ते गत मत, मैं हर घर नाम साओ है, हर नामे ते जद पत, जन नानक नाम ते आया, रंग रतड़ा हर रंग रत, हर त्यावो घर प्रभ सत, गुर बचनी घर प्रभ जानिया, सब हर प्रभ ते उत्पत, हर हाओ, जिनको पूर्व लिखिया, ते आए मिले गुरपास, सेवक पाए बनजारिया मित्रा, गुर हर घर नाम प्रकाश, तन तन वणजवा पारिया, जिन वखर लदेड़ा हर रास, गुरमुखां दरमुख उजले, से आई मिले घर पास, जन नानक गुर तिन पाया, जिन्ना आत उठा गुणतास, हर त्यावो साज ग्रास,

मीना गए आपे आपे ही आप जाल तू आपे जाल बताएंदा आपे विच से बाल तू आपे कमल अलिप्त है सह हथा विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमक कड़ी कर ख्याल हर तुद हो बार किश नहीं गुरसबदी वेख निहाल सलोक महला तीजा हुक्म न जाने बहुता रोवे अंदर धोखा नींद न सोवे जे तन खसम चले रजाई दर कर सोभा महल बुलाई नानक करमी ए मत पाई गुर प्रसादी सच समाई महला तीजा मनमुख नाम विहूणिया रंग कसुंबा देख ना भुल इसका रंग दिन थोड़िया छोछा इसदा मुल दूजे लगे पचमुए मूर्ख अंध गवार बिष्टा अंदर कीड़ से पए पते वार हो वार नानक नामरते से रंगुले गुरके सह सुपाए भक्ति रंग न उतरे सहजे रहे सुमाए पौड़ी सिष्ट उपाय सब तुद आपे रिजक संभाया एक वल छल करके खाम दे मोह कूड़ कुसत तिनी ढाया तुद आपे पावे सो करे तुद ओते कम ओए लाया एक ना सच बुझायोन तिना अतुट पंडार देवाया हर चेत खाए तिना सफल है अचेता हथ तड़ाया सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित बेद वखाण है माया मोह सवाए दूजे पाए हा नाम सारिया मन मूर्ख मिले सजाए जिन जियो पिंड दिता इस कबहू ना चेतै जो दिंदा रिजक समाहे जम का फहा गलो ना कटिए फिर आवे जाए मानमुख किशु ना सूझे अंधले पूर्व लिखिया कमाए पूरे भाग सतगुर मिले सुखदाता नाम से मन आए सुख माने सुख पहनना सुखे सुख विखाए नानक सो नाओ मनो नाम सारी है जित दर सच्चे सोभा पाए महला तीजा सतगुर से सुख पाया सच नाम गुणतास गुरमती आ पछाणिया राम नाम परगास सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास जियो पिंड सब तिसका सिफत करे अरदास सचे शब्द सालाना सुखे सुख निवास जब तब संजम मने माहे बिन नावे त्रिग जीवास गुरमती नाओ पाईए मनमुख मोहे विनास ज्यों पावे त्यों राख तू नानक तेरा दास पौड़ी सब को तेरा तू सब सदा तू सब नारास तब तू दे पासो मंग दे नित कर अरदास जिस तू दे ते सब कुछ मिले इतना दूर है पास सब बाजों थाओ को नहीं।

सद गुर प्रसाद रे नर गर्भ कुंड जब आहित उर ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मदना अहनिस एक ज्ञान सु नागा ए दिन संबल कष्ट महा दुख आप चेत अल्प सारिया गर्भ छोड़ मृत मंडल आय तो नर हर मनोम सारिया फिर पछतावेगा मूढ़िया तू कम कुमत प्रम लागा चेत राम नाही जयपुर जाएगा जन बिचरे अनराधा रहाव बाल विनोद चिंद्र सलागा खिन खिन मोहे ब्यापे रस मिसमेद अमृत दिख चाखी तो पंच प्रगट संतापे जब तब संयम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना अराध्या कुछ लिया काम काल मत लागी तो आन सकत काल बंधया तरण तेज परत्रे मुख जो है तर अवसर ना पछाणया उन मत काम मां दिख भूले पाप पुन ना पछाणया सुत संपत देख यो मन गर्भया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो भाग मुख जन्म मगोया पुंडर केस कुसुम ते तौले शब्द पाताल की बाणी लोचन समय बुद्ध बल नाठी ता काम पवस माधानी ताते विखे पई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाशे पछताना निगटी देह देख तन उबजे मान करतनी बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु ना सूझे ठाका ते उड्या मन पंखी कर अंग ना सुखाई बेणी कहे सुनो रे भगतो मरण मुक्त किन पाई श्री राग तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा तनक कटक जल तरंग जैसा जो पे हमना पाप करंता अहे अनंता पतत पावन नाम कैसे हुंता रघाव तुम जो नायक आछो अंतर जामी प्राप्त जान जानी जय जानते स्वामी शरीर अराध मोको विचार देहु रवदास समदल समझावे को राग माज

प्रसाद हर हर नाम में हर मन पाया, वडभागी हर नाम ते आया, गुरपूरे हर नाम सिद्ध पाई, ओ विरला गुरमत चल जियो, मैं हर हर खच लया बन पल्ले, मेरा प्राण सकाई सदा नाल चले, गुरपूरे हर नाम दड़ाया, हर नित हर तन पल्ले जियो, हर हर सज्जन मेरा प्रीत मराया, कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया, हों रह न सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वह वह चले जियो, सगुर मित्र मेरा बाल सकाई, हों रह न सका बिन देखे मेरी माई, हर जियो कृपा करो गुर मिलो, जन नानक हर तन पल्ले जियो, माझ महला चौथा मधुसूदन मेरे मंत्र प्राणा, हों हर बिन दूजा अवर न जाना, कोई सज्जन संत मिले वडभागी, मैं हर प्रप्यारा दसे जियो, हो मन तन खोजी पाल पाल आई, क्यों प्यारा प्रीत मिले मेरी माई, मेल सत संगत खोज दसाई, विज संगत हर प्रावस्ते जियो, मेरा प्यारा प्रीतम सदगुर खवाला, हम बारक दीन करो प्रतपाला, मेरा मात पिता गुर सदगुर पूरा, गुर जल मिल कमल विकसे जियो, मैं बिन गुर देखे नींदन आवे, मेरे मन तन वेदन गुर बेहो लगावे, हर घर दया करो गुर मिलो, जन नानक गुर मिल रहसे जियो, माझ महला चौथा हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा ने सुनिए, मेल सत संगत हर गुण गाए, जग पौजल दुत्तर तरिए जियो, औसकी हर मेल करेगा, मेरे प्रीतम का मैं दे स्नेहा, मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई, मैं दसे हर नर हरिए जियो, मेरी बेदन हर गुर पूरा जाने, और रह न सका बिन नाम खाने, मैं औखद मंत्र दीजे गुरपूरे, मैं हर हर नाम उधरिए जियो, हम चातक दीन सदगुर शरणाई,

मेरा जियो पिंड सबरास तुम्हारी तेरा जोर गोपाला जियो सदा सदा तू है सुखदाई निबन लागा तेरी पाई तारक मावा जित पावा जा तू दे दयाला जियो प्रभ तुम ते लेना तू मेरा गहना जो तू दे सोई सुख सहना जिथे रखे पै कुंत साई तू सबना के प्रतपाला जियो सिमर सिमर नांग सो पाया आड़ पैर तेरे गुण गाया सगल मनोरथ पूर्ण होए कदे न होए दुखाला जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म प्रमेघ बिठाया जल थल महियल दहत वरसाया सांध पई बूझी सब तृष्णा अंध पया सब ठाई जियो सुखदाता दुख पंजन खारा आपे बख्श करे जी सारा अपने कीते नूं आप प्रतपाले

प्रकाश हुआ जी अन दिन सरगुण गावन आ रखाओ तन मन खोजे ता ना ओ पाए तापत राखे ठाक रखाए गुर की बाणी अन दिन गावे सहजे भगत करावणिया इस काया अंदर।

परम पोलानी अग्ञानी अंधा मगना जाने फेर आमन जामने आ गुर सेवा ते सदा सुख पाया होमे मेरा ठाकर खाया गुर साखी मिटिया अंधियारा बजर कपाट खुलामने आ होमे मार मन मसाया गुर चरणी सदा चित लाया गुर कृपा ते मन तन निर्मल निर्मल नाम ध्यावण आ जीवन मरना सब तु दे ताई जिस बगसे ते दे वड्याई नानक नाम ध्याय सदा तू जमन मरण सवारण आ माझ महला तीजा मेरा प्रभ निर्मल अगम पारा बिन तकड़ी तो लै संसारा गुरमुख होवे सोई बूझे गुण कै गुणी समावण आ होवारी जीववारी हर का नाम मन वसावण आ जो सच लागे से अनदन जागे दर सच्चे सोभा पावण आ रहाओ आ सुने ते आपे वेखै जिसनु नदर करे सोई जन लेखै आपे लाए लै सो लागे गुरमुख सच कमावण आ जिस आप भुलाए सो किथे खत पाए पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए जिन सतगुर मिलिया से बड़भागी पूरे कर्म मलामण आ कई अड़े अन दिन सुती तंत विसारी अवगुण मुती अन दिन सदा फिरे बिल लांदी बिन तिर नींद ना पावण आ कई अड़े सुखदाता जाता होमे मार गुर शब्द पछाता सेज सुहावी सदा तिरावे सच सिगार बनावण।

तेरी सरनाई तू आपे सच बुझावणे आ जिन सच जाता से सच समाणे हर गुण गावे सच बखाणे नानक नाम रते बैरागी निरकरताड़ी लामणे आ माज महला तीजा सबद मरे सो मोवा जापे ताल ना चांपे दुख ना संतापे ज्योति विच मिल जो समाणे सुन मन सच समावणे आ हो वारी जो वारी हर के नाए शोभा पावणे आ सतगुर सेव सच चित लाया गुरमती सह सुमावणे आ रहाओ ताया कच्ची कच्चा चीर हंडाए दूजे लागी महल न पाए अन दिन जल्दी फिरे दिन राती बिन पिर बौध पावणे आ देही जात न आगे जाए जिथे लेखा मंगिए तिथे छुट्टे सच कमाए सतगुर सेवन से तनवंते ऐथे उथे नाम सुमावणे आ भए भाए सिगार बनाए गुर प्रसादी महल कर पाए आन दिन सदा रवे दिन राती मजीठे रंग बनावणे आ सबना फिर वसे सदा नाले गुर प्रसादी को नदर निहाले मेरा प्रभ आद ऊचो ऊचा कर कृपा आप मिलावणे आ माया मोहे यो जग सुता नाम सार अंत विगुता जिते सुता सो जागाए गुरमत सो जी पावणे आ आप्यो पीए सो परम गवाए गुर प्रसाद मुक्त गल पाए भगती रत्ता सदा बैरागी आप मार मिलावणे आ आप पाए तंदे लाए लख चौरासी रिजक आप अपड़ाए नानक नाम त्याए सच राते जो तुस भावे सो कार करावणे आ माज महला तीजा अंदर हीरा लाल बनाया गुर कै शब्द परख परखाया जिन सच पल्ले सच वखाणे सचक सवटी लावणे आ हो वारी जू वारी गुर की बाणी मन मसावणे आ अंजन महे निरंजन पाया ज्योति ज्योत मिलावणे आ रखाओ इस काय अंदर ओत पसारा नाम निरंजन आत अगमे पारा गुरम खोवे सोई पाए आपे बख्स मिलावणे आ मेरा ठाकुर सच दृढ़ाए गुर प्रसादी सच चित लाए सचो सच वरते सबनी ताई सचे सच समावणे आ वे प्रवाहो सच मेरा प्यारा किल विख अवगन घट नहारा प्रेम प्रीत सदा तिहाई है पै भाए भगत दृढ़ावणे आ तेरी भगत सची जे सचे पहावे आपे देना पुछो तावे सबना जिया का एको दाता सबदे मार जीवावणे आ हार तुद बाजो मैं कोई नाही हर तुदे सेवी ते तु सारा ही आपे मेल हो प्र साचे पूरे कर्म तू पावणे आ मैं होर न कोई तुदे जेहा तेरी नदरी सीज सदेहा आंदन सास समाल हरा रखे गुरमुख सहज समावणे आ तुद जेवड़ मैं होर ना कोई तुद आपे सिरजी आपे गोई तू आपे ही कड़पन सवार है नानक नाम सुहावणे आ माज महला तीजा साब कड़ आपे फोगन हारा अलख वरते अगमे पारा गुर कै शब्द मेरा हर पर त्याई है सहजे सच समावणे आ हो वारी जीव वारी गुर शब्द मन सामणे आ सब सूझे ता मन सो लूझे मनसा मार समावणे आ रखाओ पांच दूत मोह है संसारा मनमुख अंधे सुध न सारा गुरमुख होवे सो अपना कर रखे पांच दूत शब्द पचावणे आ एक गुरमुख सदा सच्चे रंग राते

अंतरवस रहे नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रभु कौ सेम दे तिन कै सद बलिहार संत अराधन ससदा सबना का बगसिंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दित्ती अन जिंद गुरसबदी आराधी है जपिए निर्मल मंत कीमत कहण ना जाई है परमेसर बेअंत जिस मन वसे नारायण सो कहिए भगवंत जी की लोचा पूरी है मिले स्वामी कंत नानक जी वे जप हरी दोग सबे ही हंत दिन रहन जिस नाम विसरे सो हरिया हो वे जंत सर्व कला प्रापूर्ण मन ने माणी थाओ हर ओढ़ गई मन अंदर है जप जप जीवान आओ हर कृपा प्रवे अपनी जन धूड़ी संग समाओ ज्यों तू राख है त्यों रहा तेरा दिता पहना खाओ उदम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए ना सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बिनासन तम हरण ऊचे अगम अमाओ मन विछड़िया हर मिलिए नान क्यों सुवाओ सर्व कल्याणा तित देन हर परसी गुर के पाओ वार माज की तथा श्लोक महला पहला मलक मरीद तथा चंद हरड़ा सुया की तुनी गा।

जिन रच रचिया तिसे ना जाने, अंधा अंध कमाए, जां भजे तां ठीकर होवे, धाड़ तां घड़ी ना जाए, नानक गुर बिन नाहे पत, पत बिन पार ना पाए, महला दूजा, देंदे थावो दित्ता चंगा, मनमुख ऐसा जानिए, तुरत मत चतराई ताकी, क्या करे आख वखाणिए, अंतर भय के कर्म कमावे, सोचो कुंडी जानिए, जो धर्म कमावे, इस धर्म नाव होवे, पाप कमाने पापी जानिए, तू आपे खेल करे सब करते, क्या दूजा आख वखाणिए, जिचर तेरी जोत, तिचर ज्योति वे तू बोल है, विण ज्योति कोई किस करे ओ दिखा सियाणिए, नानक गुरमुख नदरी आया, आ इको सुगड़ सुजाणिए पौड़ी, तुदे आपे जगत उपायक, तुदे आपे तंदे लाया, मोठ गौली पायक, तुदे आपो जगत खुवाया, इसना अंदर अग्न है, न तिरते भुखा तिहाया, सहसा एव संसार है, मर जम्मे आया जाया, बिन सदगुर मोह ना टुटई, सब थके कर्म कमाया, गुरमती नाम ते आई है, सुख रज्जा जां तुद पाया, कुल उधारे अपना, धन जने दी माया, तोबा सुरत सुहावनी, जिन हर से ती चित लाया, सलोक महला दूजा, अखी बाजों वेखना, विन कन्ना सुनना, पैरा बाजों चलना, विन हत्था करना, जीबे बाजो बोलना, क्यों जीवत मरना, नानक हुकुम पछाण कै, ताओ खसमे मिलना, महला दूजा, जिससे सुनिए जानिए, साओ न पाया जाए, रोला टुंडा अंधला, क्यों गल लगे ताए, भय के चरण कर भाव के लोयन सुरत करे नानक कह सियाणिए इव कंत मिला वा होए पौड़ी सदा सदा तू एक है तो दूजा खेल रचाया हौ में गर्भ उपायक लोभ अंतर जनता पाया तू भावे तू रख तू सब करे तेरा कर।

सदगुर मिले वड़ भाग संयोग, हृदय नाम नित हरस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए, जन्म जीत लहा नाम पाए रहाउ, ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा ते किने विरले तख डीठा, कर्म कांड बहु करे अचार, बिन नावे त्रिग त्रिक अहंकार, बंधन बाध्यो माया फास, जन नानक छूटे गुर परगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती ऊपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नाही, जैसे धरती मध्य पानी परगासया, बिन पगा वरसत फिराही, बाबा तू ऐसे परम चुकाही, योगश करत है सोई कोई है रे, तैसे जाए समाही, हरहाओ स्त्री पुरख होए कह, क्या वे कर्म कमाही, नाना रूप सदा है तेरे, तुझगी महे सुमाही, इतने जन्म फूल परे से, जा पाया ता फूले नाही, जा का कार्य तोई पर जाने, जे गुर कह शब्द समाही, तेरा

प्रगट पई जप नाम मुरारा शिव सगत मिटाइया चूका अंधियारा तुर मस्तक जिन को लिखया तिन हर नाम प्यारा हार कित बिद पाई गे संत जनो जिस देख हो जीवा हर बिन किसा ना जीवती गुर मिल्यो हरस पीवा रहाओ हौ हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गद कीनी हर अस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी धन तन गुर सतपुरख है।

निर्मला हम आप गुण यारे, हर शरणागत राख लेहो मूड मुग्ध निस्तारे। सहज आनंद सदा गुरुमति, हर घर मन त्याया सज्जन घर प्रापाया, हर सोय लागाया हर दया तार का बेनती, हर घर चेताया जन नानक मंगे तू।

हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गुण तन आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लय हर पावे। हम पराधी राखे गुर संगति, उपदेश दियो हर नाम छिड़ावे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोले ता विस्म हो जाए। हम जैसे अपराधी अबर कोई राखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छिड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधप मेरा सगा सगाए। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम घर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता,

था, जिस मिले मन होए आनंद, तो सतगुर कहिए मन की दुविधा बिन सजाए, हर परम पद लहिए, मेरा सतगुर प्यारा किरद मिले, हौ खिन खिन करी नमस्कार, मेरा गुर पूरा तू मिले रखाओ, हर कृपा हर मिलिया, मेरा सतगुर पूरा इश पुनी जन केरिया, लिस गुर तूरा, हर भगत रड़ावे हर भगत सुने, तिस

आओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम घर जानो मेरी अनदिन नाम जपी सुख पाई निर्जीवा आस घर तेरी गौर सतगुर दाते पंथ बताया हर मिलिया आयपा मेरी अनदिन अंध पया बड़ भागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश करते सब वस गत गया।

दैध चल चल हांडे गुर पूरा पाया वडभागी हर मंत्र दिया मन ठांडे राम हम सतगुरु लाले कांडे रखाओ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु सांडे पर विकार पुन बहु किया ओ दुत्तर पार पराडे जिन को प्रीत हृदय हर नाही तिन पूरे गांडन गांडे ज्यों पानी कागद बिनस जात है तो मन गर्भ गलाडे हम जाने कछु न जाने आखे ज्यों हार आखे तो ठांडे हम पूर चू गुर कृपा तारो या नानक उतरे कांडे गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बो परिया मिल साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मान हर ले मंडल मंडा है पर साधु अंजलि पुन वड्डा है कड नौत पुन वड्डा।

मुख मस्तक पाल सुखागे राम गुरमत घर लिव लागे ए रखाओ धड़का रमैया रमत राम राय गुर शब्द गुरु लिव लागे हो मन तन देवो काड गुरु को मेरा प्रम पौ गुर बचनी भागे अंधेरे दीप के आन जलाए गुर ज्ञान गुरु लिव लागे अज्ञान अंधेरा बिरस बनासो कर वस्तल ही मन जागे साकत बद कमाया तारी तेन जम जो हुन लागे हुन सतगुर आगे सीस ना बेतिया कोई आवे जाए अपागे हमरा बिनो स्वरूप ठाकुर हम शरण प्रभु हर मांगे जन नानक की लज पाद गुरु है सिर बेत्यो सतगुर आगे गौड़ी पूर्वी महला चौथा आम अहंकारी अहंकार ज्ञान मत गुर मिले आप गुवा।

मेरे हीरे प्रीत राम राय की गुरमार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सगुर आगे जिन विछड़िया हर गल लाया। मेरे अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हिरदे नाल दिखाया। सहज आनंद पया मन मोर है गुर आगे आ विच आया। हम अपराध पाप कीने सर दुटी चोर चुराया। आप नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाहद। गुरमत मनुआ गावे वड़भागी गुर दर्शन पाया। तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे रहाओ। हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे। हम मल मल धोवे पाप गुरु के जो हर हर कथा सुनावे। हिरदे गुरमत राम रसायण जे वा हर गुण गावे। मन रसक रस कुहारस आघाने फिर बोर ना पूख लगावे। कोई करे उपाय।

तू है मेरा गहना, तुझ निपुण जाई रहना। तू मेरे लालन, तू मेरे प्राण, तू मेरे साहेब, तू मेरे खान। रहाओ जो तुम राखो तिवगी रहना, जो तुम कहो तो ही मुझे करना। जय पेखो ता तू बसना, निरपो नाज पोतरा रसना। तू मेरी नवर तू पंडार, रंग रसा तू मने आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुरते पाया। सा गुरते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पनवा, व्याप्त हर सोग विस्तार। व्याप्त सुरग नरक अवतार, व्याप्त तन निरतन पे शोभा। मूल व्याधि व्याप्त लोभा, माया व्याप्त बहु प्रकारी। संजीवे प्र ओढ़ तुम्हारी रघाओ। व्याप्त अंगबुद का माता, व्याप्त पुत्र कलत्र संगराता। व्याध हस्त कोड़े अर बस्ता, व्याप्त रूप जोवन मद मस्ता। व्याप्त भूम रंग अरंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा। व्याप्त सेज महल सीगार, पंच दूत व्याप्त अंधियार। व्याप्त कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा। आचार व्यवहार व्याप्त ए जात, सब व्याप्त बिना रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको खां व्यापे माए। ओ नानक जन तूर संत पाई, ताके निटन आवे माई। गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा, नैनो नींद हर दिट विकार। श्रमण सोए सुनंद विचार, रसना सोई लो मीठे साध। मन सोया माया विस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रहे। सावत वस्तु अपनी लय रहाओ, सकल सहेली अपने रसमाती। गए अपने की खबर न जाती, मुस्तनहार पंच बटवारे। तूने नगर परे ठगहारे, उनते राखे बाप न माई। उनते राखे मीत न पाई, सर्व स्याणप ना ओए रहते। साध संग ओए दुष्ट वस होते, हर कृपा मुझ सारंग पान। संतन तूर सर्बनधान, साध पूजनी सदगुर संग। नानक जागे

मिटे कलेस सुभी होए रही है। ऐसा दाता सबगुर कहिए, तो सुख दाता जे नाम जो पावे, हर कृपा ते संग मिलावे, हरभाव जिस होए दयाल आ मिलावे, सर्वन दान गुरु ते पावे, आप जग मिटे आमन जाना, साध के संग पार ब्रह्म।

तिसो मन रचना कहो गुसाई मिलिए केह जो बिवर्जित तिसो नेह रहाओ तूर बात सा सत कर जाती सत हो मन मन लगे ना राती बावे मार्ग टेढ़ा चलना सीधा छोड़ अपूठा बुनना दोआं सिरियां का खसम।

आपन नहीं पाई, इष्ट मीत या बाप न माई, सोए ना रूपा फुन नहीं दाम, हैवर गैवर आपन नहीं काम, कहो नानक जो गुर बख्श मलाया, तिस का सब किश

पूर्ण पद पाया, साध संग पे परम मिटाया, जद का देखो तद रहा समाए, नानक दास हर की शरणाए, कौड़ी मोहल्ला पंजवा, गुरजी के दर्शन को बल जाओ, जप जप जीवा सतगुर नाओ, बार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव, हर कृपा लागो तेरी सेव रखाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सबल जन होवे परवान, गुर पारवन कर जान, संतूर पाए गए वड़ भागी, नानक गुर पेड़ हर चो लिम लागी।

तदी सोपाया मया करी पूर्ण हराया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे पाग, हर हर नाम अस्त्र सुहाग। गौड़ी मोहल्ला पनवा धोती खोल विछाए हेठ, गर्द वांगू लागे पेठ। बिनकर तूती मुक्त न पाई है, मुद पदार्थ नाम त्याई है रहाओ। पूजा तिलक करत इसनाना, चुरी कढ़ लेवे हसदाना। वेद पढ़े मुख मीठी बाणी, जिया कोत न संगे प्राणी।

शरण परे प्रभ अंतरजामी नान कोट पकरी प्रभ स्वामी गौड़ी मोहल्ला पंजवा। हर सिंह राते पाए ना जले, हर सिंह राते माया नहीं चले, हर सिंह राते नहीं डूबे जला, हर सिंह राते सुभल फला, सप मिटे तुम्हारे नाय पेट संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर सिंह राते मिटे सब चिंता, हर स्यों सो रचे

संग हमारे बाह जियो रहाओ, खुद बिन करी ना जीवना, रग रहना संसार, जी प्राण सुख दातया, निमक निमक बलिहार जी, हस आलंबन देव प्रभ, घर तो उदर गोपाल, मोय निर्गुण मत थोरिया, तू सदगी दीन दयाल, क्या सुख तेरे समला, हमन विधि विचार, शरण समाई दास हित, ऊंचे अगम अपार, सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध, नाम महार समाहे, तो प्रसन्न पै केसवा, सेजन हर गुण गाहे, माल पिता सुध बंद को, तू मेरे प्राण आधार, सा संग नानक भजे हितरिया संसार, गौड़ी बैरागन रहोए के शंत के कर महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हय कोई राम प्यारो गावे, सर्व कल्याण सुख सुध पावे, हरहाओ बन मन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी, जिन घर पाया से वडभागी, ब्रह्मादक सनकादक चाहे, जोगी जति सिद्ध अर आहे, जिसे प्राप्त तो हर गुण गाहे, ताकि सरंजन बिसर तनाही, वडभागी घर संत मिलाही, जन्म मरण ते मूले नाही, हर कृपा मिल प्रीतम प्यारे, बिनो सुनो प्रभु पूज अपारे,

अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निध नहीं गाया मान बिखे ही मैं लुजी है जाको रे कृपा करे जीवत सोई मरे।

पर शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी नेचल को थाओ नाहे बिन हर सेवा सुख नहीं हो सागते आभय जाहे जैसो गुर उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार नानक कहे सुन रे मना कर कीर्ति।

सकल बिसारी, तरमस्त गुर पूरे थरेओ, मन जीतो जग सारी, तृप्त अघाए रहे रिद अंतर, डोलन ते अब चूके, अखुट खजाना सतगुर दिया, तोट नहीं रे मुके, आचरज एक सुनो रे पाई, गुर ऐसी बूझ बुझाई, लाहे पर्दा ठाकुर जो पेटेओ, तो बिसरी तात पराई, कहो न जाई यो अचंपो, सो जाने जिन चाखेया, कहो नानक सच पै बेगासा, गोर निधान हृदय लै राखेया, गौड़ी माला मोहल्ला पंजवा, उबरत राजा राम की सरणी, सर्ब लोक माया के मंडल, गिर गिर परते तरणी रहाओ, शास्त्र सिमरत वेद विचारे, महापुरखन यों कहया, बिन घर भजन नहीं निस्तार।

कैसा डर कमन, शब्द पिछाने तीन ने पावन, जिन कहया तिन कहे नुखाने, जिन बूझिया तिन सहज पिछाने, देख विचार मेरा मन माने, कीर्त सूरत मुक्त इकनाई, तही निरंजन रहा सुमाई, निकर व्याप रहा निचाई,

सुरत एक लिवलाए, सुख मांगत दुख आगल होए, सगल विकारी हार परोए, एक बिना झूठे मुक्त न होए, कर कर करता देखे सोए, तृष्णा अगन शब्द बुझाए, दूजा परम सह सुभाए, गुरमति नाम हृदय विसाए।

राम भक्त जन होई, हर गुण गाय मिले मलत होई रहाओ। उन दो काबल सगल संसार, दुर्मत अगन जगत पर जारे, सो उबरे गुर शब्द विचारे, प्रेंग पतंग कुंचर अरमीना, मिर्ग मरे से अपना कीना, तिसना राज तत् नहीं बीना, काम चिते कामन हितकारी, क्रोध बिना से सगल विकारी, पत मत खोवे नाम विसारी, पर कर चीत मनमुख डोलाए, गल जेवड़ी तंदे लपटाए, गुरमुख छूट।

वेद पुराण पढ़े सुन थाटा, बिन रस राते मन भोर नाटा, ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल भाए उलासा, नानक हरस पी त्रिपतासा, गौड़ी महला पहला, हड़ कर मरे न लेखे पावे, वेस करे बो पसम लगावे, नाम सार बोर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सूख, नाम सार

किसे मुकाम, सा मरे संते माया दाम, मैं तन दीजे हर अमृत नाम, रैयत मैर मुकदम सिकदार, निचल कोई ना दिसे संसार, अफरो काल कूल सिर मार, निचल एक सच्चा ससोई, जिन कर साजी तिने सब गोई, ओ गुरमुख जापे ता पद होई, काजी सेख पेह फकीरा, वड्डे कहावे होमे तन पीरा, काल ना छोड़े बिन सतगुर की तीरा, काल जल जेवा अरनैणी, कानी काल सुने बिख बैणी, बिन शब्दे मूठे दिन रैणी, हिरदे साच वसे हर नाए, काल ना जोए सके गुण गाए, नानक गुरमुख सब सुमाए, गौड़ी महला पहला, बोले साज मिथ्या नहीं राई, चाले गुरमुख हुकम मर जाई, रह अतीत सच्चे सरनाई, सत कर वैसे काल ना जोहे, मनमुख को आवत जावत दुख मोह, रहाओ आप्यो पियो अकथ कथ रहिए, निरकर बैस सहज कर लइए, हस माते उस कहिए, गुरमत चाल निचल नहीं डोले, गुरमत साच सहज कर बोले, पीवे अमृत तत विरोले, सतगुर देखिया दिखिया लीनी, मन तन अर्प्यो अंतरगत कीनी, गात मित पाई आत्म चीनी, भोजन नाम।

पद पाईए ना मने सुख होय, सगुर ते नाम पाईए धर्म मिले प्रसोय, सगुर ते जो मोह फेरे ओए भ्रम दे ना टिकन, तरत असमान ना चलई विच विष्टा पए पचन, यो जग परम भुलाया मोहे ठगो ली पाए, जिन्ना सगुर फिटया ते नेड़ ना फिटे माए, सगुर सेवन सो सोने होमे मैल गवाए, अवदरते से निर्मले चले सतगुर पाए, हर प्रदाता एक तू तू आपे बख्श मिलाए, जन नानक शरणागति जो पावे तवे छिड़ाए, राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा कर हले, एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर हले, मन परदेसिया क्यों मिल गए घरमाए, गुर पाग पूरे पाया गल मिलया प्यारा आए, मन कर हला सतगुर पुरख ते आए, हरहाओ मन कर हला विचारिया हर राम नाम ते आए, जिथे लेखा मंगिए हर आपे लय छिड़ाए।

लाख अडंबर बहुत विस्तार, ना बिना झूठे पासार, हर का नाम सोई जन ले, पर कृपा नानक जिस दे, गौड़ी महला पंजवा, आद मर जो अंत निबाह, सो सजम मेरा मन चाह, हर की प्रीत सदा संग चाल, दयाल पुरख पूर्ण प्रतपाल रहाओ, बिन सतनाही छो

हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, हरहाओ तज होमे गुर ज्ञान भजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसे सो संग न गयो, सागत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहे हो, कोड़ मदे किने गुरमुख लहे हो।

चंदन शीतलायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया, गुर ज्ञान दीपायो, पावक सागर गहरो, चार संतन नाप करायो, नाम कर्म न धर्म सोच, प्राप गए पूजा आपायो, पौ खंडन दुख पंजनो, भगत वछल हरनायो।

बिन उर तारे ना बिन करवास नाही। पुछो सखी सहेलियां बिन ना प्रीत प्यार नाही। वसै साच सुहेलिया सच मान सज्जन संतोख मेला। गुरमती सौ जानिया नानक नाम न छोड़ै सातान। नाम सहज समाणिया मिल सखी सहेलड़ी हो। हम फिर रावेगा गुर पुछ लिखोगी जियो। शब्द स्नेहा शब्द साचा गुर दिखाया। मनमुखी पछताणिया निस जातो रहे अस्थिर। जाम सच पछाणिया साज की मत सदा नौतन। शब्द नेहो नवेलो नानक नदरी।

पाए प्यारे रायण सुसुति जियो अंतर उरथारे अंतर उरथारे मिल गए प्यारे अन दिन दुख निवारे अंतर महल पिरावे कामन गुरमति विचारे अमृत नाम पिया दिन राती दुबदा मार निवारे नानक सच मिली सुहागण गुर कै हेत अपारे आवो दया करे जियो प्रीतम अत प्यारे कामन बिनो करे जियो सच शब्द सीगारे सच शब्द सीगारे हो में मारे गुरमुख कार्य सवारे जो जुग एको सच्चा सोई बूझे गुर बीचारे मनमुख काम आपी मुझ संतापी किसे आगे जाए पुकारे नानक मनमुख थाओ न पाए बिन गुर अत प्यारे मुंद एयाणी भोली निगुणिया जियो फिर अगम अपारा आपे मेल मिलिए जियो आपे बख्शनहारा अवगण बख्शनहारा कामण कंत प्यारा घट घट रहा समाई प्रेम प्रीत पाए भगती पाईए सदगुर बूझ बुझाई सदा आनंद रहे दिन राती आनंदन रहे लिवलाई नानक सहजे हर वर पाया सात हन नौ निध पाई गौड़ी महला तीजा माया सर सबल वरत जियो क्यों कर दुत्र तरिया जाए राम नाम कर भोथा जियो शब्द खेबट विच पाए शब्द खेबट विच पाए हर आप लंघाए इन विद दुत्र तरीए गुरमुख भगत प्राप्त होवे जीवतिया इओ मरिए खिनमय राम नाम किल विख काटे पए पवित्र शरीरा।

समर्थ सब कलतारी गुण गाओ मना अच्युत अविनाशी सब ते ऊच दयाला बेसम पर देवन कौ एक सर्व करे प्रतपाला प्रतपाल महा दयाल दाना दया थारे सब किसे काल कंटक लोभ भू नस जी जाके प्रभस तो प्रसन्न देवा सबल सेवा पई पूर्ण काला बिनवंत नानक किश पुन्नी जपत दीन दयाला गौड़ी महला पंजवा सुन सखिए मिल उदम करेगा मनाए लय हर कंत मान त्याकर भगत ठगौरी मोह है साधु मंत सखी बस आया फिर छोड़ न जाई हे रीत पली भगवंत नानक जरा मरण पय नरक निवार उनीत करेथ जंत सुन सखिए ए परी बेनंती यो मता तपकाइये सह सुपाए उपाद रहत होए गीत गोविंद गाइये कल क्लेश मिटे भ्रम नस मन चिंदिया फल पाईये पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर नानक नाम ते आईये सखी इश करी नित सुख मनाई प्रभ मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सबाए खोज लो हर संत जना संग समृत पुरख मिलाए नानक तिन मिलया सुरजन सुखदाता सेवड़ भागी माए सखी नाल वसा अपने ना प्यारे मेरा मर तन हर संग हिलया सुन सखिए मेरी नींद भली मैं अपनड़ा पिर मिलया परम खोयो सांत सह स्वामी प्रगास पया कौल खिलया वर पाया प्रभ अंतर जामी नानक सुहाग ना टलिया एक ओंकार सदगुर प्रसाद गौड़ी बामन अखरी महला पंजवा सलोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंदप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत नरोदरा गुरुदेव सांत सदबुद मूर्त गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सा पाप हरता गुरुदेव पतत पवित करा गुरुदेव आद जुगाद जो जुग गुरुदेव मंत हर जप उधरा गुरुदेव संगत प्रामेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लगतरा गुरुदेव सदगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक।

कै एक बखानन नानक एक अनेक पौड़ी ओं गुरमुखी अकारा एक सूद परोवन हारा पिन पिन त्रैगुण विस्थारं निर्गुण ते सरगुण त्रिटारं सगल पाण कर करे उपायो जन्म मरण मनमो बढ़ायो दू पाद ते आप निरारा नानक अंत न पारा वारा श्लोक से सा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते

शास्त्र कर पातो ज्ञानी सोए जाके दृढ़ सोउ कहत सुनत कस जोग न हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाके उसन सीत संसर सब ताक ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा थारी श्लोक आमन आए से तुम्हें बिन बूझे पल ठोर नानक गुरमुख सो बुझे जाके पाग मथोर पौड़ी या जुग में एक है को आया जन्म तुम्होयो मोहनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास सिमृत प्रव रहते उर्ज परे सो छोड़ छिडाना देवन हार मने बिसराना तारो कृपा जिसे गुसाई एत उत नानक इस बिसरो नाही श्लोक आवत हुक्म विनाश हुक्म आज्ञा पिन ना कोय आमन जाना ते मिट नानक जे मन सोए पौड़ी एओ जी बहुत गर्भ वासे मोह मगन मीड जोन वासे इन माया त्रैगुण बस कीने आपन मोह कटे खड़ दीने ए साजन काशिप कहो उपाया जा ते तरो बिखम ए माया कर कृपा सतसंग मिलाए नानक ताके निट न माए श्लोक किरत कमामन शोभ अशोभ इन्ने तिन प्रभ आप बस आपन हो करे नानक बिन हर खां कमात पौड़ी एक है आप करा मनहारा आप है पाप उन विस्तारा या जुग जित जित आप है लायो सो सो पायो जो आप दिवाय।

कुसुमरंग बिरसोर नांग ते सरणी परो बिरस जाए मैं मोर पौड़ी रे मान बेनखार जह रचो तह तह बंधन पाखे जेब कधु ना छूटी है साकत त्यू कुमाए हो करते कर मरत ताको पार अफार प्रीत नहीं जो नाम स्यो तो एऊ कर्म विकार बादे जम की जेवरी मीठी माया रंग प्रम के मोहे न बुझे तो प्रभ सदहु संग लेख गणत न छूटी है काची पीत न शुद्ध जिसे बुझाए नानका ते गुरमुख निर्मल बुद्ध।

जन्म मरण न होए बेनासा, मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके, हर संपै नानक करता के सलोक, लालच चूड बेकार मोह, व्याप्त मूड़े अंध, लाग परे दुर्गंध स्यो, नानक माया बंद पौड़ी, लल्ला लपट बेखे रस राते, अंग बुद्ध माया मदमाते, या माया में जन्म मरना, ज्यो जो हुक्म तेरे त्यो करना, को ऊन न को पूरा, को सुगर न को मूरा, जित जित लाभो तित तित लगना, नानक ठाकुर सदा अलिपना, श्लोक लाल गोपाल गोविंद प्रभ गैर गंभीर अथाह, दूसरा हई अवर को नानक बे प्रवाह पौड़ी, लल्ला ताके लवे न को एके आप अवर न हो वन हार होश आया, ओवा का अंत न काहू पाया, पीठ हस्त में पूर समाने, पलट पुरुष सब ठाऊ जाने, जाको दीनो हर से अपना, नानक गुरमुख हर हर तेज अपना, श्लोक आत्म रस हे जानिया हारंग सहजे मान, नानक तन तन तन जन आए ते परवान पौड़ी, आया सबल ताऊ को गनिये, जास रसन हर घर जस पनिये, आए बसे साधु के संग, अनदिन नाम ते आवे रंग, आवत सोजन नाम हे राता, जाको दया मया विधाता, एक आमन फिर जो न आया, नानक हर कह दर्श सुमाया, श्लोक या जत मन होए आनंद, बिन से दूजा पाओ, दुख दर्द तृष्णा बुझ।

एक नाम ले मने परो यैया जन्मन हारी है और पूरे की टेक नांग ते सुख पाया जाके हीरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे ई पूत के मीत गुरपूरे उपदेसया नानक जपिए नीत पौड़ी अनदिन सिमरो तास को जो अंत सहाई होए ए बिखिया दिन चार छे छाड़ चलो सब कोए ताको मात पिता सुतिया गृह बंता का संग न लिया ऐसी संच जो बिन सुत नाही बसे ती अपने कर जाही सा संग काल कीर्तन गाया नानक ते भौर न आया श्लोक।

जम मरे गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपट तरह आहो आवे जाए टहे तो टहेद अब टह परे साजना सरनाए दुके फाहे काटिया नानक लिए सुमाए।

दृष्टि आया उस्तद कारण जोग पौड़ी खखा खरा सरा होता हु जो खिर में ऊने सुबर पराहु खरा निमाना होत परानी आनदन जापे प्रभ निर्वानी भावे खसम ता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्सनहारा नानक साहेब सदा दयारा तलोक सत कहो सुन मान मेरे तरन परो हर राय उगत सियानप सगल त्याग नानक लय सुमाए पौड़ी ससा सियानप शाड एयाना हिकमत हुक्म ना प्रपतियाना सहज पाद करे चतराई संग तुहारे एक ना जाई सोउ सोउ जप दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लावे जे आपे नानक ताको दुख न व्यापे सलोक हर हर मुख ते बोलना मन बूठे सुख होए नानक सब मेरा बरहया शांत अनंतर सोए पौड़ी फेरो कड़ कड़ सगल कै पूर रहे भगवान होवते आए साध सदीव दुख भंजन गुर ज्ञान हों छुटके हुए आनंद ते हो नाही ते आप अते दुख जन्मे मरन संत संग प्रताप हितकर नाम दृढ़ दयाला संते संग होत कृपाला ओरे

गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश, गुरुदेव मंत नरोदरा, गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूर्त, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित करा, गुरुदेव आदि जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जा कुदरा, गुरुदेव संगत प्रामेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लगतरा, गुरुदेव सदगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। इहो श्लोक आद अंत पढ़ना, गौड़ी सुखमनी महला पंजवा। श्लोक एक ओंकार, सदगुर प्रसाद आदगुर ए नमः, जुगादगुर ए नमः, सदगुर ए नमः, श्री गुरुदेव ए नमः, अष्टपदी सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन मय मिटावो, सिमरो जास विषम पर एक, नाम जपत अगणत अनेक, वेद पुराण सिमरत सुधाखिर, इन्ने राम नाम एक आखिर, इनका एक जे जी बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे, कांखी एक दस्त हुआरो, नानको संग हुए उधारो, सुख बनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कई मन बसराम रहाओ, प्रभ के सिमरन गर्भ न बस, प्रभ के सिमरन दुख जमनस, प्रभ के सिमरन काल पर हर, प्रभ के सिमरन दुश्मन टर, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लाग, प्रभ के सिमरन अन दिन जाग, प्रभ के सिमरन पौ न व्याप, प्रभ के सिमरन दुख न संताप, प्रभ का सिमरन साध के संग, सर्वनिधान नानक हर रंग, प्रभ के सिमरन हृदय सिद्ध नव निध, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभ के सिमरन जपता पूजा, प्रभ के सिमरन बिन सह दूजा, प्रभ के सिमरन तीर्थ इस नानी, प्रभ के सिमरन तरक है मानी, प्रभ के सिमरन हुए सो भला, प्रभ के सिमरन सुफल भला, से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए, प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभ के सिमरन उदरे मूचा, प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझ, प्रभ के सिमरन सबके सुज, प्रभ के सिमरन नाही जमत्रासा, प्रभ के सिमरन पूर्ण आसा, प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदमाए सुमाए, प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरह से तनवंत, प्रभ को सिमरह से पुतवंत, प्रभ को सिमरह से जन परवान, प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमरह से बेमोता दे, प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा अवनासी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगे रवाला, प्रभ को सिमरह से पर उपकारी, प्रभ को सिमरह तिन सद बलिगारी, प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरह तिन रमल रीता, प्रभ को सिमरह तिन अंध कनेरे, प्रभ को सिमरह बसे हर नेरे, संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभ के सिमरन कार्य पूरे, प्रभ के सिमरन कभु ना चूरे, प्रभ के सिमरन हर गुरुबानी, प्रभ के सिमरन सहे सुमानी, प्रभ के सिमरन नित्यलयासन, प्रभ के सिमरन कमल बेगासन, प्रभ के सिमरन अनहा चुनकार, सुप्रा सिमरन का अंत न पार, सिमर है से जन जिनको प्रमया, नानक तिन जन सरणी पया, हर सिमरन कर भगत पगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाय, हर सिमरन पय सिद्ध जती दाते, हर सिमरन नी चौकुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आम निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, श्लोक तीन दर्द दुख पंजना, घटघट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रसाद, अष्टपदी
जय मात पिता सुदमीत न पाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई। जय महा भयान दूध जमदल है, तै केवल नाम संग तेरे चले। जय मुश्किल होवे अदपारी, हर को नाम खिन महे उधारी। अनक पुने चरण करतनी तरै, हर को नाम कोड पाप पर हरे। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। हर सेठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया। लाख करोरी बंधन पर है, हर का नाम जपत निस्तर है। अनक माया रंग तिघना बुझावे, हर का नाम जपत आघावे। जे मार्ग इहो जात अकेला, तय हर नाम संग हो सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परम गद पाई है। टूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत ते पार पराही। अनक विघ्न जय आए संघार है, हर का नाम तत्काल उधार है। अनक जून जन्म में मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हौ मैला मल कभू न थोवे, हर का नाम कोड़ पाप खोवे। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइये साध के संग। जे मार के गने जाए न कोसा, हर का नाम उहां संग तोसा। जे पैंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहां पंत तेरा को ना सुजानू, हर का नाम तय नाल पछानू।

दिन रात हर हर औखद साध कुमात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक नानक जन के बिरत बवेक हर का नाम जन को मुक्त जोत हर के नाम जन को तृप्त पुत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का पर न पंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत

मन ते कभू न बिखिया टरै, जल धोवे बहुधे अनीत, तुद कहां होए काची पीत, मन हरके नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पातत बहु मूच, बहुत सियाणप जमका पो व्याप, अनक जदन कर तृष्ण ना त्रप, पेख अनेक अगर नहीं बुझे, कोट पाव दरगे नहीं सिजे, चूर सुनागी उपयाल, मुहे व्यापे माया जाल, अवर करतूत सगली जमडान, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मान, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहे सुपाए, प्यार पदार्थ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे, जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग ए होम में शोर है, जे को जन्म मरण ते डरे, साध जना की सरणी पर, जे जन को प्रदर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा, सगल पुरख में पुरख प्रधान, सा संग जाका मिटे अब महान।

अनंत सगल समगरी तुमरे सूत्रधारी, तुमते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गतमित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी सलोक, तेन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सो आए, नानक कहू न सीजई पिन नावे पद जाए, अष्टपदी तस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण विखोट गवावे, एक पी ना दे दस पी हिर ले, तो मूड़ा को खा करे, श्री ठाकुर सो नाही चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा, जाके मन लागा प्रा मीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा, जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया, अगंत सो अपनी दे रास, खाद पीत बरते अनदे उलास, अपनी अमान कछ भौर साहो ले, अज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बौर उसका विश्वास न होवे, जिसकी वस्तुत आज्ञा रखे, प्रभु की आज्ञा माने मत, उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहेब सदा दयाल, अनक पांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत, दीर्घ की छाया सो रंग लावे, ओ बिन से ओ मन पछतावे, जो दिसे सो चलन हार, लपट रहे तय अंध अंधार, बटाऊ स्यो जो लावे नेह, ताको हाथ न आवे केह, मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाई, मिथ्या तन तान कुटुंब सुबाया, मिथ्या होमे ममता माया, मिथ्या राज जोबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पे हस्त, मिथ्या त्रो मो अभमान, मिथ्या आपसी ऊपर करत गुमान, अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीव हर के चरण, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन, मिथ्या हस्त पर दर्प को हिर, मिथ्या नेत्र पेखत परत्र रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर्वकार को थावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तान नहीं पर उपकारा, मिथ्या बासले दिवकारा, बिन बूझे मिथ्या सब भय, सबल दे नानक हर हर नाम लय, बिरती सागत की आरजा, साज बिना के होवत सूचा, बिरता नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताके दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बिरता बिहाय, मेघ बिना जो खेती जाय, गोविंद भजन बिन बिरते सब काम, ज्यो कृपन के निरार्थ दाम, तन तन ते जन जे कड़ बस्यो हरनाओ, नानक ताके बल बल जाओ, रहत अवर कश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत, जानन हार प्रभु परवीन, बार पेख न काहू पीन, अवर उपदेश आप न करे, आपत जावत जन्मय मरे, जिसके अंतर बसे निरंकार, जिसकी सीख तरे संसार, जो तुम पाने तिन प्रभु जाता, नानक उन जन चरण पराता, करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने, आपे आप कर तन बेरा, किसे दूर जिनावत किसे बुझावत नेरा, उपाव स्यान पर सगल

ऐ स्वभाव ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मल जैसे मायल न लागे जला ब्रह्मज्ञानी के मन होए प्रगास जैसे तर ऊपर आकाश ब्रह्मज्ञानी के मित्र सत समान ब्रह्मज्ञानी के नाही अवमान ब्रह्मज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपने के सब ते नीचा ब्रह्मज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्मज्ञानी सगल कीरीना आत्मरस ब्रह्मज्ञानी तीना ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्मज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्मज्ञानी सरा समंदर सी ब्रह्मज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्मज्ञानी एक उपरयास ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी का गरीबी समाह ब्रह्मज्ञानी परे उपकार माह ब्रह्मज्ञानी कह नागी तंदा ब्रह्मज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्मज्ञानी कह हो सो फला ब्रह्मज्ञानी सोबल फला ब्रह्मज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्मज्ञानी जपे सगल संसार ब्रह्मज्ञानी कह एक कह रंग ब्रह्मज्ञानी कह बसे प्रसंग ब्रह्मज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्मज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्मज्ञानी सदा सजागत ब्रह्मज्ञानी अंगबोध त्यागत ब्रह्मज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्मज्ञानी कह घर सदा आनंद ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्मज्ञानी एक संहेता ब्रह्मज्ञानी कह होए अचिंत ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्मज्ञानी करे प्रव्याप ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्मज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी की कीमत नागे ब्रह्मज्ञानी का सगल मन माग ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्मज्ञानी का तथ्या न जाए अधाखेर ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्मज्ञानी सबसठ का करता ब्रह्मज्ञानी ता जीवे नहीं मरता ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुत जी का दाता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।

ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी, नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का तनी श्लोक, उर तारे जो अंतर नाम सर्वमय पेखे भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानको अपरस सगल निस्तार, अष्टपदी नित्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रै रूपना पेखे नेतर, साध की टहल संत संग हेत, करना सुने काहू की निंदा, तब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद दिखिया पर हरे, मन की बासना मन ते टरे, इंद्रियजित पंच दुख ते रहत, नानक कोड मध्य को ऐसा अपरस, वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्णु की माया ते होए पिन्न, कर्म करत होवे ने कर्म, जिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बचे, केवल भगत कीर्तन संग रचे, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, तब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावे, नानको वैष्णो परम गल पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागे दुष्ट का संग, मन ते बिरसे सगला परम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सा संग पापा मन खोवे, इस भगवती की मत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्प विष्णु प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे, नान कैसा भगवती भगवंत कौ पावे, तो पंडित जो मन प्रबोध, राम नाम या तुम मैं शुद्ध, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, तो पंडित फिर जो न आवे, वेद पुराण तिमृत बूझे मूल, सुख में जाने अस्तूल, चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना में जपे को नाम, जो जो जपे जिसकी गद होए, सा संग पावे जन कोय, कर कृपा अंतर और तार, पास प्रेत मुग्ध पाथर कौतार, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जूत कते न पाई गे धर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, जिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तुझ नदरी आया, दाद संतन पाए तिन पाया, सदा निकट निट हर जान, तो दास दर गए परवान, अपने दास को आप कृपा करे, ते दास को सब सोजी पर, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा आत्म खेतावे, जीवन मुक्त सौ कहावे, तैसा हरक तैसा ओ सोग, सदा अनंत नहीं बेयोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वर्ता ऐसा ही जुत, नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित का रखे तैसा तिन नाओ, आपे करन करामन जोग, प्रभु पावे सोई पुन हो, पसरे आप होयंत तरंग, लखे न जागे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा परगास, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पय निहाल, श्लोक उस्तुत करे अनेक जान, अंत न पारावार, नानक रचना प्रवृति बौद्ध अनक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पे तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार, कई कोट सबका विचार, कई कोट नर्तन नाम त्याव है, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पय अवमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपेग आत्मन कोर, कई कोट पर दर्व को घेरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट प्रदेश परमाहे, जित जित लाभो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी,
ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰ ਪਿਓ ਪਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪਜਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬਹਿ, ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖਿਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਛਤਰ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਧਕ, ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰ ਤਰ ਸਾਸਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਤ੍ਰਿਜੀਵ, ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਤੀਵ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਖ ਕਿੰਨਰ ਪਸਾਚ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ, ਸਭ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤਹੂ ਤੇ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੈ ਜੀਵੈ ਮਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠ ਤਖੀ ਖਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੇ ਥਕ ਪਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ, ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤੈ ਤੈ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਬਜ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਹੱਥ, ਕਈ ਕੋਟ ਪੈ ਬੈਰਾਗੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਲ ਵਿਲਾਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜਨ ਤੇ, ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖਨ ਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪਿਆਸ, ਦਿਨ ਕੋ ਮਿਲੇ ਓ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸ, ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੇ ਸਤਸੰਗ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ, ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ, ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ।

में आवे, कभू पला पला कहावे, यूं प्रवरा के तिव ही रहे, गुर प्रसाद नांग सच कहे, कभू होए पंडित करे बखियान, कभू मोन तारी लावे ध्यान, कभू तड़ती स्नान, कभू सिद्ध साधक हो ज्ञान, कभू कीड हस्पतंग हो जिया, अनक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखा।

बौर न आवे। अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मंत्र नाम रते एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ के सद कुरबान। श्लोक सुखी बसे मस्कीनिया, आप निवार तले। बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले। अष्टपदी जिसके अंतर राज अब महान, तो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने मैं जो बनवंत, तो होवत विष्टा का जंत। आप को कर्मवंत कहावे, जन्म मरे बो जोन परमावे। तान पूम का जो करे गुमान, तो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानकी खा मुक्त आगे सुख पावे। तनवंता हुए कर गरबावे, तन समान का संग न जावे। बहु लश्कर मान ऊपर करे आस, पल पीतरता का हुए विनाश। तब ते आप जाने बलवंत, किन में हुए जाए पसमंत। किसे ना बदे आप अहंकारी, धर्म रायत करे खुवारी। पुर प्रसाद जाका मिटे अपमान, तो जन नानक दरगह परवान। कोड कर्म करे हो तारे, श्रम पावे सगले बिरतारे। अंक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार। अंक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगे को कैसे गवे। आस को जो पला कहावे, तिसे पलाई नित न आवे। सर्व की रेन जाका मन होए, को नानक ताकी निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कश होए, तब को सुगुना ही कोए। जाके जाने मैं किस करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग नह चलना ही चीत। जब लग मो मग्न संग माए, तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे। सहज कटे लग तो उड़तावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनक भोग बिखिया के करे, न तृप्तावे खप खप मरे। बिना संतोख नहीं को राजे, स्वपन मनोरथ बिरथे सब काजे। नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसे प्राप्त होए। करन करामन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। करन करामन करने हार, इसके हाथ कहाँ विचार। जैसी दृढ़ करे तैसा होए, आपे आप आप प्रसोए। जोश तीनों सो अपने रंग, हवते दूर सबू के संग। बूझे देखे करे बबेक, आपे एक आपे अनेक। मरे ना मिलसे आवे ना जाए, नानक सदगी रहा सुमाए। आप उपदेशे समझे आप, आपे रचिया सबके साथ। आप कीनो आपन विस्तार, सब कश का ओ करने हार। उसते पिन कहो किस होए, थान सनंतर एक कैसोए। आपने चलत आप करने हार, कौतक करे रंग आपार। मन में आप मन अपने मागे, नानक कीमत कहन न जाए। सत सत सत प्रस्वामी, गुर प्रसाद किने वखियानी।

गत नानक जब एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह प्रभ की जोत सगल कड़ सोह तनवंता होए क्या को गर्भ है।

गैर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल भगसंद साथ तेरे की चरनी पाओ नानक के मन एव अनराओ।

आनंद रूप मंगल सुजाक सर्व शोक सुनहे करताक राजमय राज जोग मय जोगी तप मय तपीसर गृहस्थ मय भोगी त्याए त्याए भगते सुख पाया नानक थि पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से त्यो गुण मै जा को फरमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच इसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करे एक रंग नाना बिद कीनो विस्तार प्रभ अवनासी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहे।

कै रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक की रखे निरंकार सो सेवक जे दया प्रवतार नानक सो सेवक सास सास सुमार अपने जन का पर्दा ढक अपने सेवक की सर पर रख अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रख ताकि गतमित कोई न लख प्रभ के सेवक को ना पहुंचे प्रभ के सेवक ऊजते ऊचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दहज प्रगटाया निकी कीरी मैं कल रख पसम करे लस्कर कोड लख जिसका साधन काटते आप ताको राखत दे कर हाथ मानस जतन कर्तव पात जिसके कर्तव्य व्यर्थ जात मारे ना रखे अवर न कोय सर्व जिया का रखा सोय काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपीए ई अमृत यो मन तन त्रपीए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किश अवर नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिवतान ने मर्तन नामे नाम सुमा।

जेबा एक पुस्तत अनेक सत पुरख पूर्ण बवेक काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगमे गोचर प्रौण रबानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनक भगत बंधन नित कर चरण कमल हिरदे सिमर सद बलिहारी सदगोरे अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हरस पावे जन कोय अमृत पीवे अमर सो होय उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास आड़ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक कौ दे वो माया के संग न लेप मन में रखे हर हर एक अंधकार दीपक परगस नानक परम मोह दुखते ते नस तब तुम्हें ठांड वरताई अंध पया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेश साधु के पूर्ण उपदेश पाओ चूका निरप होए बसे सगल ब्याद मनते खे नसे।

निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला तार जिन सगली मोही अपने चित्त प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोय ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कलतारी अनकबार नानक बलिहारी श्लोक साधना चले बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कुमावना नानक यो तनसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव समीत बसारो चरण कमल हृदमय उरतारो करण कान सो प्रसमरथ गिरड़ कर गहो नाम घर वथ यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्व रोग नारक मिट जाए ये तन को चार कुण टुड़तावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस कोवनत बाचे मीत सो सो साधु संग परीत जे सोभा को करे पली करनी सा सोभा पज हर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्वन दान मै हर नाम दान जप नानक दरगह परवान मन पर बुद्धो हर कै नाए दस ताव ते आवे ठाए ताको बिगन ना लागे कोए जा कर दे बसे घर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भव बिन से पूर्ण होए आस भगत पाया तुम परगास जित कर जाए बसे अविनाशी।

सदगुरु पुरख दयाल है, जिसनु संत सब कोय, एक दृष्ट कर देखदा मन पावनी ते सिद्ध होय। सगुर विच अमृत है हर उत्तम घर पासोय, नानक कृपा ते घर त्याई है, गुरमुख पावे कोय महला चौथा। होमे माया सा बिख है, नित जग तोटा संसार, लहार तन खटिया गुरमुख शब्द विचार। होमे मायल बिख उत्तर है हर अमृत घर और तार, सब काज तिन के सिद्ध है जिन गुरमुख कृपा तार। नानक जो तुर मिले से मिल रहे, हर मिले सृजनहार पौड़ी, तू सच्चा साहिब सच है, सच सच्चा गोसाई, तुदनु सब ते आए दी, सब लगे तेरी पाई। तेरी सिवत सवाले स्वरूप है, जिन कीती तुझ पार लंघाई, गुरमुखा नू फल पाएंदा सच नाम सुमाई। वड्डे मेरे साहेबा वड्डी तेरी वड्याई, श्लोक महला चौथा, लिन नावे होर सलाहना, सा बोलन फिका साध, मन अंकार सलाहांदे होमे ममतावाद। जिन सालाहन से मरे खप जावे साप अपवाद, जन नानक गुरमुख उबरे जप हर घर परमानाद। महला चौथा सतगुर घर प्रदस, नाम त्याई मन हरी, नानक नाम पवित, हर मुख बोली सब दुख पर हरी पौड़ी। तू आपे आप निरंकार है निरंजन घर राया, जिनी तू एक मन सच त्याया, इनका सब दुख गवाया। तेरा शरीक को नाही जिसनू लवे लाए सुनाया, तू जेवड़ दाता तू है निरंजना, तू है सच मेरे मन पाया। सच्चे मेरे साहेबा सच्चे सचनाया, श्लोक महला चौथा, मन अंतर हो मैं रोग है प्र भूले मन मुख दुर्जना। नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना, महला चौथा, मन का रत्ता रंग स्यो, गुरमुख हर गुण तास, जन नानक हर शरणागति, हर मेले गुरसाबास पौड़ी। तू करता पुरख अगम है इस नाल तू वड़ी है, तू जेवड़ हो सो आखी है, तो जेगा तू है पड़ी है, तू घट घट एक वर्तदा गुरमुख पर गड़ी है, तू सच्चा सब सदा खसम है, सब दू तू चढ़ी है, तू करे सो सच्चे होए सी ता कायत कड़ी है। श्लोक महला चौथा, मैं मंतन प्रेम प्रम का अठे पैर लगन, जन नानक कृपा तार प्रभ सदगुर सुख वसन। महला चौथा, जिन अंदर प्रीत प्रम की जो बोलन तेवे सुहन, नानक हरे आपे जानदा जिन लाई प्रीत प्रन पौड़ी। तू करता आप फुल है फुलन विच नागी, तू करे सो सच्चे पला है गुर शब्द बुझागी। तू करण कान समर्थ है दूजा को नागी, तू साहेब अगम दयाल है सब तुद त्यागी, सब जीत तेरे तू सब सदा तू सब छिड़ागी। श्लोक महला चौथा, सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन, गुर तुठे सज्जन मेलिया जन नानक सुख सुवन। महला चौथा, सतगुर दाता दयाल है जिसनू दया सदा होए, सतगुर अंदरो निरवैर है सब देखे ब्रह्म एक सोए। निरवैरा नाल जे वैर चलाएंदे तिन विचों तिष्ठिया ना कोए, सतगुर सबना दा पला मनाएंदा एदा बुरा क्यों होए। सतगुर नू जिया को इच्छदा तेखा फल पाए कोए, नानक करता सब कुछ जानदा जिदू केश गुजा ना होए पौड़ी। जिसनू साहेब वड्डा करे सोई वड जानी, जे साहेब पावे थे बख्स लै सो साहेब मन पानी, जे को उस दी रीस करे सो मूड अजानी। जिसनू सतगुर मिले सो गुण रवे गुण आख वखाणी, नानक सच्चा सच है बुझ सच सुमाणी। श्लोक महला चौथा, हर सत निरंजन अमर है निरभौ निरवैर निरंकार, जिन जप्या एक मन एक चित तिन लथा होमे पार, जिन गुरमुख हर आराध्या तिन संत जिना जयकार। कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की तिसनु फिट फिट कहे सब संसार, सगुर विच आप वर्तदा हर आपे रखणहार। तन तन गुरु गुण गावंदा तिसनु सदा सदा नमस्कार, जन नानक तिन कौ वारिया जिन जप्या सृजनहार। महला चौथा, आपे धरती सजियन आपे आकाश, विच आपे जंत उपायन।

त्यों संतो निर्मल होए, गुरमुख गुण में हाजिए मलहो में कड्डे तोय, सच वणन जय रंग स्यो सच सौदा होए, टूटा मूल न आवई लहार पावे सोए, नानक तिन सच वणन जया जिन्ना तुर लिखिया प्राप्त होए, पौड़ी साराई सच सालाना सा सच्चा पुरख निराले, सच सेवी सच मनवसे सा सच्चा हरख वाले, सा सच्चा जिनी अराध्या थे जाय रले सच नाले, सा सच्चा जिनी ना सेवया थे मनमुख भूड बिताले, ओ आल पताल मोह बोल दे ज्यों पीते मद मतवाले,

तपे तरम हारिया, भाई ए तपा ना हो भी बगला है, भय साधना विचारिया। सतपुरख की तपा निंदा करे, संसारे की उस्तुति।

लोभ मोह संग साधा पखे पर कृपा प्रवे अपनी हर आप परखे नानक चलतना जापनी ओ सके ना लखे। श्लोक महला पंजवां नानक सोई दिन सो।

पद हर प्रवान, सर्व त्याग फल केवल राम। गौड़ी कबीर जी, नगन फिरत जाओ पाइए जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग, क्या नांगे क्या बाधे चाम। जब ने चीन से आत्म राम, हरहाओ मूड मुडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गई आकाई, बिंद राग जाओ तरिये पाई, खुसरे क्यों ना परम गद पाई, कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गद पाई। गौड़ी कबीर जी, संध्या प्रात स्नान कराही, ज्यों पै दादुर पानी माही, जाओ पै राम राम रत नाही, के सब धर्म राय कै जाही रहाओ। काया रत बहु रूपर चाही, तिन को दया सुपने पी नाही, चार चरण कह बहु अगर, साधु सुपावे कल सागर। कहो कबीर बहु काय करी जय, सर्व छोट।

अब मोह मिलो है जिया मनहारा रहाओ। या देखी परमल महकंदा तासुक बिसरे परमानंदा, कूटा एक पंच पनहारी टूटी लाज परे मत सारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओ कुवटा ना पनहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्मा किए बहुरंगा। ऐसे काल हम बहुत बसाए, जब हम आराम गर्भ हो आए रघाव। योगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा शद्रपत कबहू पेघारी। सागत मरे संत सब जीव, राम रसायन

गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकुर पाई, मुक्त अनंत पुकारन जाई। अब कहो राम भरोसा तोरा, तब काहू का कवन ने होरा रहाओ। तीन लोक जाके है पार, सो काहे ना करे प्रतपार। कहो कबीर एक बुद्ध विचारी, क्या बस जाओ बिगदे महतारी। गौड़ी कबीर जी बिन सत सती होए कैसे नार। पंडित देखो हृदय विचार, प्रीत बिना कैसे बदे स्नेहो। जब लग रस तब लग नहीं नेहो, अरहाओ सहन सत करे जी अपने। सोर मैये को मेरे ना सुपने, तान मन तान गृह सौंप शरीर। सोई सुहागन कहे कबीर, गौड़ी कबीर जी दिखिया व्यापिया सगल संसार। दिखिया ले डूबी परवार, रे नरनाव चौड़कत बोड़ी। हर स्यों तोड़ दिखिया संग जोड़ी, रहाओ सुर नर दादे लगी आग। निकट नीर पस पीस ना चाग, चेतत चेतत निकस्यो नीर। सो जल निर्मल कथत कबीर, गौड़ी कबीर जी जे कुल पूत ना ज्ञान बिचारी। विधवा कस ना पई महतारी, जे नर राम भगत ने साधी। जन्मत कस ना मो अपराधी, रहाओ मोच मुच गर्भ गए कीन बचया। बुढ़ पुज रूप जीवे जग मजया, कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप।

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन पावे रहाओ। जे कड़ राम रहया भरपूर, इनकी पाग

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगया पावे। बिखिया अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुखते से ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साज कर जाना। संकादक नारद मुन सेखा, तिन पीतन में मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खुद जो पाई, ता छूटे मन कहां सुमाई। गुर प्रसादी जय देव नामा, भगत के प्रेम इन ही है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साज पछाना। इस मन को रूप न रेख्या काई, हुक्मे होया हुक्म बूझ सुमाई। इस मन का कोई जाने पेयो, ए मन लीन पय सुख देयो। जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को रव रहे कबीरा। गौड़ी गुवारेरी आहे निस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध पय लिव लागे। रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तरतारे। जो हर हरे सो होए न आना, कहे कबीर राम नाम पछाना। गौड़ी पी सोठ पी, रे जी न लज लाज तोय नाही। हर ताज कद काहू के जाही। रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई, सो जान पर कर जातन सोही। सो साहेब रहा पर पूर, सदा संग नाही हर।

गंगा आनी, बैठत उठत कुटलता चाले, आप गए और नहुं काले, शाड़ को चर्चा आन न जाने, ब्रह्मा हूं को कयो न माने, आप गए और नहुं खोवे, आग लगाए मंदिर में सोवे, आवर नभस्त आप है काने, तिनको देख कबीर ले जाने, राग गौड़ी बैरागण कबीर जी एक ओंकार। सदगुर प्रसाद जीवत पितर ना माने को, मुए श्राद्ध कराही पितर पी बपरे को क्यों पावे, कौआ कुकर खाही मोको कुशल बतावो कोई, कुशल कुशल करते जग बिनसे, कुशल पी

आपन कया ना लेगी, सरजियो काटे निर्जियो पूजे, अंतकाल को पारी, राम नाम की गत नहीं जानी, पै डूबे संसारी, देवी देवा पूजे डोले, पार ब्रह्म नहीं जाना, कैत कबीर अकुल नहीं चेतया, बिखिया सो लबटाना गौड़ी, जीवत मरे मरे फुन जीवे, ऐसे सुन सुमाया, अंजन माये नरंजन रहिए, बौड़ न पव दिल पाया, मेरे राम ऐसा खीर बलोइए, गुरमत मनुआ अस्तर राखो, इन बिद अमृत पीओइए रखाओ, गुर के बाण बज्र कलशेदी, प्रगटया पद परगासा, सगत अंधेर जेवड़ी प्रचूका, निचल शिव कर बासा, तेन बिन बाणे तनख चढ़ाइए, यो जग बेद्या पाई, दैत्य बूढ़ी पवन चुलावे, डोर रखी लिवलाई, उन मन मनुआ सुन सुमाना, दुबदा दुर्मत पागी, कहो कबीर अनपो एक देखेया, राम नाम लिवलागी, गौड़ी बैरागण तेप दे, उल्टद पावन चक्कर खट पेदे, सुरत सुन अनरागी, आवे ना जाए मरे ना जीवे, तास खोज बैरागी, मेरे मान मन ही उल्ट सुमाना, गुर प्रसाद अगल पैयावर, ना तरथा बेगाना, रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे, जिन जैसा कर मानिया, अलौती का जैसे पया बरेडा, जिन पिया तिन जानिया, तेरी निर्गुण कथा काय स्यो कहिए, ऐसा कोए बबेकी, कहो कबीर जिन दिया पलीता, तिन तैसी चल देखी गौड़ी, ते पावस सिंध तूप नहीं सहिया, ते उत्पत परलो नाही, जीवन मृत ना दो सुब्याप, सुन समाध दो ते नाही, सहज की अकथ कथा है निरारी, तोलनी चढ़े जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना पहारी, रहाओ अर्ध उर्द दो ते नाही, रात दिन सुते नाही, जल नहीं पवन पाप को फुन नाही, सदगुर ता सुमाही, अगमे गोचर रहे निरंतर, गुर कृपा ते लहिए, कहो कबीर बल जाओ गुरे अपने, सत संगत मिल रही है, गौड़ी पाप उन्दे बैल बिसागे, पवन पूंजी परगासेओ, तिशना गुण पड़ी कड़ पीतर, इंद्र टाण बसायो, ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार की ओ बन जारा, हरहाओ काम क्रोध पय जगाती, मन तरंग बटवारा, पंच तत् मिल दान नबेर, टांडा उतरे हो पारा, कहे तो कबीर सुनो रे संतो, अब ऐसी बने आई, घाटी चढ़त बैल एक थाका, चलो गौण छिटकाई, गौड़ी पंच बदा, पेवकड़े दिन चार है, सौरड़े जाना, अंधा लोक न जानई, मूर्ख ए आना, कौ डडिया बादे तन खड़ी, पाहू कर आए, मुकलाऊ आए, हरहाओ हो जे दिसे खूड़ी, कौन लाज वगारी, लाज कड़ी से तूड़ पड़ी, उड़ चली पनहारी, साहेब होए दयाल कृपा करे, अपना कार्य सवारे, ता सुहागण जानिए, गुर शब्द विचारे, किरत की बांधी सफेरे, देखो बिचारी, एसनु क्या आखिए, क्या करे विचारी, पई निरासी उड़ चली, चित बंद न तीरा, हर की चरणी लाग रहो, भाज शरण कबीरा, गौड़ी जोगी कह जोग फल मीठा, अवर न दूजा पाई, रुंडत मुंडत एक शब्दी, एक कह सिद पाई, हर बिन परम भोला ने अंधा, जा पै जाओ आ छुटकावन, ते बांधे बहु फंदा, हरहाओ जैते उबजी तई सुमानी, एवद बिसरी तब ही, पंडित गुणी सूर हमदाते, एक कह बढ़ हम ही, जिसे बुझाए सोई बूझे, बिन बूझे क्यों रही है, सदगुर मिले अंधेरा चूके।

पूछे ते क्या कहिए, राग गौड़ी पूर्वी। कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जय कश आह ता किश नाही, पंच तत ते नाही, इड़ा पिंगला सुख मन बंदे, ए आवगान कत जाही। तागा टूटा गगन बिरस गया, तेरा बोलत कहां सुमाई, ए संसार मोको अन दिन व्यापै, मोको को ना कह समझाई। रघाओ जैवर पंड पिंड तय नाही, रचनहार तय नाही, जोड़नहार उसदा अतीता, ए कहिए किस माही। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे, जब लग होए बेनासी, काको ठाकुर काको सेवक, को काहू कह जासी। कहो कबीर लिव लाग रही है, जहां बसे दिन राती, हुआ का मर्म वही पर जाने, हो तो सदा अविनाशी। गौड़ी सुरत सिमरत दो कन्नी मुंदा, पर मित बार खिंता, सुन गुफा में आसन बैसन, कल्प विवर्जित पंथा। मेरे राजन मैं बैरागी जोगी, मर्तना सोग बेयोगी। रहाओ खंड ब्रह्मांड में सिंगी, मेरा बटुआ सब जग पसमा तारी, ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है, छूटे होए पसारी। मन पवन दे तूंबा करी है, जुग जुग सार दिशा जी, फिर पीतंती तूट सुनाही। अनहद किंगुरी बाजी, सुन मन बगन पए गए पूरे, माया डोल ना लागी। कहो कबीर ता को पुनरब जन्म नहीं, खेल गयो बैरागी। गौड़ी गाज नाव गाज दस गाज इक्कीस, पुरिया एक तनाई, साठ सूत नवखंड बहत्तर, पाड़ लगो अधकाई। गई बुनामन माहो, कर छोडे जाए जुलाहो। रहाओ गजी ना मिनिये तोल ना तुलिये, पाचन शेर अठाई, जो कर पाचन बेग न पावे, जगर करे कर गाई। दिन की बैठ खजम की बरकस, ए बेला कते आई, चूटे कुंडे पीगे पुरिया, चलो जलाहो रीसाई। शोशी नली तंत नहीं निकस, नतर रही उर जाई, छोड़ पसार इहां रो बपरी, कहो कबीर समझाई। गौड़ी एक जोत एका मिली, किंबा होए महोए, जित कड़ नाम ना उपजे, हूट मरे जन सोए। सावल सुंदर रामैया, मेरा मन लागा तोह, हरहाओ साध मिले सिद्ध पाईए, के एहो जोग के भोग, दो मिल कार्ज उपजे, राम नाम संजोग। लोग जाने यो गीत है, यो तो ब्रह्म विचार, जो कासी उपदेश होए, मानस मरती बार। कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसार नहीं, अंत परमगत पाए। गौड़ी जेते जतन करद ते डूबे, भव सागर नहीं तारियो रे, कर्म धर्म करते बो संजम, अंग बुद्ध मन जा रियो रे। साध गराज को दा तो ठाकुर, तो क्यों मनो बसारियो रे, हीरा लाल अमोर जन्म है, कौडी बदले हारियो रे। हरहाओ तृष्णा त्रिखा पूख प्रम लागी, हृदय नहे बिचारियो रे, उन मतमान हिरे ओ मन मागी, गुर का शब्द ना तारियो रे। स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो, मद लयत बकारियो रे, कर्म पाल संतन संगा ने, काष्ट लो उधारियो रे। तापत जोन जन्म प्रमथा के, आप दुख कर हम हारियो रे, कहे कबीर गुर मिलत महारस, प्रेम भगत निस्तारियो रे। गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरारे, चलतर चो जगदीश काम सुवाए, गज पद परे मन बौरारे, अंकस सहे ओ शीस, बिखे बाच हर राज समझ मन बौरारे, निरपय होए न हर पदे मन बौरा।

मन बौरार, माया इो व्यवहार। जैसा रंग सुंभ का मन बौरार, त्यों पसरे पासार। नावन को तीर्थ कने मन बौरार, पूजन को बो देव कहो कबीर। छूट नहीं मन बौरार, टूटन घर की सेव गौड़ी। अग्न न दह पवन नहीं मगन, तस्कर नेर न आवे। राम नाम तन कर संचौनी, सो तन कतही ना जावे। हमरा तन माधो गोविंद तरणी तार, ए सार तन कही है। जो सो प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज ना लई है। हरहाओ इस तन कारण से संकादक, खोज पय उदासी। मन मुकंद जे बा नारायण, परे न जम की फासी। निज तन ज्ञान पद गुरदीनी, तास सुमत मन लागा। जलत अम्ब थम मन तावत, परम बंधन पो पग। कहे कबीर मदन के माते, हृदय देख बिचारी। तुम कर लाख कोट असवस्ती, हम कर एक मुरारी। गौड़ी ज्यों कब के कर्म हित चरण की, लुब्ध न त्याग दयो। जो जो कर्म किए लालच सियो, ते फिर गरे परे हो। भगत बेन बिरथे जन्म गयो, साध संगत भगवान भजन बेन। कही न सच रहो रहाओ, ज्यों उद्यान कुसुम प्रफुल्लत। किने न कराओ लयो, तैसे प्रमत अनेक जोन में। फिर कार हयो, या तान जोबन आर शुद्ध दारा। पेखन को जो दयो, तिन ही माह अर्घ जो उर्जे। इंद्री प्रेर लयो, औध अनल तन तिन को मंदर। चौध ठाठ ठयो, कहे कबीर है सागर तरण को। मैं सदगुर ओट लयो, गौड़ी

इस माटी में पम समाया, झूठा प्रपंच जोर चलाया, किन्हु लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी, कहे कबीर एक नीव सारी, खिन में बिन सजाए अंकारी गौड़ी। राम जपो जी ऐसे ऐसे, त्रू प्रहलाद जप्यो हर जैसे, दीन दयाल परोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, रहाओ जत पावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चुग गई फिर आमन जानी, कहो कबीर भज सारंग पानी, उरवार पार सब एको दानी, गौड़ी नावी जोन छाड़, जो जग में आयो लागत पवन खसुम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ रगाओ, गर्भ जोंग में उर्तव करता, तो जठर अग्न में रहता, लगत उरासी जोन प्रमे आयो, अब के शुटके ठौर न ठायो, कहो कबीर पर सार्ग पानी, आर्त जिसे जात न जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्गवास ना बाची है, डरके नरक निवास, होना है सो होई है, मने न की जे आस, रमैया गुण गाइये, जाते पाइये परमन धान रखाओ, क्या जप क्या तव संजमो, क्या व्रत क्या स्नान, जब लग जूत न जानिए, पाओ भगत भगवान, संपे देख न हरखिए, विपत देख न रोए, जो संपे त्यो विपत है, विद ने रचिया सो होए, कहे कबीर अब जानिया, संतन हृदय मजार, सेवक सो सेवा पले, जे कड़ बसे मुरार, गौड़ी रे मन तेरो कोय नहीं, खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को, तैसो यो संसार, राम रस पिया रे, जे रस बिसर गए रस और रखाओ, और मुए क्या रोई है, जो आपा थिर ना रखाए, जो उपजे सो बिनस है, तो का रोवे बलाए, जय की उपजी तै रची, पीवत मर्दन लाग, तय कबीर किद चेतया, राम सिमर बैराग, राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी, लोचन परी ले उसासा, और ना पीजे पग ना खिसे, हर दर्शन की आसा, उड़ो ना कागा कारे, बेग मलीजे अपने राम प्यारे रहो, कहे कबीर जीवन पद कारण, हर की पगत करीजे, एक आधार नाम नारायण, रसना राम रवीजे, राग गौड़ी ग्यारवी, आस पास कण तुरसी का बिरवा, माज बनारस गाऊ रे, हुआ का स्वरूप देख मुई ग्वारन, मोको छोड़ न आऊ न जाहू रे, तोहे चरण मन लागो सारंग तार, सो मिले जो बड़ भागो रघाओ, बिंद्राबान महरन मनोर, कृष्ण चिरावत गाऊ रे, जाका ठाकुर तुही सारंग तार, मोहे कबीरा नाऊ रे, गौड़ी पूर्वी बारवी, बिपल बस्तर केते हैं पैरे, क्या मन बदे बस, कहां पया नर देवा तोखे, क्या जल बोरे ज्ञाता, जियरे जाएगा मैं जानना, आगत समझ ए आना, जब जब देखो बौर ना पेखो, संग माया लपटाना रखाओ, ज्ञानी त्यानी ब उपदेसी, यो जग सुग लो तंडा, कहे कबीर एक राम नाम बेन, या जग माया अंधा, गौड़ी बारवी मारे छाडो।

अक्षर लो त्रै साब कश इन की माघ ए अखर खिर जाएंगे ओए अखर इन मैं नाघ जा बोलते अक्षर आवा जय अबोल तय मन ना रखावा बोल अबोल मद है सोई जस ओ है तस लखे ना कोई अले लहो तो क्या कहो खो ता को उपकार बड़क बीज मैं रव रहे हो जाको तीन लोग विस्तार अले लहंता पेद शय कश कह पायो पेद उल्ट पेद मन पेद्यो पायो अपंग अशेद तुर्क तरीक तजानिए हिंदू वेद पुराण मन समझावन कारण कशुक पढ़िए ज्ञान ओंकार आदमय जाना लिखर मेटे ताए न माना ओंकार लखे जो कोई सोई लख मिटना ना होई कक्का किरण कमल में पावा सद विकास संपट नहीं आवा हर जे तह कुछ मरस पावा आके कहा कह का समझावा खखा ए खोड़ मन आवा खोड़े शाड़ ना दैद सतावा खसमे जान खिमा का रहे तो होए नख्याओ अखय पदल है गग्गा गुर के भजन पछाना दूजी बात न तरई काना रहे बेहंगम कते ना जाई आगे गह गह गगन रखाई तग्गा काट काट निमसे सोई काट फूटे कड़ कबे न होई ता कट माहे काड़ जो पावा।

आद करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंब, अहिर अखंड सो रही जाए, तो अनहद बेण सहज मय बाय, सोमवार सज अमृत चरे, त्यागत बेग सगल बिखरे।

प्रकाश हृदय कमल में हर का वास गुर मिल दो एक सम तरह उर्द पंकले सुधा करे बृहस्पति दिखिया देव बिहाये तीन देव एक संगलाए तीन नदी ते त्रिगुटी नागे अंश कसमल तो वे नागे सुकृत सहारे तो ए व्रत चढ़े अंत ने आप स्यों लड़े सुरखी पंचो राखे सब तो दूजी दृष्ट न पैसे कबे थावर थिरकर राखे सोए जोत दी वट्टी कड़ में जोए बाहर पीतर पया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास जावला कट में दूजी आन तौलो महल ना लाभे जान रमत राम स्यों लागो रंग कहे कबीर ता निर्मल अंग राग गौड़ी चेती बाणी नाम दियो जियो की एक ओंकार सदगुर प्रसाद देवा पान तारियले राम कहत जन कसना तरे रघाओ तारियले गनका बिन रूप कुबजा ब्याल अजामल तारियले चरण बदक जन तेउ मुक्त पहे औ बल बल जिन राम कहे दासी सो जन बिदर सुदामा उग्रसैन को राज दिए जापहीन तपहीन कोलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी तेउ तरे राग गौड़ी रविदास जी के पदे गौड़ी गुवारेरी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोत सोज दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभांति राम गुसैया जी के जीवना मोहे नाम सारो मैं जन तेरा रहाओ मेरी हरो विपत जन करो सुपाई चरण ना छाडो शरीर कल जाई कहो रविदास परो तेरी सांबा बेग मिलो जन करना बिलंबा बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंधो नहीं तेठाओ ना तस्वीस खिराज ना माल खोब ना खता न तरस जवाल आ मैं खूबतन गए पाई ऊहा खैर सदा मेरे भाई रघाओ कायम दायम सदा पातशाही दो मना सेम एक सो आही आबा दान सदा मशहूर ऊहा गनी बसे मामूर त्यों त्यों सैल करे जो पावे महरम महल न को अटकावे कह रविदास खरा चुमारा जो हम सहरी छो मीत हमारा एक ओंकार सदगुर प्रसाद गौड़ी बैरागन रविदास जियो काट आव काट डूगर कणा एक निर्गुण बैल हमार रमैये सुए एक बेनती।

जाए, नदर करे इतना सदगुरु मिले, परमत नानक पहुंच जलता रहे। आसा मोहल्ला पहला पंच बदे, दुध बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उदबुज कामना ही, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही, की विसर दुख बहुता लागे, दुख लागे तू विसर नाही, हरहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन ना वाजे, चरणी चले पजूता आगे, विण सेवा फल लागे, अखर देख बाग पे चोखी, सिंचित पाओ करेगी, सब ना फल लागे नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेगी, जेते जी तेते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही, दुख सुख पाना तेरा होवे, विण नावे जियो रहे नाही, मत विच मरण जीवन होर कैसा, जा जीवा ता जूत नाही, कहे नानक जीवाले जिया, जय पावे है राख तुही, आसा महला पहला, काया ब्रह्मा मन है तोती, ज्ञान जिनेऊ ध्यान कुसपाती, हर नामा जा जा चौनाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ, पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामो पढ़ो, नामे चज आचार रखाओ, बार जनेऊ जिचर जोत है नाल, धोती टिक्का नाम सुमाल, ऐथे उथे निभगी नाल, विण नावे होर कर्म ना पाल, पूजा प्रेम माया परजाल, एको वेखो अवर ना पाल, इन तत् गगन दा द्वार, हर मुख पाड़ पड़े विचार, भोजन पाओ परम पाओ भागे, पारू रश बचोर न लागे, तिलक ललाट जाने प्रवेक, बूझे ब्रह्म अंतर बवेक, आचारी नहीं जीत्या जाए, पाठ पड़े नहीं कीमत पाए, अष्टदशी चौपेद न पाया, नानक सदगुर ब्रह्म दिखाया, आसा महला पहला, सेवक दास भगत जन सोई, ठाकुर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फुन गोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, साच नाम गुर शब्द विचार, गुरमुख साचे साचे दरबार रखाओ, सच्चा अर्ज सच्ची अरदास, मैली खजम सुने साबास, सच्चे तख्त बुलावे सोए, देव डियाई करे सो होए, तेरा तान तू है दी बाण, गुर का शब्द सच निशान, मन्ने हुक्म सु प्रगट जाए, सच निशाने ठाक न पाए, पंडित पढ़े वखाने वेद, अंतर अवस्त न जाने भेद, गुरबिन सूझी बूझ न होए, साचा रवर या प्रसोए, क्या हो अख अख वखाणी, तू आपे जाने सर्व वडाणी, नानक एको दर दी बाण, गुरमुख साजता गुजराण, आसा महला पहला, काची गागर दे दुहेली, उपजे बिनसे दुख पाई, यो जग सागर दुत्र क्यों तरिए, बिन हर गुर पार न पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे, तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सर्बी रंगी रूपी तू है, तेस बगसे जिस नदर करे रखाओ, सास बुरी कर वास न देवे, फिर स्यों मिलन ना दे बुरी, सखी सजनी केखो चरण सरेव, हर गुर कृपा ते नदर तरी, आ विचार मार मन देखया, तुम सामीत न अवर कोई, ज्यों तू रख तिभगी रहना, दो सुख देवे करे सोई, आसा मनसा दो बिनास्त, त्रिगुण आसन रास पई, तुरियावस्था गुरमुख पाई है, संत सभा की ओट लगी, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप, जिस हर हृदय अलख पेव, नानक राम नाम मन रत, गुरमत पाए सहज सेवा, आसा महला पहला, पंच पदे मोह कुटुंब मोह सवकार, मोह तुम तजो सगल वेकार, मोह अर परम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवे शरीर, रहाओ सच नाम जा नवन दपाई, रोवे पूतना कल पैमाई, एत मुए डूबा संसार, गुरम कोई उतरे पार, एत मुए फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जम पुर जाहे, गुर दिखिया ले जब तब कुमागे, ना मो टूटे न थाए पाए, नदर करे ता यो मो जाए, नानक हर्षों रह सुमाए, आसा महला पहला,
ਆਪ ਕਰੇ ਸੱਚ ਅਲਖ ਪਾਰ। ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ, ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਹੜ ਕੀਤੇ ਅੰਤ ਵਗੋਵੇ ਰਖਾਓ, ਮਨਮੁਖੀ ਮਤ ਕੂੜ ਵਿਆਪੀ। ਬਿਨਖ ਸਿਮਰਨ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪੀ, ਦੁਰਮ ਤਿਆਗ ਲਾਹ ਕਿਛ ਲੇਵੋ। ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਅਲਖ ਪੇਵੋ, ਐਸਾ ਹਮਾਰਾ ਸਖਾ ਸਖਾਈ। ਗੁਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਈ, ਸਗਲੀ ਸੌਂਦੀ ਤੋਟਾ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਪਾਵੇ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪ ਦੇ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਪੁਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਪੰਚ ਰਾਸੀ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ। ਘੁੰਗਰੂ ਵਾਜੇ ਜੇ ਮਨ ਲਾਗੇ, ਤਉ ਜਮ ਕਾਂ ਕਰੇ ਮੋਸੂ ਆਗੇ ਰਹਾਓ। ਆਸਨ ਰਾਸੀ ਤਉ ਸੁਨਿਆਸੀ, ਜਾਂ ਜੈ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਕਾਇਆ ਭੋਗੀ। ਦਇਆ ਦਿਗੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਆਪ ਮਰੇ ਅਵਰਾ ਨਹਿ ਮਾਰੀ। ਇਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੇਸ ਬੋ ਤੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਚੋਜ ਨਾ ਤੇਰੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਇਕ ਨ ਪਰੀਆਂ ਗੁਣ ਕਰ ਤੋਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਸੋ ਜਾਗੇ ਹਉ ਨਿਸ ਪਰ ਸੋਵਾਂ, ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ। ਸੋ ਜਾਗੇ ਹਉ ਨਿਸ ਪਰ ਸੋਵਾਂ, ਰਹਾਓ। ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਸੇਜੇ ਆਵਾ, ਆਗੇ ਸਹਿ ਭਾਵਾ ਕੇ ਨਾ ਪਾਵਾ। ਕਿਆ ਜਾਨਾ ਕਿਆ ਹੋਏ ਗਾਰੀ ਮਾਈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਹਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਚਾਖਿਆ ਮੇਰੀ ਤਿਸਨਾ ਬੁਝਾਨੀ। ਗੈ ਸੋ ਜੋਗਨ ਤਨ ਪਛਤਾਨੀ, ਅਜੇ ਜਾਗੋ ਆਸ ਪਿਆਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਸੀ ਰਹੋ ਨਿਰਾਸੀ, ਰਹਾਓ। ਹੋ ਮੈਂ ਖੋਏ ਕਰੀ ਸੀ ਗਾਰ, ਤੋ ਕਾਮਣ ਸੇਜੇ ਰਵੇ ਪਤਾਰ। ਤੋ ਨਾਨਕ ਕੰਤੇ ਮਨ ਪਾਵੇ, ਛੋੜ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਖਦਮ ਸੁਮਾਵੇ। ਰਹਾਓ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੇਵ ਕੜੇ ਤਨ ਖਰੀ ਇਆਣੀ। ਤੇ ਸਹਿਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਏਕ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਈ, ਰਹਾਓ। ਸੋ ਰੜੇ ਤਨ ਸਾਚ ਪਛਾਣਿਆ, ਸਹਿ ਸੁਪਾਏ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਾਣਿਆ।

का सोई, जे सकता सकते को मारे ता मन रोस न होई। हरहाओ सकता सियो मारे पै वगे, कसमे सा पुरसाई। रतन विगाड़ भगोए कुत्ती, मोया सार न काई। आपे जोड़ विछोड़े आपे, वेख तेरी वड्याई। जे को नाओ तराए वड्डा, साध करे मन पाणे। खसमे नदरी कीड़ा आवे, जेते चुगे दाने। मर मर जीवे ता किश पाए, नानक नाम खाणे। अराग आसा कर दूजा, महला तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर दर्शन पावे वडभाग। गुर के शब्द सच्चे बैराग, खड़ दर्शन वरते वरतार। गुर का दर्शन अगमे पार, गुर के दर्शन मुक्त गद होए। साचा आप वसे मन सोए, रहाओ गुर दर्शन उदरे संसारा। जे को लाए पाओ प्यारा, पाओ प्यारा लाए विरला कोए। गुर के दर्शन सदा सुख होए, गुर के दर्शन मुख द्वार। सदगुर सेवे परवार सधार, निगुरे कौ गद काई नाही। अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर के शब्द सुख सांत शरीर। गुरमुख ताको लगे ना पीर, जम काल ते नेड़ न आवे। नानक गुरमुख साज सुमावे।

सोई जन जान हर गुण सदगी आख वखाण जिन सेवया तिन सुपाया सहजेगी कर नाम सुमाया तू आपे करता तेरा किया सब होय तुद बिन दूजा अवर न कोय तू कर कर वेख जाने सोय जन नानक गुरमुख प्रगट होय।

मन बैराग ब्रगत पयो हर दर्शन नीत कहताई। जैसे अल कमला बिन रहे न सके तैसे मोय हर बिन रहन न जाई। राख शरण जगदीश्वर प्यारे मोय सरदा पूर हर गुसाई। जन नानक कहे मन अंध होत है हर दर्शन निमख दिखाई। राग आसा कर दूजा महला पंजवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद जिन लाई प्रीत सोई फिर खाया। जिन सुख बैठा ली तिन पौ बोध दिखाया। भाई नीत कुटंब देख विवादे हम आई बस गद गुर प्रसादे। ऐसा देख विमोत होय साधक सिद्ध सुरदेव मनुख बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे रखाओ। एक फिरे उदासी तिन काम में आपे एक संचे गिरगी तिन होए न आपे। एक सती कहावे तिन बहुत कलपावे हम हर राखे लग सतगुर पावे। तब करते तपसी फूलाए पंडित मोहे लोभ सुभाए। त्रैगुण मोहे मोया आकाश हम सतगुरु राखे देकर हाथ। ज्ञानी की होए वर्ती दास कर जोड़े सेवा करे अरदास। जो तू कहे सो कार कुमावा जन नानक गुरमुख नेड़ न आवा। आसा महला पंजवा ससूते वर कीनी वाख दे जिठानी मोई दुख संताप। करके जठेरे की चूकी कान ते रख्या कीनी सूड़ सुजान।

त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत सुमन ने तुरिया गुरमेल साध विशाल ने सहज कोबा में आसन बाध्या ज्योत स्वरूप अनाद वाध्या महा आनंद गुर शब्द विचार प्रेस राती तन सुहागण नार जन नानक बोले ब्रह्म विचार जो सुने कुमावे तो उतरे पार जन्म ना मरे ना आवे ना जाए हर सेती ओ रहे सुमाए आसा महला पंजवा ने भगती सीलवंती नार रूप अनूप पूरी आचार जित करे वसे सोग्र सोभावंता गुरमुख पाई किने विरले जनता सो करणी कामन गुरमिल हम पाई जय प्रथाए सुहाई रहाओ जिचिर वसी पिता के साथ किचिर कंत वो फिरे उदास कर सेवा सतपुरख मनाया गुरयाणी कर्म ता सर्व सुख पाया बत्ती सुलखणी सच संतत पूत आज्ञाकारी सुड स्वरूप इस पूरे मन कंत स्वामी सगल संतोखी देर जेठानी सब परिवार माघे श्रेष्ठ मती देवी देवर ज्येष्ठ तन सो गृहो प्रगटी आए जन नानक सुखे सुख विखाए आसा मुहला पंजवा मता करो सो पकन ना देई सील संजम के निकट खलोई पेश करे बहु रूप दिखावे गृह बसन ना देई वख वख परमावे घर की नायक हर वास न देवे जतन करो उरझाए परेवे रहाओ तुरकी भेजी आई अमर नौ खण जीते सब थान सनंतर तड़ तीर्थ न छोड़े योग सन्यास पढ़ था के सिमरत वेद अभ्यास जय बैसो तय नाले बैसे सगल पवन में सबल प्रवेश होची शरण पया रहन न पाई कहो मीता हों कह पै जाई सुन उपदेश सदगुर पै आया गुर हर हर नाम मोय मंत्र दरड़ाया निज कर वस्या गुण गाय अनंता प्रमिलो नानक पै अचिंता कर मेरा ए नायक हमारी ए अमर हम गुर की ए दरबारी रहाओ दूजा आसा महला पंजवा प्रथमे मता जे पत्री चलावो द्वितीये मता दोए मानख पहुचावो तृतीये मता किश करो उपाया मैं सब के छोड़ प्रत हुई ते आया महा आनंद अचिंत सह जाए।

आग हमारो अब हुन सोयो, कंत मिलियो मेरो सब दुख जोयो, आंगन मेरे शोभा चंद, निसबसर प्रे संग आनंद, बस्तर हमारे रंग चलूल, सगल अपर्ण शोभा कंठ फूल, प्रे पेखी दिट पाए सगल निधान, दुट दूत की चूकी कान, सद खुशियां सदा रंग माने,

माया मूठा चेतै नाही, परमे पूला बोती राही, बाहर पेख करे कनेरे, अंतर बिखय उतरी केरे, आवर उपदेश आप ना बूझ, ऐसा ब्राह्मण कही ना सीज।

अपमान बिगड़ रूप मन में अवमान तो निस्वरूप सुजान बचकन आत गर्भ मुए फाकी तू रहाओ असूची तेरी पाकसाल कर स्नान पूजा तिलक लाल गली गर्भ मुख गोवे ज्ञान साबित खोई लोभ सवान कापर पैरे भोगे भोग आचार करे शोभा मैं लोग चुआ चंदन सुगंध विस्तार संगी खोटा क्रोध चंडाल अवर जोन तेरी पनिहारी इस धरती मह तेरी सिकदारी सोयना रूपा तुझ पै दाम सील बगारियो तेरा काम जा को दिट मया हर राय साबंदी ते लई छड़ाए साध संग मिल हरस पाया कहो नानक सफल ओ काया सब रूप सब सुख बने सुहागन आत सुंदर बचखन तू पढ़ाओ दूजा आसा मोहल्ला पंजवा एक तुके दो जीवत दीस ते सर पर मरना मुआ होए तिस निचल रहना जीवत मुए मुए से जीवे हर हर नाम अब खुद मुख पाया गुर सबदी रस अमृत पीवे हराव काची मटकी।

इन ऊपर ले राख्यो गुमान, एक वस्त बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। कहो नानक गुर को कुर्बान, जिसते पाइये हर पुरख सुजान। आसा मोहल्ला पंजवा, एक तुके चौप दे, एक कड़ी दिन समुख को बहुत देगारे। मान ना रहे कैसे मिलो प्यारे, एक पल दिन से मुख को कभू ना बिगावे। दर्शन की मन आस कनेरी, कोई ऐसा संत मुख को पिरे मिलावे। हरहाओ यार पैर जो जुगे सुमाने, रैन पही तब अंत न जाने। पांच दूत मिल पिरो विछोड़ी, ब्राह्मण रोवे हाथ पछोड़ी। जन नानक को हर दर्श।

तन पूरा पाया। ऐसा हर तन संचिए पाई, पाए न जल जल नहीं डूबे, संग छोड़ कर कतो न जाई, हरहाओ टोट न आवे निखुट न जाए, खाए खर्च मन रह अघाय, सो सच साहो जिस कर हर तन संचाना, इस तन ते सब जग बरसाना, तिन हर तन पाया जिस पुरब लखे का लेना, जन नानक अंतवार नाम गहना, आसा मोहल्ला पंजवा, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाढ़ परानी, जो जन्मे तो जन हो मुआ, गोविंद भगत अस्तर है थिया, रहाओ दिनते सर पर पौसी रात, रहन गई फिर हुए प्रभात, माया मोहे तो रहे अपागे, गुर प्रसाद को विरला जागे, कहो नानक गुण गई है नीत, मुख उज्जल हुए निर्मल चीत, आसा महला पंजवा, नौनद तेरे सर

रब रहे आपर सबके साथ, पूरा गुर पूरी बंत बनाई, नानक भगत मिली वड्याई। आसा महला पंजवां, गुर के शब्द बनावो इहो मन, गुर कर दर्शन संचो हर तन, उत्तम मत मेरे हृदय तू आव, त्यावो गाव गुण गोविंदा, आत प्रीतम मोहे लागे नाव, रहाव तृप्त अगामन साचे नाय, हर सड मजन संत तू राय, सामे जानो करता एक, साध संगत मिल बुद्ध विवेक, दास अगल का छोड़ अब महान, नानक कौ गुर दीनो दान। आसा महला पंजवां, बुद्ध परगास पई मधपूरी, ताते बिनसी दुरमत दूरी, ऐसी गुरमत पाई अले, बूढ़द कोर अंधकूप मह, निकस्यो मेरे भाई रे, रहाव मां अगा अगन का सागर, गुर भोयथ तारे रतनागर, दुत्तर अंध बिखम ए माया, गुर पूरे प्रगट मार दिखाया, जाप ताप कश उगत न मोरी, गुर नानक सरण।

गीत ऊत हर छोड़ न जाए, नानक गीत दा हर रस माहे। आसा मोहल्ला पंजवां, काम क्रोध लो मोह मिटावे, छुटके दुरमते अपनी तारी, होए निमाणी सेव कमावे, ता प्रीतम होवे मन प्यारी। सुन सुंदर साधु बचन उधारी, दुख भूख मिटे तुर सहसा, सुख पावे तू सुख मन नारी। अरहाओ चरण पखार करो गुरसेवा, आत्म शुद्ध बिख त्यास निवारी। दासन की होए दास दासरी, ता पावे सोभा घर द्वारी। यही आचार यही व्यवहारा, आज्ञा मान भगत होए तुम्हारी।

पूरे, अंध भया सा मिटे रसूरे, हरहाओ जी जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन त्याया, आसा महला पंजवा बांशत नाही सो बेला आई, बिन हुक्मे क्यों बुझे बुझाई, ठंडी ताती मिट्टी खाई, ओ ना बाला बूढ़ा पाई, हरहाओ नानक दास साध सरणाई, गुर प्रसाद पो पार पराई, आसा महला पंजवा सदा सदा आत्म परगास, साध संगत हर चरण निवास, राम नाम नित जप मन मेरे, शीतल सांत सदा सुख पावे, केलबक जाहे सबे मन तेरे, रहाओ कौ नानक जाके पूर्ण कर्म, सगुर फेटे पूर्ण पार ब्रह्म।

साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा मोहल्ला पंजवा, काम क्रोध माया मद मस्तर, ए खेलत सब जुए हारे। सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने गृह पीतर वारे। जन्म मरण चूके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल। गुर पूरे लेखिन में तारे, रहाओ सबकी रेन होए रे मनुआ। सगले दिसे मीत प्यारे, सब मध्ये रव्या मेरा ठाकुर। दान देत सब जी सम्हारे, एको एक आप एक एक, एक कहे सगला पासारे। जप जप होए सगल साल जन, एक नाम तै बहुत उधारे। गैर गंभीर बेंत गुसाई, अंत नहीं किस पारा वारे। तुमरी कृपा ते गुण गावे, नानक त्याए तै प्रभु को ना।

मुक्ते ए बबाड़े आया हुक्म पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े कर्म धर्म जुगत बो करता करने गार न जाने उपदेश करे आप ना कमावे तत् शब्द ना पछाने नांगा आया ना गोजासी ज्यों हस्ती खाक शाने संत सज्जन

लागे साधु, नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग, वडभागे कृपा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद राग आसा कार सेवा महला पंजवा। जो तुद पावे सो परवाना, सूग सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा, अवर नाही रे कोई। तेरे जान रसक रस गुण गावे, मसलत मता सियान बजन की, जो तू करह करावे रहाओ। अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया, तृप्त अगाए सही जन पूरे।

नहीं दरगह टोई, जम पुर जाए पचावे, निंदक अहला जन्म गवाया, पहुंच न सके काहू बाते, आगे ठौर न पाया रहाओ। किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा, तहां बेगूता ते कोई न रखे, ओ किस पे करे बुकारा, निंदकी गत तथु नागी, खसमे ए वे पाना, जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना, संता टेक तुम्हारी स्वामी, तू संतन का सगाई, कहो नानक संत खरा रखे, निंदक दिगे रुढ़ाई, आसा महला पंजवा, बाहर तो अंतर मल मैला, दोए ठौर अपने खोए, ईहां काम क्रोध मुए व्यापया, आगे मुस मुसरोए, गोंद पजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप न मरई, नाम न सुनई डोरा, रहाओ। माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार ना जाने, वेद शास्त्र को तर्कन लागा, तत् योग ना पछाने, उगर गया जैसे खोटा टबुआ, नदर सरापा आया, अंतर जामी सब के जाने, उसते कहां छुपाया, कूड़ कपट बांच ने मुनियादा, बिनस गया तद काले, सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले, आसा महला पंजवा, उदम करत होवे मन निर्मल, नाचे आप निवारे, पंच जनाले वस गद रख, मन में एक अंकारे, तेरा जान निरत करे गुण गावे, रबाब पखावज ताल कुंगुरु, अनगद शब्द वजावे रखाओ, प्रथमे मन पर बुद्ध अपना, पाछे अवर दी जावे, राम नाम जप हृदय जप, मुक्ते सगल सुनावे, पर संग साधु चरण पखारे, संत तूर तन लावे, मन तन अर्प तरे गुर आगे, सत पदार्थ पावे, जो जो सुने पेखे लै सरदा, ताका जन्म मरण दुख पागे, ऐसी निरत नरक निवारे, नानक गुरमुख जागे, आसा महला पंजवा, अदम चंडाली पई ब्रह्मणी, सूदी ते सृष्टाई रे, पाताली आकाशी सखनी, लैबर बूजी खाई रे, घर की बलाई अबर सखाई, मूसा देख डराई रे, अज के वसगुर तीनों केहर, कुकर तने लगाई रे, रहाओ। बाज थूनिया छपरा थामिया, नी करया कर पाया रे, बिन जड़िए ले जड़ो जड़ावा, हेवा अचरज लाया रे, दादी दाद ना पहुंचन हारा, टूपी निरनो पाया रे, मार दुलीचे बैठी ले मृतक, नयन दखालन ताया रे, सोई अजान कहे मैं जाना, जानन हार नशाना रे, कहो नानक गुर अम्यो पी आया, रसक रसक बिरसाना रे, आसा महला पंजवा, बंधन काट बसारे औगुण, अपना बिरद संहारिया, होए किरपाल माध पित न्याई, बारग ज्यों प्रद पारिया, गुरसिख राखे गुर गोपाल, काढ लिए महापवजल ते, अपनी नजर निहाल रखाओ, जाके सिमरन जम ते छुटिए, हलत पलत सुख पाईए, साध गराज जपो जप रसना, नीत नीत गुण गाईए, भगत प्रेम परम पद पाया, साध संग दुख नाठे, छिजे न जाए ये पौ ना व्यापे, हर तन निर्मल गाठे, अंत काल प्र पय सहाई, एत उतरा कनहारे, प्राण मीत हीर तन मेरे, नानक सब बलिहारे, आसा महला पंजवा, जा तू साहेब ता पौ केहा, हों तू बिन के साल आही, एक तू ता सब किश है, मैं

आई जो प्रभु जी मन पानी। तू दाना तू सब मेहरबाना ना मिले रंग माणी, तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ न जाने मेरा। आसा महला पंजवा, कर कृपा प्रभ अंतर जामी। सा संग हर पाईए, खोल किवार दिखाले दर्शन। पुनरप जन्मन आईए, मिलो प्रीतम स्वामी अपने। सगले दुख हरो रे, पार ब्रह्म जन दे आराध्या। ताके संग तरो रे, रहाओ मां उद्यान पाव सागर पे। हरग सुख में बसना, सदगुर पेट पया मन निर्मल। जप अमृत हर रसना, तन तन थाप कियो सब अपना। कोमल बंधन बंधया, गुर प्रसाद पए जन मुक्ति।

जो प्राणी काऊ न आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम, साध संग मन सोवत जागे, ता प्रभु नानक मीठे लागे। आसा महला पंजवा, एको एकी नैन निहारो, सदा सदा हर नाम सुमारो, राम रामा रामा गुण गावो, संत प्रसाद साध के संगे, हर हर नाम त्यावो रे हरहाओ। सगल समगरी जाके सूद परोई, कड़कड़ अंतर रव्या सोई, ओबद परलो खिन में करता, आप लेपा निर्गुण रहता, करन करावन अंतर जामी, आनंद करे नानक का स्वामी। आसा महला पंजवा।

और पूरे के चरण गए और जन्म के पाप लहे रतन जन्म यो सबल पया कहो नानक प्रभु करी माया आसा महला पंजवा। सतगुर अपना साध सदा सुमारे गुर के चरण के संग चारे जाग रे मन जागन हारे बिन अवर न आवस कामा झूठा मोह मिथ्या पसारे रहाओ गुर की बाणी सो रंग लाए गुर किरपाल होए दुख जाए गुर बिन दूजा ना ही ताओ गुरदाता गुरदेवे नाओ गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप आठ पैर नानक गुर जाप आसा महला पंजवा। आपे पेड़ विस्तारी साख अपने खेती आपे राख जद कद पेखो एक ओगी कड़कड़ अंतर आपे सोई रहाओ आपे सूर किरण विस्तार तोई गुप्त सोई आकार सरगुण निर्गुण थापे नाओ दो मिल एक की नो ठाओ कहो नानक और ब्रह्म पखोया अंध रूप सब नयन अलोया आसा महला पंजवा उगत सियानप किशु ना जा।

तेरा नाम अखाना, मैं निर्गुण गुण नाही कोय, तरन करावन हार प्रसोय, रहाव मूर्ख मुग्ध अज्ञान विचारी, नाम तेरे की आस मन थारी, जब तब संजम तर्म ना साधा, नाम प्रभु का मने अराधा, किशु ना जाना मत मेरी तोरी, विनवत नानक ओड प्रातोरी, आसा महला पंजवा, हर हर अखर दोए ए माला, जबत जबत पै दीन दयाला, करो बेनती सदगुरे अपनी, कर कृपा रखो सरनाई, मोको देव हरे हर जपनी, हरहाओ हर माला और अंतर तार, जन्म मरण का दुख निवारे, हृदय संभाले मुख हर हर बोले, सो जान ए तुत कते न डोले, कहो नानक जोरा चय नाय, हर माला ताके संग जाए, आसा महला पंजवा, जिसका सब तिसका होए, हे जन लेप न व्यापे कोए, हर का सेवक सदगी मुक्ता, जो कुछ करे सोई फल जन के, आत निर्मल दास की जुगता, हरहाव सगल त्यागर सरणी आया, हे जन कहां व्यापे माया, नाम निधान जाके मन माहे, जिसको चिंता सुपने नाहे, कहो नानक गुर पूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया, आसा महला पंजवा, जौ सो प्रसन्न होयो प्रा मेरा, ता दुख परम कौ कैसे नेरा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, मोए निर्गुण कौ लिहो उधारी, हरहाओ मिट गया दुख सारी चिंता, फल पाया जब सदगुरमंता, सोई सत सत गए सोए, सेमर सेमर रख कंठ परोए, कहो नानक कौन ओ कर्मा, जाके मन मसिया घर नामा, आसा महला पंजवा, काम क्रोध अहंकार विभूते, हर सिमन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते, हरहाओ मोह परमो जोन पवाया, हस्तर भगत हर चरण ते आया, बंधन अंध कूब गृह मेरा, मुक्ते संत बुझे हर नेरा, कहो नानक तो प्रसन्न आई, ईहां सुख आगे गद पाई, आसा महला पंजवा, तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे, तू मेरा ठाकुर हम तेरे द्वारे, तू मेरा कर्ता हम सेवक तेरा।

साथ पार ब्रह्म के संगी साध चित्तर गुप्त सब लिखते लेखा भक्त जिना को दृष्ट न पेखा कहो नानक जिस सदगुर पूरा वाजे ताके अनगद तूरा आसा महला पंजवा दो पदा एक साधु संग सखायो नाम सर्व मनोरथ पूर्ण काम बुझगी तिशना हर जसे अगाने जप जप जीवा सारग पाने तरन करामन सरन परया गुर प्रसाद सहज कर पाया मिटिया अंधेरा चंद चढ़या रहाओ लाल जवेर परे पंडार तोट न आवे जप निरंकार अमृत शब्द पीवे जन कोए नानक ताकी परम गत होए आसा कर सतवा महला पंजवा हर का नाम हृदय नित्याई संगी साथी सगल तराई गुर मेरे संग सदा है नाले सेमर सेमर तेस सदा संभाले रहाओ तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे आसा महला पंजवा साधु संगत तरिया संसार हर का नाम मने आधार चरण कमल गुरुदेव प्यारे पूजे संत हर प्रीत प्यारे रहाओ जाके मस्तक लिखया भाग कहो नानक ताका फिर सुहाग आसा महला पंजवा मीठी आग्या फिर की लागी सौकन कर की कंत त्यागी प्रे सुहाग सीगार करी मन मेरे की तप्त हरी पलो पयो प्रे कहया मानया सुख सहज इस कर का जानया रहाओ हो बंदी प्रे खिजमत दार ओ अविनाशी अगम पार ले पख प्रे चिल्लो पाए भाग गए पांच दूत लावे ना मैं कोल ना शोभावंत क्या जाना क्यों पानी कंत होए अनाथ गरीब निमानी कंत पकर हम की नीरानी जम प्रीतम सजन लागा सुख सहज मेरा तन सुहागा

ऐसी स्त्री एक राम पाई, उन सब जग खाया, हम गुर राखे मेरे पाई, रहाओ पाए ठगौरी सब जग जोया, ब्रह्मा विष्णु मां देव मोया, गुरमुख नाम लगे से सोया, वर्त नेम कर था के पुने चरना, तट तीर्थ पवे सब तरना, से उबरे ये सदगुर की सरना, माया मोहे सबो जग बाधा, हमें पचे मनमुख मुँह राखा, गुरु नानक बाँ पकड़ हम राखा, आसा महला पंजवा, सर्व दुख जब सरे स्वामी, ईगा उहा कामना प्राणी, संतृप्ता से हर घर त्याय, हर कृपा अपने नाय लाए, सर्व सुख पर तुमरी रिजाए, रहाओ संग होवत को जांत दूर, सो जन्म मरता नित नित चूर, जिन कछ दिया ते चित तनाहे, मां बिखिया में दिन रहन जाहे, कहो नानक प्रसिमरो एक, गद पाइगे गुर पूरे टेक, आसा महला पंजवा, नाम जपत मन तन सब हरिया, काल मर दोख सगल पर हरिया, सोई दिवस पला मेरे पाई, हर गुण गाए परम गद पाई, रहाओ साध जना के पूजे पैर, मिटे उपद्रे मन ते बैर, गुर पूरे मेल चगर चुकाया, पांच दूत सब वसगत आया, जिस

तद गीते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जावला हुक्मना बूझता तभी लो दुखिया गुरम हुक्म पछाणिया तभी ते सुगिया ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमे बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ गृह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने साध सद बल जाओ गुरु विटो हो वारे जिस मिल सच सुवाओ रहाओ सागन अपसागन किस को लग जे चीत न आवे।

मार्ग पंथ सुम्हारी ना दृढ़ गुरमन में दिया मोरी तसा बुझारी बिन पी गावो रह नी गावो गावो सास सास रसनारी सतसंगत में विसास होए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक कहो त्यो दान दियो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवणी कथा नैन दर्श देखो।

बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। मां बिखादी दुष्ट अपवादी ए पुनीत सिंगारे, जन्म पवंते नरक पड़ंते इनके कुल उधारे। कोई ना जाने कोई ना माने,

मो कुटुंब बिखे रसमाते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ शोभन आनंद उलास माने मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संग तेल मर्म ना लहे कर कृपा रखे सत्संग नानक शरण आहे आसा महला पंजवां ए पदे ओहा प्रेम प्री हरहाओ कनक मानक गज मोतीन लालन नह नहा नहीं राजन पागन हुकुम न साधन किश किश न चाही चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पागी नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री आसा महला पंजवां गुरे दिखायो लोए न रहाओ ईते ऊते काट काट काट काट तू ही मोहना कारण करना तारण करना एक सोयना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवां हर हर नाम अमोला ओ सहज सुहेला हराओ संग सहाई छोड़ न जाई ओ अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक ओ हर का चोला आसा महला पंजवां अपनी भगत निभागे ठाकुर आयो आहे हरहाओ नाम पदार्थ हुए सकारत हृदय चरण बसाहे

आया सेवक कमाया गौन रस रस गावे एक है अस दर्श ते अस आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम त्यावो हृदय बसाओ जिबन को नाही प्रसरणी आईगे सर्व फल पाई है सगले दुख जाही जीन को दाता पुरख बेधाता नानक कट कट आही आसा महला पंजवा हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम ते आवे सर्व फल पावे सो जन सुखिया हुआ राज कहावे हौ कर्म कमावे बाध्यो नलनी प्रंसुआ कहो नानक जिस सतगुर पेटिया सो जन ने चलतिया आसा महला पंजवा कर चौदवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओह निहो नवेला अपने प्रीतम स्यों लाग रहे रहाओ जो प्रापावे जन्म न आवे हर प्रेम भगत हर प्रीत प्रचय प्रसंग मिलीजे यो मन दीजे नानक नाम मिले अपनी दया करो आसा महला पंजवा मिल राम प्यारे तुम मिल तीरज को ना करे रहाओ सिमरत शास्त्र बहु कर्म कमाए पर तुमरे दर्श बिन सुख नाही वर्त नेम संजम कर थाके नानक साध सरण प्रभु संग वस आसा महला पंजवा तार पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद विकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे पकर केस जम उठारियो तही कर जावे लोभ विखिया विखे लागे हर विद चित दुखाही खिर पंगना के मान माते असुर जाने नागी रहाओ वेद सतर जन पुकारे सुने नाही डोरा निपत बाजी हार मुका पछतायो मन फोरा ध्यान सगल गैर वजे परया दीवान लेखे ना परे जे कार्ज रहे उल सोए काम ना करे ऐसो जग हुए गुरे दिखायो तो एक कीर्त गाया मान तान असयान सर नानक आया आसा महला पंजवा बापार गोविंद नाय साध संत मनाए प्रे पाए गुण गाए पंच नाद तूर बजाए रखाओ कृपा पाए सह जाए दर्शाए अबरत्या गोविंद स्यों संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सह जाए मन धान पाए सब तजी मन की काम करा चेर चेर चेर चेर पया मन बहुत प्यास लागी हर दर्शनों दिखावो मुझे तुम बतावो नानक दीन शरण आए गल लाए आसा महला पंजवा।

नीत नीत कर बंधिए दे रहना होई, पिंड पवे जीव चरसी दे जाने कोई, ओही ओही क्या करो है होसी सोई, तुम रोवोगे ओसनो तुमको कौन रोई, धंधा पिट्यो पाई हो तुम कूड़ कमावो, ओ ना सुनी कथी तुम लोक सुनावो, जिते सुता नानका जागा ए सोई, जे कर बूझे अपना ता नींद ना होई, जे चलदा ले चल्या केश संपे नाले, ता तन संचो देख के बूझो बिचारे, वंज करो मसूद लहो

तनी साचा मुख नाम रखाओ। सिद्धा सेवन सिद्ध पीर मांगे रिद सिद्ध, मैं एक नाम ना विसरे साचे गुर बुद्ध। जोगी पोगी कापड़ी

ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन में तप करे नित तीर्थ वासा आप न जीने तामसी काहे पए उदासा एक बिंद जिदन कर राख दे से जती कहावे बिन गुर शब्द ना छूटगी प्रमे आवे जावे एक गिरगी सेवक सदका गुरमती लागे नाम दान इस नाम गिरड़ हर भगत सो जागे गुर ते दर कर जानिए जो जाए सियाने नानक नाम ना विसरे सचे मन माने आसा महला पहला मनसा मने समायले।

एक गर्भ बन जाएंगे। मन मुखिया सिर मार वाध खपाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है। साहिब हृदय बसाए न पछो ताव ही, गुण गा बख्सनहार शब्द कुमाव ही। नानक मंगे सच गुरमुख खाली है, मैं तुझ बिन अवर न कोए नदर निहाली है। आसा महला पहला क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं कर बन हरियावला सच टिके कर आए शब्द उतावला। जय देखा तैसोए अवर न जानिए, गुर की कार कुमाए मैल पछाणिए। रहाओ आ मिलावे सच ता मन पावई, चले सदार जाए अंक समावई। सच्चा साहिब मन वसे वसिया मन सोई, आपे दे वड़े आईया दे तोट न होई।

ता आखण आखी है ताके अंत न जाना मैन तरिया तर एक तू मैं तान सताना नानक की अरदास है सच नाम सुहेला आप गया सोजी पई गुरसबदी मेला हरहाओ होमे गर्भ गवाई है पाई गए विचार साहिब सिओ मन मानिया दे साज आधार अहिंस नाम संतोखिया सेवा सच साई ताको बिघन ना लग गई चल हुकम रजाई जो चले सो पवे खजाने खोटे ठवर ना पाए नी रले झूठाने नित नित खरा संभालिए सच सौदा पाइये खोटे नजर ना आवनी ले अग्न जलाइए जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई एको अमृत बिरख है फल अमृत होई अमृत फल जिनी चाखिया सच रह अगाई किन्ना परमना पेद है हार रसन रसाई तुम संजोगी आया चल सदा रजाई अवगुण आरे कौ गुण नानक सच मिले वडाई आसा महला पहला मन रातो हर नाए सच वखाणिया लोकां दा क्या जाए जा तो फाणिया जब लग जियो प्राण।

रात नाम अमोल है, तू उत्तम हो नीत सेवक कांडिया, नानक नदर करे हो मिले सच वांडिया, आसा महला पहला आमन जाना क्यों रहे, तो मेला होई जन्म मरण का दुख कणो निर्शेषा दोई, बिन नावे क्या जीवना फिट त्रिगच तराई, सदगुर साधना सेवया हर भगत ना पाई, हरहाओ आमन जामन तौ रहे पाइये गुरपूरा, राम नाम तन रास दे बिनसे प्रमकूरा, संत जिना को मिल रहे तान तान जस गाये, आदि पुरख अपरंपरा गुरमुख घर पाए, नडुए सांग बनाया बाजी संसारा, खेन पल बाजी देखिए उजरत नहीं बारा, होमे चौपड़ खेलना झूठे अहंकारा, सब जग हारे सो जने गुर शब्द विचारा, जो अंधले हथ टोणी हर नाम हमारे, राम नाम हर टेक है निद दौत सवारे, ज्यो तू राखे त्यो रहा हर नाम आधारा, अंत सखाई पाया जन्म मुक्त द्वारा, जन्म मरण दुख मेटे जप नाम मुरारे, नानक नाम ना विसर पूरा गुर तारे, आसा महला तीजा अष्टपदिया कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

दास तुम्हारे रिस प्राण आधारी ताके रूप न जागी लखने क्या कर आख विचारी तीन गुणा तेरे जोगी अंतर चारे तेरी आखाणी कर्म होवे ता परम पद पाइये कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या को करे पराणी जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आमन जानी जा तो पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिरे ए आणी चारे वेद ब्रह्मे को दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताक मना बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगे जुगे के राजे किए गावे कर अवतारी इन पी अंत न पाया ताका क्या कर आख विचारी तू सच्चा तेरा किया सब साचा देता साच वखाणी जा को सच बुझावे अपना हृदय नाम समाणी आसा मोहल्ला तीजा सदगुर हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन मन मसाया शब्द चीन सदा सुख पाया सुन मन मेरे तत् ज्ञान देवन वाला शब्द जाने गुरमुख पाएगे नाम निधान रहाओ सदगुर भेटे की वडियाई जिन ममता अग्न तृष्णा बुझाई सहजे माता हर गुण गाई बिन गुर पूरे कोए न जानी माया मोहे दूजे लोभाणी गुरमुख नाम मिले हर बाणी गुर सेवा तपा सिर तब सार हर जीव मन वस सब दुख विसारण हार दर साचे दिसे सत्यार गुर सेवा ते तिरपावन सोजी होए आप शान घर पावे सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गुर सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखे उरतारे साची शोभा साग दुआरे सेवड़ भागी जे गुर सेवा लाए आन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उधरे कुल सबाए।

बिन नावे सब नीच जात है, दिष्टा का कीड़ा होए, हाँ हो कर दी सब फिरे, बिन शब्दे हो ना जाए, नानक नाम रते तिन हो मैं गई, सच्चे रहे सुमाए, आसा महला तीजा, सच्चे रते से निर्मले, सदा सच्ची सोए, ऐथे कर कर जाप दे, आगे जुग जुग प्रकट होए, ए मन रूड़े रंगले, तू सच्चा रंग चढ़ाए, रूड़ी बाणी जे रपे, ना यो रंग ले ना जाए, अरहाओ हम नीच मैले अत अपमानी, दूजे पाए विकार, गुर पारस मिले कंचन होए, निर्मल जोते पार, बिन गुर कोई ना रंगी है, गुर मिले रंग चढ़ाओ, गुर के पाए पाए जो रते, सिवती सच सुमाओ, पाए बिन लाग न लग गई, नामन निर्मल होए, बिन पे कर्म कमावने, टूटे ठाओ न कोए, जिसनु आपे रंगे सो रबसी, सत्संगत मेलाए, पूरे गुरते सत्संगत उपजे, है जे सच सुपाए, बिन संगती सब ऐसे रह, जैसे पलटोर, जिन की तेत से ना जाननी, बिन नावे सब चोर, एक गुण विहाचे अवगुण विकणे, गुर के

नाम ते आई है ज्ञान प्रगट होए ए मन मत जाने हर दूर है सदा वेख अधूर सद सुनदा सद वेखदा शब्द रहा भरपूर रहाओ गुरमुख आप पछाणिया तिनी एक मन कहाया सदा रवे तेरे अपना सच्चे नाम सुख पाया ए मन तेरा को नहीं पर वेग शब्द विचार हर सरनाई पज पौ पाए मोख द्वार सब सुनिए शब्द बुझिए सच रखे लिवलाए सब देखो मैं मारिए सच्चे महल सुख पाए इस युग में शोभा नाम की बिननावे शोभ न होए ए माया की शोभा चार दिहाड़े जांदी बिलम न होए जिन्नी नाम सारे से मुए मर जागे हर जात न आयो दिष्टा माए सुमाए एक आपे बक्स मलायन अन दिन नामे लाए सच कुमारे सच रहे सच्चे सच सुमागे बिन शब्दे सुनिए ना देखिए जग बोला अन्ना परमाए बिन नावे दुख पाए सी ना मिले तसे रजाए जिन बाणी से चित लाया सेज निर्मल परमान नानक नाम तिना कदे ना विसरे ते दर सच्चे जान आसा महला तीजा शब्दो ही भगत जाप दे जिनकी बाणी सच्ची होए विचू आप गया नव मनिया सच मिलावा होए हर हर नाम जन की पत होए सब तिना का जन्म है तिन माने सब कोए हरहाओ हमे मेरा जात है अत क्रोध अवमान सब मरे ता जात जाए ज्योति ज्योत मिले भगवान पूरा सतगुर फेटे सबल जन्म हमारा नाम न मेरे दे पाया परे अखुट पंडारा आवे इस राशि के वापारिये जिन्ना नाम प्यारा गुरमुख होवे सो तन पाए तिन अंतर शब्द विचारा भक्ति सार ना जाननी मनमुख अहंकारी तुरु आप खुआयन जुए बाजी हरी बिन प्यारे भगत न होवई ना सुख होए शरीर प्रेम पदार्थ पाईए गुर भगती मन तीर जिसनु भगत कराए सो करे गुर शब्द विचार हृदय एको नाम से होमे दुबदा मार भगता की जद पत एको नाम है आपे लए सवार सदा सरनाई तिसकी ज्यों पावे त्यों कार्ज सार भगत नराली अलादी जापे गुर विचार नानक नाम है।

साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत रखाओ दर्शन की प्यास घणी चितवत अनक प्रकार तरो अनुग्रह पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार मन परदेसी आया मिलो साध के संग जिस वखर को चाहता सो पायो नम है रंग जेते माया रंग रस बिरस जाए खिन माहे भगत रते तेरे नाम से सुख पुंचे सब ठाए सब जग चल तो पेकिए नेत्र घर को नाओ धर्म तराई सास्यो नेचल पावे ठाओ मीत साजन सुत बंद पर

अंचल गया साधका नानक है सागर पार पराए। जन्म मरण दुख कटिए प्यारे या पेटे हर राए। सुंदर सुगर सुजान प्रा मेरा जीवन दर्द दिखाए। जो जी तुते बिछरे प्यारे जन्म मरे बिखाए। जिस तू मिले सो मिले प्यारे तिसके लागो पाए। जो सुख दर्शन

सो करी प्यारे, आवर केश करण न जाए, दिन रैन सब सुहावने प्यारे, जे चपिए घर नाओ साई कार कमावनी प्यारे, और मस्तक लेख लिखाए, एको आप वर्तदा प्यारे, घट घट रहा समाए, संसार कूब ते उदरले प्यारे, नानक हर सरणाए, राग आसा महला पहला, पट्टी लिखी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद ससे सोए सिटजन साजी, सबना साहेब एक पया, सेव तरह चिर जिनका लागा, आया तिनका सबल पया, मन का गे पूले मूड मना, जब लेखा देवे बीरा तौ पड़या रहाओ, ईवड़ी आद पुरख ए दाता, आपे सच्चा सोई, इना अखरा में जो गुरमुख बूझे, तेस सिर लेख न होई, ऊड़े ओ माता की कीजे, जाका अंत न पाया, सेवा करे सही फल पावे, जिन्नी सच कमाया, गंगे ज्ञान बूझे जे कोई, पढ़िया पंडित सोई, सर्व जिया में एको जाने, ताहो में कहे न कोई, कक्का केस पुंडर जब हुए, विण साबूने उजलिया, जमराजे के हेरू आए, माया के संगल बंद लया, खखे खुंद कार सा आलम, कार खरीद जिन खर्च दिया, बंधन जाके सब जग बंधया, अवरी का नहीं हुकुम पया, गगे गोए गाय जन छोड़ी, गली गोबिंद गर्व पया, ताड़ पांडे जिन आवी साजी, प्याड़ नवागे तई किया, कगे काल सेक जे काले, शब्द गुरु के लाग रहे, बुरा पला जे सम कर जाने, इन बिद साहेब रमत रहे, चचे चार विरजन साजे, चारे खानी चार जुगा, जुग जुग जोगी खानी पोगी, पढ़िया पंडित आप थिया, छे छे छाया वर्ती सब अंतर, तेरा किया परम हुआ, परम उपाय भुलाई गए आपे, तेरा कर्म हुआ, तिन गुरु मिलया, जजे जान मंगत जन जाचे, लग चौरासी पीह पया, एको लेवे एको देवे, अवर न दूजा मैं सुनया, झजे चूर मरो क्या प्राणी, जो कुछ देना सो दे रहा, दे दे वेखे गुम चिलाए, ज्यो जिया घर जिक पया, न्यन्ये नदर करे जा देख, दूजा कोई नाही, एको रवरया सब थाई, एक वसया मन माही, टट टंच करो क्या प्राणी, कड़ी के मौत के उड़ चलना, जुए जमन हारो अपना, पाज पड़ो तुम घर सरना, ठठे ठाण वर्ती तिन अंतर, हर चरणी जिनका

तन तेरे मिला हुए स्वामी आप कृपा करे। सेजा सुहावी संग तिरके सात सर अमृत परे। कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो। नानक हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाह। मुंद सहज सलोनड़िए एक प्रेम बेनंती राम। मैं मंत्र घर पावे प्रसंग मराती राम। ता प्रेम राती हर बेनंती नाम हर के सुख वसे। तो गुण पिछाने ता प्रभ जाने गुणे वस अवगुण नसे। तुझ बाज एक तिल रह ना सक कहन सुन ना तीजे। नानका प्रयो प्रयो कर पुकारे रसन रस मन पीजे। सखी हो सहेलड़ी हो मेरा फिर वणजारा राम। हर नामो वणजड़िया रस मूल अपारा राम। मोल अमोलो सज कर टोलो प्रभावे ता मुंद पली। एक संग हर के करे रलिया हो पुकारी दरखली। कारण कारण समरसरी तार आप कार्य सारे। नानक नदरी तन सुहागन शब्द अब साधार। हम कर साचा सोयलड़ा प्रभ आयड़े मीता राम। रावे रंग रातड़िया मन लीड़ा दीता राम। अपना मर दिया हर वर लिया क्यों पावे त्यों रावे। तन मन तेरे आगे शब्द सुभागे कर अमृत फल पावे। बुद्ध पाठ ना पाईए बहुत चतराईए पाए मिले मन पाने। नानक ठाकुर उम्मीद हमारे हम नहीं लोग।

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफलो जन्म सुबाया दूजड़े कामन परम पुली हर वरना पाए राम कामन गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम बिरथा जन्म गवाए मानमुख ए आणी औगुणवंती चूरे अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलया हदूरे देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाए नानक विण नावे कामण परम पुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए फिर संग कामण जानिया गुरमेल मिलाई राम अंतर शब्द मिली सहजे तबत बुझाई राम शब्द तबत बुझाई अंतर सांत आई सहजे हारस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माणे सच्चे शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके एकी मुक्त न पाई नानक बिन भगती जग बौराना सच्चे शब्द मिलाई सा तन मन अंद पया हर जीव मेल प्यारे राम सा तन हर के रस रसी गुर के शब्द अपारे राम शब्द पारे मिले प्यारे सदा गुण सारे मन मसे छेद सुहावी जां तिर रावी मिल प्रीतम अवगुण नसे जित कर नाम हर सदा त्याई है सोहिलड़ा जुग चारे

तेरा गंड लाग गुरमंग सदा समाले। यों कहे नानक जय मन तू तामदा तय हर तेरे सदा नाले। सदगुर मिले तावत थम्या ने कर वस्या आए नाम हिया जे नाम लय नाम रहे सुमाए। तावत थम्या सदगुर मिले दसवां द्वार पाया तिथे अमृत भोजन सहज तुन उपजे जित शब्द जगत थम रखाया ते अनेक वाजे सदा अंध है सच्चे रहा सुमाए। यों कहे नानक सदगुर मिले धारत थम्या नेकर वस्या आए। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण मन हर जी तेरे नाल है गुरमती रंग मान। मूल पछाणे ता सो जाण है मरण जीवन की सोझी होई गुर प्रसादी एको जाण है ता दूजा पाओ ना होई। मन सांत आई वजी वधाई ता होआ परवान इउं कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू गारब अटिया गारब लदिया जाहे माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाहे। गारब लागा जाए मुगद मन अंत गया पछतावे अहंकार सना रोग लगा बिरथा जन्म गवावे। मनमुख मुगद चेते नाही अगे गया पछतावे। इउं कहे नानक मन तू गारब अटिया गारब लदिया जावे। मन तू मत मान करे ते हौ खज जानदा गुरमुख निमाणा हो। अंतर अज्ञान हो बुद्ध है सच शब्द मलख हो। हो निमाणा सतगुरु अगे मत किश आप लखावे। अपने अहंकार जगत जलिया मत तू अपना आप गवावे। सतगुर के पाणे करे कार सतगुर के पाणे लग रहो। इउं कहे नानक आप छड सुख पावे मन निमाणा होए रहो। तन सो वेला जित में सतगुर मिलिया सो सो चित आया मां आनंद सहज पया मन तन सुख पाया। सो सो चित आया मन वसाया अवगुण सब विसारे जांच पाणा गुण प्रगट होए। सतगुर आप सवारे से जन प्रवान होए जिन्नी एक नाम दिड़या दुतिया पाओ चुकाया। इउं कहे नानक तन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया सो सो चित आया। एक जंत परम फुले तिन सै आप फुलाए दूजे पाए फिरे होमे कर्म कुमाए। तिन सै आप फुलाए कुमारग पाए तिनका किश ना वसाई। तिन की गत अवगत तू है जाने जिन ए रचन रचाई। हुगम तेरा खरा पारा गुरमुख किसे बुझाए। इउं कहे नानक क्या जंत विचारे जा तुद परम भुलाए। सच्चे मेरे साहेबा सच्ची तेरी वडियाई तू पार ब्रह्म बेअंत स्वामी तेरी कुदरत कहण ना जाई। सच्ची तेरी वडियाई जाको तुद मन वसाई। सदा तेरे गुण गावे तेरे गुण गावे जंत पावे सच्चे स्यों चित लावे। जिसनु तू आपे मिलहै

किमतिम वर्ष अमृत तारा राम, गुरमुखे गुरमुख नदरी आराम प्यारा राम। आराम नाम प्यारा जगत निस्तारा, आराम नाम वडियाई काल जुग राम नाम बोहिथा, गुरमुख पार लंघाई। हालत पलत राम नाम सुहेले, गुरम करनी सारी। नानक दात दया कर देवे, आराम नाम निस्तारी। रामो राम नाम जपया, दुख किल विख नाश गवाया राम। गुर परचे त्याया, मैं हिरदे राम रवाया राम। रवे आराम हिरदे परम गद पाई, जां गुर शरण आई आए। लोभ विकार नाव डुबदी निगली, जां सतगुर नाम दराए। जी दान गुर पूरे दिया, आराम नाम चित लाए। आप कृपाल कृपा कर देवे, नानक गुर शरण आए। बाणी आराम नाम सुनी, चित कार्य सब सुहाए राम। रोमे रोम रोम रोमे, मैं गुरमुख राम ते आए राम। राम नाम ते आए पवित्र होए आए, इस रूप न रेख्या काई। रामो राम रविया कट अंतर, सब तृष्णा भूख गवाई। मन तन शीतल सिगार सब होआ, गुरमत राम परगासा। नानक आप अनुग्रह किया, हम दासन दासन दासा। जिन्नी रामो राम नाम सारिया, से मनमुख मूड अपागी राम। इन अंतरे मोवे आपे, खिन खिन माया लागी राम। माया मन लागी मूड पे अपागी, जेन राम नाम नह पाया। अनेक कर्म करे अभिमानी, हर रामो नाम चुराया। महाबिखम जम पंथ दुहेला, काल उगत मुह अंधियारा। नानक गुरमुख नाम ते आया, ता पाए मोह द्वारा। रामो राम नाम गुरु, राम गुरमुखे जाने राम। यो मनुआ खिन ऊब पयाली, परम दा इकत कर आने राम। मन इकत कर आने, सब गत मित जाने। हर रामो नाम रसाए, जन की पैज रखे राम नामा। प्रहलाद उधार तराए, रामो राम ऊंचा। गुण कहत्या अंत न पाया, नानक राम नाम सुन पीने। रामे नाम समाया, जिन अंतरे राम नाम वसे। तिन चिंता सब गवाया राम, सब अर्था सब धर्म मिले। मन चिंदिया सो फल पाया राम, मन चिंदिया फल पाया। राम नाम ते आया, राम नाम गुण गाए। दुरमत कबुद गई सुध होई, राम नाम मन लाए। सफल जन्म शरीर सब हुआ, जित राम नाम पर गासया। नानक हर पसदा दिन राती, गुरमुख निरकर वासया। जिन सरदा राम नाम लगी, तिन दूजे चित न लाया राम। जे धरती सब कंचन कर दीजे, बिन नावे अवर ना पाया राम। राम नाम मन पाया, परम सुख पाया। अंत चलदिया नाल सुखाई, राम नाम तन पूंजी संची। ना डूबे ना जाई, राम नाम ए जुग में तुलगा। जमकाल नेड़ ना आवे, नानक गुरमुख राम पछाता। कर कृपा आप मिलावे, रामो राम नाम सत्ते। सत गुरमुख जानिया राम, सेव को गुर सेवा लागा। जिन मन तन अर्प चढ़ाया राम, मन तन अर्पया बहुत मन सरदया। गुर सेवक पाए मिलाए, दीना नाथ जिया का दाता। पूरे गुर ते पाए, गुरु सिख सिख गुरु है। एको गुर उपदेश चलाए, राम नाम मंत हिरदय देवे। नानक मिलन सुभाए, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। आसा शांत महला चौथा, कर दूजा हर घर करता दुख बिनासन। पतत पावन हर नाम जियो, हर सेवा पाई परम गद पाई। हर उत्तम हर घर काम जियो, हर उत्तम काम जप गे हर नाम। हर जपिए अस्थिर होवे,
ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਦੁੱਖ ਮੇਟੇ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸੋਵੇ। ਹਰ ਘਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੋ ਠਾਕੁਰ, ਹਰ ਜਪੀਏ ਆਤਮ ਰਾਮ ਜੀਓ। ਹਰ ਘਰ ਕਰਤਾ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸਨ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹਰ ਨਾਮ ਜੀਓ। ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਕਲ ਯੁਗ ਉਤਮ, ਹਰ ਜਪੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪੜੀਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸੁਣੀਏ, ਹਰ ਜਬਤ ਸੁਨਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਜੀਓ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਦੁਖ ਬਿਨਸਿਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ।

ताकि जद कई ना जाई अमित वड्याई मेरा गोविंद अलख अपार जियो गोविंद अलख अपार अपरंपर आप अपना जाने क्या ए जंत विचारे कई है जो तुद आख मखाने जिसनू नजर करे तू अपनी सो गुरमुख करे विचार जियो वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो तू आद पुरख परंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर सब मै रहा समाए जियो घट अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर ताका अंत न पाया तिस रूप न रेख अदृत्या गोचर गुरमुख अलख लखाया सदा आनंद रहे दिन राती सहजे नाम समाए जियो तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो तू सद परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निधान जियो हर हर प्राप्त एको अवर ना कोई तू आपे पुरख सुजान जियो पुरख सुजान तू प्रधान तू देवड अवर ना कोई तेरा शब्द सब तू है वरते तू आपे करे सोई हर समय रविया एको सोई गुरमुख लखिया हर नाम जियो तू सद परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निधान जियो तब तू है करता सब तेरी वड्याई जो भावे तिवे चलाए जियो तुद आपे भावे तिवे चलावे सब तेरे शब्द सुमाए जियो सब शब्द सुमावे जंत भावे तेरे शब्द वड्याई गुरमुख बुद्ध पाएगे आप गवाइए शब्द रहा सुमाई तेरा शब्द अगोच गुरमुख पाइए।

जिन्ना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे, हर करता सब कुछ जानदा सिर रोग हाथ दीजे। जिना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर लीजे। आसा महला चौथा, जिन अंतर हर हर प्रीत है तेजन सुगड़ सियाने राम राजे। जे बारों पोल चुक बोल दे पी खरे हर पाने, हर संतानु होर थाओ नाही हर मान निमाने। जन नानक नाम दीवान है हर तान सताने, जिथे जाए बहे मेरा सदगुरु सो थान सुहावा राम राजे। गुर सिखी सो थान पालिया लय तूर मुख लावा, गुर सिखां की काल थाए पई जिन हर नाम ते आवा। जिन नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज करावा, गुर सिखां मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे। हर सेवे पूरा सतगुरु पुख जाए लहे मेरी, गुर सिखां की पुख सब गई तिन पिछे होर खाए कनेरी। जन नानक हर पुन बीजया तेर तोट न आवे हर पुन केरी। गुर सिखां मन वाधाइयां जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे। कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुर सिखां मन मिट्टा, हर दरगे गुर सिख पैनाई है जिन्ना मेरा सतगुरु तुठा। जन नानक हर घर होया हर घर मन उठा, आसा महला चौथा जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे। तिसकी तिसना पुख सब उतर है जो हर नाम ते आवे, जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ न आवे। जन नानक कौ हर कृपा कर निध जपे हर नाम तरावे। जिन्नी गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन न होई राम राजे। जिन्नी सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई, जिन्नी सतगुर प्यारा सेवया तिना सुख सद होई। जिना नानक सतगुर पेटिया

प्यारे नित आस करे नित जोबन जावे मेरे प्यारे जम सास हिरे भाग मणि सुहागण मेरे प्यारे नानक हर उरतारे।

मय प्रभ करमय सुमरत अगत अपार निर्मल। सुनो स्वामी बिनु एहो पर जोड़ नानक दान मांग जन्म मरण निवार ले हो। अपराधी मत हीन निर्गुण अनाथ नीच सर कठोर कुल।

आनंद माया अज्ञानता लपटावे किसे जोबन बदे जरुआ दिन हारे संग मीच बिनवंत नानक आस तेरी सरन साधु राख नीच परमे जन्म अनेक संकट महाजोन लगत रहे उते संग मीठे भोग सोना परमत पार अगन ते आयो बो परदेसे तायो आपोड तारी प्रमुरारी सर्व सुख हरनायो रखन हारे प्रप्यारे मुझ ते कछु न होआ होना सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरे पौन नाम तारीख उधारे भगते संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस नु श्रवण सुन श्रवण बानी पुरख ज्ञानी मन दाना पावगे हर रंग रते प्रभिधाते राम के गुण गावगे बजद कागज बनराज कलमा लिखन को जे होए पवन बेअंत अंत ना जाए पाया गई नानक चरण सरण आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान ताकि सरण गही निरपो पए प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुमीत सुरजन इष्ट बंध पजाणिया गए कंठ लाया गुर मिलाया जस बेमल संत वखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही प्रभ एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप पए राम नाम और हार बेके दिवस गए गत परम मोह विकार बिन से जोन आमन सब रहे अग्न सागर पए शीतल साध अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समृत वो साधु हर जय जय नानक नाम त्याए पूर्ण सा संग पाई परम गते जय देखो ते संग एको रब रहे घड़ घड़ वासी आप विरले कने लया जल थल मैयल पूर पूरन कीड़ खत सुमान्या आद अंते मसोई गुर प्रसाद दी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण जन कहया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नान कराव रहया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कलमल पाप टरे दुख पुग दर दर नाठ प्रगट मग दिखाया मिल सा संगे नाम रंगे मल लोहड़ी द पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल समूह सब तरे दिन सरैन आनंद अन दिन सिमरंत नानक।

खेते अंदर छुटिया को नानक सो नाहा फलगे फुलगे बपड़े पीतन विच स्वाहा पौड़ी आपी ने आप साजे ओ।

तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बहकार योगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोष उपजय।

पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे मिले सच ता तिनी सच कमाया सदगुर मिले सच पाया जिनके हिरदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लभदी है पढ़ पढ़ परिये साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डिये खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आरजा पढ़िए जेते सास नानक लेख एक गल होर हो में चखना चाख महला पहला लिख लिख पढ़िया।

सोई निरंजन देव महला पहला, कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्दा मान रहे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी, पढ़िया होवे गुनहगार ता ओमी साधना मारिए, जेहा काले कालना ते वेहो ना उपचारिए।

पईया पित जित मुख नाम ना ऊचर है बिन नावे रस खावे नानक एवै जानिए तित मुख तुका पाहे महला पहला पांड जमिए पांड निमिए पांड मंगण वी आहो पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राहो पांड मुआ पांड पालिए पांड होवे बंधान सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज ना कोए नानक पंडे बहारा एको सच्चा सोए जित मुख सदा साराई है भागा रती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सब को आखे अपना जिस नाही सोचुन कड़ी है कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडी है जा रहना नाही आयत जग ता कायत गार बखंडी है मंदा किसे ना आखिए पढ़ अखर एहो बुझिए मूर्ख नाल ना लुझिए श्लोक महला पहला।

मूर्ख आखिए पाणा लए सजाए। महला पहला अंदरों झूठे पैज बार दुनिया अंदर फैल। आसड़ तीर्थ जे नावे उतरे नाही मैल। जिन पट अंदर बार गुदड़ ते पले संसार। तिरनेहों लगा रब सेती देखने विचार। रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाहे। परवाह नाही किसे केरी बा सच्चे नाह। दरवाड़ उपर खर्च मंगा जबे देता खाहे।

सेवा करे ता भी पाए मान। नानक जिसनू लगा तिस मिले, लगा सो प्रवान। महला दूजा जो जी होए सो उगवे, मौका कहे आवाओ। बीजे वेख मंगे अमृत, वेखो यो ने आओ। महला दूजा नाल ए आने दोस्ती, कदे न आवे रास। जेहा जाने ते हो वर्त, वेखो को निर्जास। वस्तु अंदर वस्त समावे, दूजी होवे पास। साहिब सेती हुकम न चले, कही बने अरदास। कूड़ कमाने कूड़ो होवे, नानक सिवत विगास। महला दूजा नाल ए आने दोस्ती, वडारू स्यों ने हो। पानी अंदर लीक ज्यो, तेदा थाओ न थे हो। महला दूजा होए ए आना करे कम, आण न सके रास। जे एक अद चंगी करे, दूजी पी वे रास। पौड़ी चाकर लगे चाकरी, जे चले खसमे पाए। होरमत तिसनू अगली, ओ वजो पे दूना खाए। खसमे करे बराबरी,

शरीर जियो गोर चरण लाघम बिनवता पूछत कहे जियो पाया कामन काज जग उपजे बिनसे कहो मोहे समझाया देव करो दया मोहे मार्ग लाभो।

तपि सन्यासी बहु तीर्थ प्रमना लुंजत मुंजत मोन जटा तार अंत तऊ मरना ताते सेवियले राम ना रसना राम नाम हित जाके कहां करे जमना अरहाओ आगम निर्गम ज्योतक जाने बहु बव्या करना तंत मंत्र सब औखद जाने अंत तऊ मरना राज भोग अरशद सिंहासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुभाषक चंदन अंत तऊ मरना वेद पुराण सिमर सब खोजे

हंस अकेला जाई। कहेत कबीर सुनो रे संत, ऐसा गर कहताई, इस बंदे सिर जुल्म होत है,

फिर पछताना बिरध पायो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भुजंग बलयो अरहाओ चूके सरवर पाल बंधावे लूणे खेत हथवार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुग्ध फिरे चरण शीस कर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे जेवा बचन शुद्ध नहीं निगसे ताबरे तर्म की आस करे

साखी शब्द सुरत नहीं उपजे, खेंच तेज सब लीना, श्रवण विकल पय संग तेरे, इंद्री का बल थका, चरण रहे कर टर्क परे है, मुखो ननक सह बस, थाके पंच दूत सब तस्कर,

आस बड़ पाग हमारा, तुर नर मुनजन कौतक आए, कोड़ ते तीस उजाना, कह कबीर मोए ब्याए चले हैं, पुरख एक भगवाना, आसा सास की दुखी ससुर की।

करे लड़ाई माया सद मतवारी। बड़े पाई के जब संग होती तब हो नहा प्यारी। तहत कबीर पंच को चगर जगरत जन्म गवाया। झूठी माया सब जग बाध्या मैं राम रमत सुख पाया।

अस देखियो जग मेरा समाई गुप्ता हीरा प्रगट पयो जब गुर गम दिया दिखाई आसा पहली क्रूप कुजात कुलखनी सौरे पेई है बुरी आपकी स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर तरी पली सरी मोई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहाओ को कबीर जब लौरी आई बड़ी का सुहाग टरेओ लौरी संग पई अब मेरे जेठी और तरेओ आसा मेरी बौरिया को तनिया नाओ ले राख्यो राम जनिया नाओ एन मुंडियन मेरा कर तुंदरावा बिटवे राम रम।

सब जग आन तनायो ताना हराओ। जब तुम सुन ले वेद पुराना तब हम इतनक पसरे उताना। तरण आकाश की कर घय बनाई, चांद सूर्य दुई था।

पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही पाखण कीट गुप्त होए रहता ताचो मार्ग नाही कह तन्ना पूर्ण ताहू को मात्रे जी डराही आसा सेख फरीद जियो की बाणी एक ओंकार सदगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन से ही सचया जिन मन होर मुख होर ते कण

रीत है हर मेरी हर मेरी कथा कहानी जी, गुर प्रसाद मेरा मन पीजे एहा सेव बनी जियो अरहाओ। हर मेरा सिमरत हर मेरा शास्त्र हर मेरा बंदप हर मेरा पाई, हर की मैं भूख लागे हर नाम मेरा मन तृप्त, हर मेरा साक अंत होए सगाई, हर बिन होर रास कूड़ी।

दसवें द्वार रहत करे, तिर पवन सोझी पाए, नानक गुरते गुर होया, वेखो तिस की रजाए। त्यो कारण करता करे, ज्योति ज्योत समाए, गुजरी महला तीजा, आराम राम सबको कह, कहे राम न होए। गुर प्रसादी राम मन मसे, तां फल पावे कोए, अंतर गोविंद जिस लागे प्रीत, हर्ष कदे ना विसरे, हर हर करे सदा मन चीत। रहाओ हिरदय जिनके कपट बस, बाहरों संत कहाहे, तिसना मूल ना चुकई, अंत गए पछताहे। अनेक तीर्थ जे जतन करे, ता अंतर की होम में कदे ना जाए, जिस नर की दुबदा ना जाए, तर्म राए ते देश जाए, कर्म होवे सोई जन पाए, गुरमुख बूझे कोई, नानक विचो होमे मारे, ता हर पेटे सोई। गुजरी महला तीजा, ते जन सांत सदा मत निचल, जिसका अवमान गवाए, सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझे, हर चरणी चितलाए, हर चेत अचेत मना, जो इच्छे सो फल होई। गुर प्रसादी हरस पावे, पीव तरह सदा सुख होई। अरहाओ ता गुर पेटे ता पारस होवे, पारस होए ता पूज कराए, जो उस पूजे सो फल पाए, दीख्या देवे साच बुझाए। विण पार से पूज न होवई, विण मन परते अवरा समझाए। गुरु सदाए अज्ञानी अंधा, केसो मार्ग पाए, नानक विण नदरी किशु ना पाईए, जिस इंद्र करे सो पाए। गुर प्रसादी देव डियाई, अपना शब्द वरताए, गुजरी महला तीजा पंच पद, ना कासी मत उपजे, ना कासी मत जाए, सदगुर मिले मत उपजे, ताँ ए सोजी पाए। हर कथा तू सुन रे मन, शब्द मन न मसाए, ए मत तेरी थिर रहे, ता परम विच्चों जाए। अरहाओ हर चरण रे वसाए, तू किलबिख होवे नास, पंच पू आत्मा वस करे, ता तीर्थ करे निवास। मनमुख ओ मन मुग्ध है, तो जी किशु न पाए, हर का नाम न बुझई, अंत गया पछताए। इहो मन कासी सब तीर्थ सिमरत, सदगुर दिया बुझाए। हर सर तीर्थ ते संग रह, जिन हर हृदय रहा सुमाए। नानक सदगुर मिले, हुक्म बुझया, एक वस्या मन आए। जो तु पावे सब सच है, सच्चे रहे समाए। गुजरी महला तीजा, तीजा एको नाम निधान पंडित, सुन